हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे नकुल मल्होत्रा का गायन राग ललित। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित LIC निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा

0: जयपुर, नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर एंड अदर्स. टॉकिंग टू मीडिया अबाउट द मीटिंग, द एनवायरमेंट मिनिस्टर सेड द मीटिंग डिस्कस्ड एक्शन प्लान्स टू कर्ब व्हीकुलर पॉल्यूशन इंक्लूडिंग मेजर्स कंसर्निंग ओल्ड व्हीकल्स, द न्यू ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बसेस, मैंडेटरी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स एंड एग्रीगेटर व्हीकल्स. India has been ranked first in business climate among 40 plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, सुबह की 6:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, लीजिए 18 सेकंड. और अब समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का. सबसे पहले आप सुनेंगे शनिदेव की आराधना. श्रोताओं, आप सभी का भक्ति संगीत के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात.

0: अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। साथियों, अभी आपने सुना हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती। और दोस्तों, आज आप जानते हैं कि खास दिन है, वृषभान नंदिनी, ब्रिज की महारानी, जिनकी महिमा जितनी गाए उतनी कम, जगत के पीर हरने और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाली श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के प्रकटोत्सव पर आज आप सभी को, यानी राधाष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को कोटि कोटि नमन। तो राधाष्टमी के इस अवसर पर सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा भजन।
1: और ऐसे श्री श्यामा जी के द्वारे पे श्रीधाम बरसाने में

जी हाँ, श्री राधे तेरे बरसाने में हर कोई तरसता है श्री राधे जी के इस बरसाने में जाने के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि अगर कृष्ण से प्रेम पाना है तो श्री राधा की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। और राधा और प्रेम का जो राधा और कृष्ण जी का जो प्रेम है वो हमें दर्शाता है किस तरह से निश्चल स्वरूप से राधा रानी ने कृष्ण भगवान जी को चाहा और कृष्ण भगवान ने भी बिना किसी बंधन के ताउम्र कहते हैं ना प्रेम को सबसे बड़ा दर्जा दिया। और आज भी राधे रानी और कृष्ण जी को हमेशा प्रेम का प्रतीक माना जाता है और उसी की मूर्त के रूप में सभी लोग मानते हैं। तो वृंदावन की कुंज कलियों में गूंजे जिनका नाम, जिनकी कृपा से बिना अधूरे हैं हर धाम, ऐसी महारानी श्री राधा के जन्मोत्सव पर आज सब जगह है धूमधाम, क्योंकि आज राधा रानी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए हर एक भक्त, हर एक प्रेम दीवाना उन्हें पूजेगा, उन्हें मनाएगा। और बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो सुबह से ही राधा रानी की कृपा पाने के लिए बस मंदिर की लाइनों में लग चुके हैं, किसी ने आज व्रत रखा है, तो कोई कोशिश कर रहा है कि बरसाने में जाकर राधा रानी की कृपा पाए, यानी बिना राधा के कहना अधूरे, बिन राधा के सब सपने सुने, जिनके चरणों की रज पाने को तरसते हैं खुद बांके बिहारी, ऐसी जगत जननी की श्री राधा रानी के प्रकटोत्सव पर आज सभी राधा रानी जी का स्वागत करते हैं, उन्हें दिल से याद करते हैं, नमन करते हैं और हम भी उन्हें अपने तरीके से याद कर रहे हैं। तो एक और बहुत ही खूबसूरत भजन श्री राधा रानी जी के नाम से।

दोस्तों एक तरफ आज राधा रानी जी का जन्म है, जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति बप्पा हैं जो आजकल सबके घर पर पधारे हैं। और आपने देखा होगा कि अधिकतर जो हमारे साथी हैं अब ज्यादा से ज्यादा देशवासी गणपति जी को अपने घर पर बिठाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने जैसे 3 दिन बिठाया, 5 दिन बिठाया, तो उन्होंने उनका विसर्जन भी कर दिया। गणपति जी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां अपनी कृपा लेकर आए, यही हम सब के लिए, हम सब की ये प्रार्थना है, एक दूसरे के लिए भी और सबके लिए। तो इतना भक्ति में, इतना भावपूर्ण आजकल मौसम चल रहा है, या यूं कहें कि आजकल के दिन कितने शुभ हैं, हर कोई भक्ति में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर इतने सारे गणपति बिठाए गए हैं, तो दिल्ली भी इससे अछूती नहीं। वहीं महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में सब जगह पर गणपति जी को, गणपति बप्पा जी को सभी प्यार से बुलाते हैं। गन्नू जी, तो गन्नू जी को आपने अपने घर बुलाया है, तो उनके खूब सेवा करिए, उनकी कृपा पाइए और सबके लिए।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अब घड़ी इशारा कर रहे हैं कि अगले कार्यक्रम की तरफ हमें बढ़ना है। तो अगला कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप जानेंगे, आप सुनेंगे ग्रामोद्योग पर गांधी जी के विचार। जी हाँ, ग्रामोदय पर गांधी जी के विचार कुछ ही पलों में आप ये सुनेंगे।

मामा गांवों में बसती हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सपनों के भारत में गांव के विकास को प्रमुखता प्रदान करके उससे देश के उन्नत निर्धारित होने की बात कही थी। गांधी जी ने अपने सपनों के भारत में अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय देते हुए ग्रामीण विकास की तमाम आवश्यकताओं पर बल दिया था। उनकी दृष्टि में ग्राम स्वराज्य, पंचायती राज, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गांव की सफाई तथा गांव में आरोग्यता व समग्र विकास के माध्यम से ही एक स्वावलंबी और सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है। गांवों में ग्रामोद्योग की दयनीय स्थिति से चिंतित होकर ही गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा दिया और इसके जरिए गांवों को खादी निर्माण से जोड़कर अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार देकर आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। महात्मा गांधी का मानना था कि जब तक हम ग्राम्य जीवन को पुरातन हस्तशिल्प के बारे में पुनः जागृत नहीं करते, हम गांवों का विकास और पुनर्निर्माण नहीं कर सकेंगे। बिना लघु एवं कुटीर उद्योगों के ग्रामीण किसान मृत प्राय है। वह केवल भूमि की उपज से स्वयं को नहीं पाल सकता, उसे सहायक उद्योग चाहिए। गांधी जी ने परतंत्रता काल में भारतवासियों की दुर्दशा देखने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन एवं विकास की दृष्टि से कुछ रचनात्मक कार्यक्रम तय किए थे। इसमें खादी एवं दूसरे ग्रामोद्योग को ग्राम विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उस समय भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर विदेशी व्यापार को चोट पहुंचाने की दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं था। ग्रामोद्योग का ही एक महत्वपूर्ण घटक था खादी। गांधी के अर्थशास्त्र में खादी किसी मिल से प्रतिस्पर्धा करने वाला उद्योग ना होकर बेरोजगार और निरुद्यमी लोगों के लिए एक वैकल्पिक और तात्कालिक रोजगार का स्रोत भर था। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, मैंने कताई उद्योग को विकसित करने के लिए किसी भी दूसरे पोषक उद्योग को त्यागने की कल्पना तक नहीं की है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। इसी आधार पर चरखे का प्रचार प्रसार आरंभ किया गया है। जिस दिन भारत में ऐसे बेरोजगार लोग नहीं रहेंगे, उस दिन इस देश में चरखे के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। मैं जो मध्यम वर्ग के लोगों से यथार्थ चरखा चलाने के लिए कहता हूँ, वह भी बचे हुए समय में ही चलाने के लिए कहता हूँ। चरखे की प्रवृत्ति किसी उद्योग की विनाशक नहीं बल्कि पोषक प्रवृत्ति है, इसलिए मैंने उसे अन्नपूर्णा की उपमा दी है। गांधी जी ने 8 दिसंबर 1921 को यंग इंडिया में अपने लेख में लिखा था, चरखा व्यापारिक युद्ध की नहीं बल्कि व्यापारिक शांति की निशानी है। गांधी जी आर्थिक समानता के भी पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने ग्रामोद्योग पर अधिक ध्यान आकृष्ट किया। उनका मानना था कि हम समग्र रूप से खादी अपना लें और खादी ग्रामोद्योग द्वारा अपना जीवन विकसित करें। यह तब तक कठिन है जब तक उस पर सामूहिक श्रद्धा नहीं होती। ऐसी श्रद्धा जगाने के लिए यह आवश्यक है कि खादी पहनने का प्रचार व्यक्तियों तथा परिवारों में बढ़े तथा पूरे गांव में खादी के महत्व का ज्ञान तथा अनुभव बढ़ाया जाए। ग्रामोद्योग के विकास से ही भारत की उन्नति का

0: मार्ग प्रशस्त होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। चिंतन में आज आपने सुना ग्रामोदय पर गांधी जी के विचार। और अब समय हो गया है श्री रामचरितमानस पाठ के संगीतमय पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 53।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. During the meeting in New Delhi yesterday, both sides reaffirmed their commitment to expediting the negotiations and concluding the agreement at the earliest. The CEPA is expected to create new opportunities in trade, in goods and services, investment and other areas of economic cooperation. In a social media post, Mr. Goyal expressed confidence that an early conclusion of the CEPA would help realize the shared vision of significantly increasing bilateral trade and further deepen the India-Canada economic partnership for mutual benefit. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR against Reliance Capital Limited, Mumbai, in its former chairman and unidentified public servants, among others, in connection with an alleged LIC investment fraud. The case was registered on the basis of a complaint filed by the Life Insurance Corporation of India, or LIC. According to the complaint, between 2012 and 2018, LIC subscribed to 5 non-convertible debentures worth 3,900 crore rupees issued by Reliance Capital. The funds were meant for general corporate purposes, funding requirements and refinancing of existing debt. India has been ranked first in business climate among 40 plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. US President Donald Trump said that the United States has reached a deal with Denmark to strengthen the American military presence in Greenland, ending months of tension over his repeated calls to acquire the Arctic island. And that is the end of this news bulletin.
3: Ye Akashvani Delhi ka Indraprastha channel hai.
2: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं सुबह के 7:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 23 सेकंड। और श्रोताओं अब समय हुआ है आपके और हमारे मनपसंद कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका में आज आप सुनेंगे तब्बू की गाए भजन। आपके साथ साथी कलाकार हैं, सितार पर साथ दे रहे हैं खालिद मुस्तफा, हारमोनियम पर हैं दामोदर लाल घोष और तबले पर संगति कर रहे हैं शिवित भारद्वाज।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका में तब्बू के गाए भजन। आपके साथ सितार पर साथ दे रहे थे खालिद मुस्तफा, हारमोनियम पर साथ दे रहे थे दामोदर लाल घोष और तबले पर संगति कर रहे थे शिवित भारद्वाज। सुबह के 7:30 और पूरे लीजिए 15 सेकंड हो

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। और सुबह की बात करें तो एनर्जी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह जो एनर्जी हमारे अंदर आती है ना, वो सारा दिन बरकरार रहती है। तो सुबह के 7:30 बज चुका है, यानी 7:30 हो चुके हैं और आपने भी ट्यून इन कर लिया है। हमारा ये स्टेशन कौन सा भी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7। आप हमें यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त सुषमा। अब देखिए, सुबह सुबह की बात होती है तो आज है वैसे कि शनिवार, यानी सैटरडे, वीकेंड है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे साथी हैं जिन्हें स्कूल भी जाना है, एग्जाम्स भी लगे हैं बच्चों के आजकल, मिड टर्म्स, तो बहुत सारा काम, बहुत सारी भाग दौड़। और कुछ ऐसे साथी हैं जो सुबह की शुरुआत बड़े आराम आराम से करते हैं। तो सभी का मिला जुला जो हमारे पास साथियों का संग्रह है, उन सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में गीत सुनवाएं। अब सुबह से हुआ है कि बात हो रही है तो ताजगी भी चाहिए, फुर्ती भी चाहिए और शांति भी चाहिए। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हम अपने नगमे में, अपने तराने में आपको सुनवाएं। जी हाँ, मतलब हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें हमने ऐड कर रखे हैं ऐसे खूबसूरत नगमे, जो कि है बहुत ही, सबसे पहला जो ट्रैक आप सुनेंगे किशोर दा की आवाज़ में। तो ऑफिस के रास्ते में हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं या उठने की तैयारी, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, घर के काम करने हैं, बाप रे बाप इतने सारे काम, कोई नहीं, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सुबह की फुर्ती के लिए चला चाहता हूँ किसी की धुन में। तो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए, आप सुनिए, इंजॉय करिए, बने रहिए हमारे साथ पूरे 8 बजे तक। आप चाहें तो आप हमें ipradiodelhi@gmail.com पर अपने संदेश भेज सकते हैं।

ला ला ला ला। तो देखिए सुबह सुबह इतनी जद्दोजहद तो करनी पड़ती है हम सभी को, कई बार खुद को अपने आप चलाना पड़ता है और कई बार हमारी मजबूरी है और कई बार हम शौक से चलते हैं भाई, काम भी करना है, जिंदगी को भी आगे बढ़ाना है और चलते रहना है, तो क्यों ना हम खुशी से आगे बढ़े, हंसते खेलते जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे पल पल, तो हमारा जीवन हो जाएगा बहुत ही खुशहाल, खुश बहुत ही अच्छा सा। तो क्यों अपन जिंदगी को बोझ बनाएं, उसे ढोएं, बल्कि जिंदगी को जिए, क्योंकि जीने में जो मजा है ना वो जिंदगी को ढोने में नहीं, क्योंकि ढोने की बात जब करते हैं तो ऐसे लगता है कि जिंदगी पता नहीं कितना बोझ है और इतना गठरा हमारे ऊपर है जिसे हमें ढोना पड़ रहा है। जिम्मेदारियां तो हैं ही, क्योंकि देखिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें जिम्मेदारियां तो होंगी, ऐसा नहीं होगा कि हमें जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ेगा, वो हमारी बहुत सारी अलग अलग रूपों में जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस खूबसूरत जिम्मेदारी अगर आपकी ये जो खूबसूरत जिम्मेदारियां हैं ये आपकी हसीन बन जाए, मतलब कहने का ये कि जो जिम्मेदारियां ये बोझ ना बनकर आपकी अच्छी लगने लगे आपको, मतलब आपको पता है कि करना है लेकिन उसी काम को आप अच्छे हंसते खिलखिलाते और खुशी मन से करें तो कितना अच्छा होगा। जब मन खुश होगा तो चीजें भी अच्छी लगेंगी। तो भाई हम यही कहेंगे कि हर सुबह आपकी जिंदगी की एक किताब का एक नया खाली पन्ना होती है और आज की कहानी क्या होगी ये तो हम सबको खुद अपने आप लिखनी होती है। तो अपनी जिंदगी के आज की इस कहानी को खूबसूरत बनाएं और एक नए पन्ने में जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि उसे एक सुहाना सफर बना दें। और जिंदगी इतनी खूबसूरत ना, सच कहूं मैं आपको, तो आप जब उसे एक बार खुश दिल होकर जीना सीख जाएंगे तो आपको जिंदगी बहुत प्यारी लगेगी। भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर, सोचना है पर ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा सोचेंगे तो शायद अपने आज को ही और आने वाले कल को भी खराब, आने वाला कल तो किसने देखा बट आज हम खराब कर देंगे। तो जिंदगी के एक एक पल को जिएं, आसमान को देखें, उसको महसूस करने की कोशिश करें, हवा, पत्तियां, पेड़ पौधे, इतनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास प्रकृति में जो हमारे दिल को हल्का करती हैं। देखिए कलाकार फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत मुझे बहुत पसंद है और सुबह सुबह इस गीत को सुनके मन तो बहुत ही ताजा हो गया और किशोरदा की आवाज, बहुत ही खूबसूरत गीत। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये गीत जरूर पसंद आया होगा और आपका दिन, जो मैंने कहा अपनी किताब का ये जो पन्ना है ये आप अपने आप लिखेंगे, उसे और खूबसूरत और हसीन बनाएंगे, नए पन्ने नए इतिहास आप इसमें जोड़ेंगे।

तो सुबह सुबह की बात हम कर रहे थे और सुबह का दिन अगर मतलब दिन की शुरुआत अच्छे से हो जाए, और हमने कहा ना कि अपने दिन का जो एक हर एक पेज होता है अपनी हमारी जिंदगी की किताब का, उसको हम खूबसूरती के साथ लिखेंगे तो ताउम्र हम उसे और हसीन बना सकते हैं। तो जिंदगी को ढोएं नहीं बल्कि उसे जिएं, एक एक पल को जिएंगे तो जिंदगी खूबसूरत तो लगेगी ही। और देखिए इतने खूबसूरत गीत हैं हमारे पास और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम कौन सा भाई, गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा और आप सुन रहे हैं हमें मीडियम वेव्स कौन सी भाई नाइन। आप सब अगर आपको पूरा बता दे तो आप सुन सकते हैं हमें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल और मीडियम वेव 366.3 मीटर और 819 किलो हर्ट्ज पर। और श्रोताओं आपको बता दें कि DRM पर आप सुन सकते हैं 810 किलो हर्ट्ज पर। और अभी चल रहा है हमारा ये बहुत ही

खूबसूरत सा प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। अगला गीत भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले एक और पॉजिटिव बात तो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंस्पिरेशन नहीं होगी जिंदगी में तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिंदगी खूबसूरत भी होती है जब छोटे छोटे पलों में हम छोटे छोटे, कहते हैं ना कि जिंदगी के छोटे छोटे पल ऐसे होते हैं जब हम जीते हैं और कुछ हमें सिखा के जाते हैं। संघर्ष भी होता है, बहुत सारी कठिनाइयां भी होती हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए, हर किसी के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं ताकि उसे अगर वो परेशानी महसूस करनी पड़ रही है, उसे फेस कर रहा है वो, तो हम उसे इंस्पायर कर सकें। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने जो आपके अनुभव हैं उन्हें दूसरों के साथ साझा करें ताकि वो उससे सीख लें और एक स्माइल पास करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि कहते हैं ना कि मुस्कुराता और खिलखिलाता चेहरा दूसरों को भी खुश कर देता है और उसका मूड भी फ्रेश कर देता है। अगर आप रास्ते में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, सुबह सुबह मुझे पता है सब कुछ जल्दी जल्दी होती है, तो आप थोड़ी सी स्माइल पास कर देंगे ना तो बगल वाले का भी जो गुस्सा आ रहा होगा उसे कि भाई जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो एक स्माइल से उसका गुस्सा भी वो शांत हो जाएगा। तो स्माइल करते करते जिंदगी को आगे फेस करते जाएं, हर एक फेज को, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। अगला गीत हमारे पास बहुत ही खूबसूरत है, यादों की बारात फिल्म से आशा जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में।

जी हाँ, सुबह की जो शुरुआत वो अच्छे से हो जाती है, और जैसे हमने कहा एक स्माइल अगर आप दे दें तो स्माइल चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट अगर रहेगी, ये शुरुआत आप घर से ही करें। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार हम सुबह सुबह क्या करते हैं, घर के मतलब नेचुरली सबको बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो कई बार हम गुस्सा हो जाएंगे, चिल्ला पड़ेंगे, जल्दी जल्दी रहता है। तो भाई अपने घर से शुरुआत करिए, अपने घर के जितने भी सदस्य, आपके बच्चे, मम्मी पापा, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन, आपकी बेटी, तो स्माइल करके अपने सारे काम मुस्कुराते हुए उनसे अपने काम करवाएं। गुस्सा भी हो आ रहा हो तो थोड़ा हल्की सी टोन रखें, थोड़ा स्माइल रखें कि भाई देखिए मुझे देर हो रही है। तो इसी तरह से जिंदगी को जिएंगे तो जिंदगी को जीने का भी मजा आएगा और जिंदगी भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। और कहते हैं ना कि कल के दिन में चाहे कितना भी कुछ हुआ हो, कितना थका दिया हो या कितनी मुश्किलें रही हो, लेकिन आज का जो सूरज है वो हम सबके लिए नई उम्मीद लेकर आता है। इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएंगे तो जो दिन बीत गया उसे कल का दिन माने, और जो अब आ चुका है दिन इसे आज में जिए। तो कल की टेंशन खत्म करिए और आज की दिन की जो शुरुआत है वो दिल खोल के आप कर चुके हैं हमारे साथ। और देखिए अब तो हमारा प्रोग्राम भी अपनी अंतिम पड़ाव की ओर ही बढ़ रहा है। गीत अगला बहुत ही खूबसूरत है लता मंगेशकर जी की आवाज में, और हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें 24 घंटे 7 दिन। और फिलहाल अपने अपने मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में सुबह 8 बजे तक।

तो दोस्तों, प्यार तो कण कण में मिल जाता है जब नज़र, कहते ना नज़र होनी चाहिए उस प्यार को देखने की। हम हर एक चीज़ अपने आसपास प्यार देख सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, रह सकते हैं हम प्यार से। तो ये छोटा सा प्यार शब्द छोटा सा है, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना उतना आसान भी नहीं। हाँ, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। लोग एक दूसरे को बस तुलना करते रहते हैं, तो उन तुलनाओं से बाहर निकलिए, प्यार बांटिए, प्यार से रहिए। और हाँ, आज के दिन, मुझे पता है आज वीकेंड है, और कई बार होता है कि मन नहीं होता है कि कुछ खास करें आज वीकेंड के दिन। तो पता है क्या कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लोड लेने की। तो अगर आज कुछ बड़ा करने का मन नहीं है, ज़्यादा काम करने का मन नहीं है, तो बस इतना याद रखें कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। यानी छोटा मोटा काम करें, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना करें, काम करें, नहीं तो हो सकता है कि ऑफिस में बॉस डांट लगा दे। अपना काम है तो चलिए बाद में भी कर सकते हैं। तो आज बस अपना बेस्ट दीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे साथ सुबह 10:10 हमारा कार्यक्रम होगा, उसमें भी आप जरूर बने रहें। तो अपनी दोस्त सुषमा को गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ आज सुबह का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ विदा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरे गुड मॉर्निंग कार्यक्रम, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि, और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
3: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
4: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें
5: और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक

0: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
1: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
2: The government is supporting the sector through technology transfers.
3: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
1: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
3: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।

0: त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
1: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला, दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सर।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में 9 मुकर्ररा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा ने इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद के तय अपने अज़्म को दोहराया है। RBI ने कहा है कि

0: भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात में साल ब साल की बुनियाद पर 8.2% का इजाफा हुआ। इस तरह ये 2025-26 में 221 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की हो गई। आज से जापान में 20वें एशियन गेम 2026 का आगाज होगा। तफसील से वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले के मौके पर आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए तकर्रुरशुदा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुल्क भर में 45 मकामात पर 20वें रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। नए तकर्रुरशुदा उम्मीदवारों को वजारत खजाना, रेलवे, उमूर दाखिला, सेहत और ख़ानदानी बहबूद और वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ वजारतों और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया जाएगा। 20वें रोजगार मेले के साथ ही मजमूई तौर पर तकरीबन 12,75,000 नौजवान तकर्रुरनामे हासिल करेंगे। रोजगार मेला नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुल्क की तरक्की के सफर में उनकी शराकतदारी को बढ़ाने को यकीनी बनाने के हुकूमत के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन-उल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेज यकजा होंगे। मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर सरकारी अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासती अदलिया से मुतालिक एकेडमीज, कानूनी खिदमात की रियासती अथॉरिटीज, माहिरीन की रियासती अप्रेजल कमेटियां, माहौलियात के असरात का जायजा लेने वाली रियासती अथॉरिटीज और दलदली जमीन से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इसमें 17 मुल्कों के मुमताज जजेस और अदलिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अदलिया से मुतालिक नजरियात के इजहार, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। शुरका अहम माहौलियाती और आबोहवा की तब्दीली के मामलात पर बातचीत करेंगे। इनमें पॉलिसी साजी, अमल दरामद और पॉलिसी लागू करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, हुक्मरानी और इदारा जाती तआवुन को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीके भी तलाश किए जाएंगे। आदाद व शुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत ने कुछ मुंतखब जिलों की मेहनत मार्केट का मुख्तसर जायजा पेश किया है। आदाद व शुमार के कौमी दफ्तर ने जिला सतह की बुनियादी मेहनत मार्केट के अंदिये पहली बार जारी किए। तकरीबन 57.8% जिलों में खवातीन की अफरादी कुव्वत की शिरकत की शरह LFPR 40% या इससे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। ज्यादा आबादी वाले सरकर्दा 50% जिलों की कारकुनों की आबादी का तनासुब WPR 37.3% से लेकर 76.7% तक रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा आबादी वाले 100 जिलों के तहत गुजरात के शहर सूरत में LFPR और WPR की सबसे ज्यादा सतहें रिकॉर्ड की गईं, जबकि ये बिहार के शहर दरभंगा में LFPR और WPR की सबसे कम शरें थीं। गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। वजारत दाखिला के नुमाइंदों ने लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल की सदारत में कमेटी को बिल की दफात के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के चेयरमैन संजय जायसवाल ने कहा कि मीटिंग दोस्ताना माहौल में हुई और अरकान ने बहुत से सवाल किए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडर सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: कमेटी में स्पीकर की तरफ से नामजद लोकसभा के 21 अरकान और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। 12 अगस्त को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल पर मजीद गौर खौज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सामने पेश किए जाने से इत्तेफाक किया था। बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदही पर मबनी बनाने के लिए 2010 के इस बिल में तरमीम करना है। भारत में स्वदेशी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 2026 में कारोबारी माहौल का ताजा तरीन सर्वे कराया था। उसमें 40 से ज्यादा आलमी मार्केट्स के कारोबारी माहौल में

0: भारत का पहला मकाम रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल के सोशल मीडिया में मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का कारोबारी माहौल इस्तेहकाम, तरक्की और कारोबार को आसान बनाने के लिए बेहतरीन पैमाने मुकर्रर कर रहा है। हालांकि आलमी सतह पर एक तरह का बोहरान पाया जाता है। कारोबारी माहौल के 2026 के सर्वे में 21 मार्केट्स का गहराई से जायजा पेश किया गया है, जिससे बैरून मुल्क कारोबार के स्वदेशी कंपनियों के तनाजुर का एक वसी मंजर फराहम होता है। सर्वे का मकसद बुनियादी स्वदेशी बरामदाती मार्केट्स में इक्तसादी कारकर्दगी, खाके और कामकाज के हालात के तकाबुल के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करना है। इस जायजे में कंपनियों को दरपेश चैलेंजेस भी जाहिर किए गए हैं और उन स्वदेशी कंपनियों के लिए मौके की निशानदेही भी की गई है जो नई मार्केट्स में दाखिले या मौजूदा मार्केट्स में तौसी में गौर खौस कर रही हैं। नंदीग्राम असेंबली हलके के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के एक पुराने अराजी के हुसूल के खिलाफ तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सराय ने बताया कि इस मामले में प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। 2007 की नंदीग्राम तहरीक से मुतालिक मुख्तलिफ मामलों में मुबैना तौर पर उनका नाम सामने आया था। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल उठाया है और इसके लिए बीजेपी पर बदले की सियासत का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी ने इन इल्जाम को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि पुलिस की कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तिजारत और सनत के वजीर जनाब पीयूष गोयल ने भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी मोहदे CEPA पर तबादला ख्याल के लिए कनाडा के बैन अलाक्वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू के साथ मीटिंग की। कल नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान फरीकैन ने बातचीत में तेजी लाने और मोहदे की जल्द अज जल्द तकमील की यकीन दहानी की। तवक्को है कि CEPA सामान, खिदमात, सरमायाकारी और इक्तसादी तावुन के दीगर शोबों में तिजारत के नए मौके पैदा करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने इसे एतमाद का इजहार किया कि CEPA की जल्द तकमील से दो तरफा तिजारत और भारत कनाडा इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल होगी। भारत के खलाई शोबे की असलाहत जो भारत की खलाई पॉलिसी 2020 में शुरू की गई थी, उससे मुल्क का खलाई प्रोग्राम हुकूमत की इजारादारी से एक मुतहर्रिक मुकाबला जाति सरकारी प्राइवेट इको निज़ाम में तब्दील हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: खलाई शोबे की असलाहत से खलाई टेक्नोलॉजी को तरक्की देने में मदद मिल रही है। खला से मुतालिक स्टार्टअप गैलेक्स आई, जिसकी बुनियाद IIT मद्रास में इंजीनियरों की एक टीम ने रखी थी, उसने मिशन दृष्टि तैयार किया है जो दुनिया के पहले ऑप्टो SAR सैटेलाइट के तौर पर इसका एक सबूत है। खलाई शोबे में असलाहत सरकारी प्राइवेट शोबे के लिए हौसला अफजा हैं और इसमें खला के शोबे में इको निज़ाम तख्लीक देने और कामकाज में इजाफे में मदद मिल रही है। बेंगलुरु से सुधेंद्रु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात साल ब साल की बुनियाद पर 2025-26 में 8.2% इजाफे के साथ 221.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और IT पर मबनी खिदमात की बरामदात से मुतालिक कल शाया हुए सालाना सर्वे के मुताबिक 7,569 सॉफ्टवेयर बरामदकार कंपनियों से सर्वे के लिए राबता किया गया, जिनमें कुछ बड़ी कंपनियों समेत 2,363 कंपनियों ने रद्देअमल जाहिर किया। इन कंपनियों का मुल्क की कुल तखमीना सॉफ्टवेयर बरामदात में तकरीबन 89% हिस्सा है, जो मस्कूरा साल के दौरान भारत की मजमूई सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात का 2/3 से ज्यादा है, जबकि BPO खिदमात IT से वाबस्ता खिदमात की बरामदात के सबसे बड़े जुजू के तौर पर बरकरार रही। अमरीका को की गई 54.1% बरामदात के साथ अमरीका भारतीय सॉफ्टवेयर बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट रहा है। इसके बाद यूरोप 31.8% भारतीय सॉफ्टवेयर बरामदात के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि बरतानिया का हिस्सा कुल बरामदात का 15.4% रहा। सॉफ्टवेयर खिदमात ज्यादातर ऑफ साइट मोड के जरिए फराहम की गई, जिनका हिस्सा 91.7% रहा। सॉफ्टवेयर खिदमात की मजमूई बरामदात में बैरून मुल्क तजारती बरामदात भी शामिल हैं। 2025-26 में यह बरामदात 9.5% से बढ़कर 239.3 अरब डॉलर हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुतला किया है कि भारतीय कंपनियों की गैर मुल्की जैली कंपनियों के मकामी सॉफ्टवेयर कारोबार की मालियत 2025-26 में बढ़कर 17.9 अरब डॉलर हो गई, जो एक साल पहले 13.9 अरब डॉलर थी। इसके साथ ही अमरीका और बरतानिया भारत के लिए बदस्तूर अहम मार्केट का दर्जा रखते हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाली अंडमान समंदर पर आज शाम तक हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में आहिस्ता आहिस्ता इसमें शिद्दत आने और मगरबी शुमाल मगरब समत में दाखिल होने और जनूबी ओडिशा से शिमाली आंध्र प्रदेश के साहिलों की जानब बढ़ने का इम्कान है, जिसके नतीजे में 2 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासतौर पर रियासत के जनूबी हिस्सों में बारिश में इजाफा हो सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खलीज बंगाल के ऊपर हवा का कम दबाव बनने के तनाजुर में 2 सितंबर के आसपास ओडिशा में बारिश में दोबारा इजाफा हो सकता है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के दबाव के हल्के के ओडिशा के साहिल की जानिब बढ़ने के साथ ही वहां बारिश की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसमियात का महकमा मौसमी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कोहाट जिले में एक मस्जिद के नजदीक कल हुए धमाके में 15 पुलिस जवानों समेत 21 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। कोहाट अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ताहिर शाह के मुताबिक इस वाकये में 73 पुलिस जवान और 30 शहरी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि यह धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ और उसकी शिद्दत से मस्जिद के नजदीक एक गहरा गड्ढा बन गया। पुलिस ने मजीद बताया कि नामालूम हमलावरों ने जाय वाकये से बचकर निकलने से पहले चेक प्वाइंट को निशाना बनाया था। अलबत्ता मिलिटेंट ग्रुप इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। 20वें एशियन गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज जापान में एची नोगाया के पोलामो मिजुहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे मुनाकिद होगी। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तेजेंद्र सिंह टूर इस तकरीब के परचमबरदार होंगे। एशियन गेम्स का इनेकाद आज से 4 अक्टूबर तक होगा और इसमें 37 खेलों में 500 से ज्यादा भारतीय एथलीट मुकाबला करेंगे। भारतीय दस्ते में चोट की वजह से नेजा फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम वापस लिए जाने के बावजूद इनफरादी जुमरे में एक ओलंपिक मेडल जीतने वाले 5 एथलीट शामिल हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आज 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नए मुंतखब होने वाले अफराद को तकरीरी नामे तकसीम किए जाने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मोदी रोजगार मेले में 51,000 तकरीर नामे करेंगे तकसीम। रोजनामा प्रताप ने वजीर खाजा एस जयशंकर के भूटान दौरे को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार ने लिखा है कि भारत भूटान में रियायती कर्ज पर तवानाई समेत 5 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के जरिए दिल्ली में MBBS की सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। इंतखाबी कमीशन के जरिए तृणमूल कांग्रेस के इंतखाबी निशान और नाम के तनाजे को हल किए जाने को भी उर्दू अखबारात ने नुमाया किया है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में 9 मुकर्रर नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम करेंगे। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा ने इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तिसादी शराकतदारी माहदे पर तेजी से अमल दरामद के तई अपने अज़्म को दोहराया है। स्वदेशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 41 आलमी मार्केट्स में कारोबारी माहौल के जिम्न में भारत का पहला मकाम है। RBI ने कहा है कि भारत की सॉफ्टवेयर खिदमत की बरामदात में साल ब साल की बुनियाद पर 8.2% का इजाफा हुआ। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी सुनने वालों को शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, दर्द एक सामान्य अनुभव है, लेकिन जब ये दीर्घकालिक हो जाता है तो वो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इस कार्यक्रम में हम दीर्घकालिक दर्द के कारणों, लक्षणों और प्रबंधन के तरीकों पर बातचीत करेंगे। हम विशेषज्ञों से जानेंगे कि कैसे हम इस समस्या से निपट सकते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आइए सुनिए ये कार्यक्रम विषय है दीर्घकालिक दर्द, कारण, लक्षण।

0: शिक्षण और प्रबंधन। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नम्रता डबास, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेन मेडिसिन हैं, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीप दिवांशु लाल, आप कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन में। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं मंजीत कौर।
1: सर आपका और मैम आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर दबास आपसे, और ये जानेंगे कि दीर्घकालीन दर्द क्या होता है।
3: देखिए, दर्द दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट मतलब कि आपको कोई भी चोट लगी या आपकी कोई भी सर्जरी हुई, उसके बाद जो दर्द होता है उसको बोलते हैं हम एक्यूट पेन। वो नॉर्मल फिनोमिना है बॉडी का कि बॉडी ने किस तरह से रिएक्ट किया। वो दर्द यूजुअली विद इन 3 महीने खत्म हो जाते हैं दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, उन चीजों से ये वाले दर्द कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी दर्द 3 महीने से ज्यादा चल रहा है, मतलब हाँ आपकी जो चोट लगी थी वो हील हो चुकी है, सर्जरी हुई थी वो ठीक हो चुकी है, हीलिंग हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन उसके बाद भी वो दर्द चले जा रहा है या फिर बार बार आ रहा है, आप दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, दवाई छोड़ते हैं, वापस से दर्द आ जाता है, इस तरह का जब ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है फिनोमिना, उन सबको हम बोलते हैं क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन वो कुछ भी हो सकता है, कमर दर्द से रिलेटेड हो सकता है, घुटना, कूल्हा, कंधा, ये वाले दर्द हो सकते हैं, कैंसर का दर्द हो सकता है, या फिर एक एंटिटी होती है ट्राइजमिनल न्यूरालजिया जिसमें फेस का दर्द होता है वो हो सकता है, या इस तरह से किसी भी कोई भी बीमारी से रिलेटेड पेन जो कि बहुत लंबे समय से चले जा रहा है, वो सब दर्द के कारणों में क्रोनिक पेन में आते हैं।
1: तो ये तो था क्रॉनिक पेन, और अब हम बात करेंगे डॉक्टर लाल से और जानना चाहेंगे कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं।
2: सो क्रॉनिक पेन हम अगर कैटेगराइज करें तो एक तो वो डिजनरेटिव पेन, एज रिलेटेड पेन में आता है, दूसरा इसका कारण है न्यूरेल्जिया, नर्व पेन, तीसरा इसका कारण है कैंसर पेन। तो डिजनरेटिव पेन में हमारा जैसे शरीर, हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में घिसाव होता है तो हमें दर्द महसूस होता है, तो उसमें आप स्पाइन पेन हो सकता है आपको, नी पेन, हिप पेन, एंकल पेन, शोल्डर पेन, और जो नर्व पेन होता है जैसे कि मैडम ने बताया ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, हर्पिस जॉस्टर पेन, पोस्ट सर्जरी नर्व एंट्रैपमेंट, ये पेन होता है, और तीसरा कैंसर पेन।
1: तो इसका उपचार किस तरीके से किया जाए जिससे कि जो आम जन लोग हैं उनको उससे आराम मिल पाए?
2: तो सबसे पहले अगर आपका कोई पेन है जो कि क्रॉनिक हो गया है, जो कि 3 महीने से पुराना हो गया है, उसमें जो कोर है वो है प्रिकॉशंस, परहेज, उठने बैठने के परहेज वो हमें ठीक से लेने चाहिए, उससे हमारे बहुत तरह के स्पाइन पेन और नी पेन और शोल्डर पेन, सामान कैसे उठाना है, टेबल को कैसे धक्का लगाना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है, जूते कैसे पहनने हैं, कितना आगे झुकना चाहिए, कितनी बार, अगर कोई सामान नीचे गिर गया है तो उसको कैसे उठाना चाहिए, पूरा नीचे बैठ के उठाना चाहिए, आगे झुक के उठाएंगे तो आप स्पाइन को बहुत ज्यादा स्पाइन पे प्रेशर डाल रहे हैं। एक तो हुआ परहेज, दूसरा हुआ वर्जिश, एक प्रॉपर सुपरवाइज कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रॉपर मसल ट्रेनिंग, वो हर ज्वाइंट के लिए अपने अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के शेड्यूल्स होते हैं, तो आप अपने पेन फिजिशियन एंड उनकी टीम में जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन के डॉक्टर होते हैं आप उनकी सुपरविजन में कर सकते हैं। तीसरा, इन सब से भी ये पेन नहीं जाता तो मेडिसिंस, अथवा जो हम मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन करते हैं हम उसकी सहायता ले सकते।
1: और डॉक्टर दबास ये भी जानना चाहेंगे कि लक्षण कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से पहचाने क्रॉनिक पेन को?
3: देखिए, लक्षण जॉइंट स्पेसिफिक है, आप जैसे सपोज नर्व वाला दर्द है तो नर्व वाले दर्द में जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया या जैसे डॉक्टर दीप ने बोला कि हर्पीस जॉस्टर वाला पेन है, उसमें मरीज को जलन हो सकती है, चबक लग सकती है, करंट झटके लग सकते हैं, ये वाले न्यूरालजिक पेन है। डीजनरेटिव वाले पेन है कि ठीक है, पेशेंट को उठना बैठना, रोजमर्रा के काम करना या रात में दर्द होना, सुबह जब उठते हैं बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होना, हील पेन है तो शुरू के कुछ स्टेप्स बेड से नीचे उतर के चलना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। देन कैंसर पेन हो गया 24/7 वाला पेन कि वो सारा टाइम ही दर्द रहेगा, तो जो सिम्टम्स हैं वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि इस तरह के दर्द में यही आएगा, डिपेंडिंग अपॉन के क्या कॉज है पेन का पेशेंट सिम्टम्स बताता है।
1: अगर हम टेस्ट की बात करें तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि डायग्नोज हो पाए और ये किस तरीके का पेन है और उसका क्या उपचार है?
3: देखो, पेन का प्रॉपर जनरेटर ढूंढना कि दर्द का कारण क्या है, जैसे कि हर कमर दर्द शियाटिका नहीं होता, उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है कि वो दर्द कहाँ से आ रहा है। तो पेशेंट को पहले प्रॉपर, जब फिजिशियन के पास जाते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लिया जाता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन करके हमारे माइंड में एक डायग्नोसिस बन जाता है कि दर्द का प्रमुख कारण क्या होगा, पेन जनरेटर क्या होगा, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होती है, कोई भी स्कैन कराने हैं, एक्सरे कराने हैं या फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज करानी है, कोई भी स्कैन उसके बेसिस पे किए जाते हैं।

0: करते हैं, एंड देन उन स्कैन्स में क्या प्रॉब्लम आई है और हमने एग्जामिनेशन में क्या सोचा था, वो डायग्नोसिस को कोलैबोरेट किया जाता है। फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि दर्द का कारण क्या है, और उस पेन जनरेटर को ढूंढकर उस पेन जनरेटर का इलाज किया जाता है, ना कि हम सिम्टम्स को दबा दें। दर्द को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन दर्द का कारण क्या है वो कारण ढूंढकर उस कारण का ट्रीटमेंट करना, ये ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल, बेहद ही अहम जानकारी। और डॉक्टर लाल, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में हमको कोई भी दर्द होता है तो हम सडनली कोई ना कोई पेन किलर ले लेते हैं, तो क्या एकदम पेन किलर लेना ठीक है या फिर उसका क्या कुछ उपचार सही दिशा में करना चाहिए?
2: खुद से पेन किलर लेना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो होती हैं वो जो इजीली अवेलेबल होती हैं तो वो सेफ मानी जाती हैं, लेकिन खुद से पेन किलर, सेम पेन के लिए बार बार पेन किलर लेना इज नॉट एडवाइजेबल एंड शुड नॉट बी टेकन, हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारे लिवर और किडनी डैमेज हो सकती है। और दूसरा, आपको खुद से दवाई लेना, बार बार एक ही चीज के लिए दवाई लेते रहना, वो उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो हमें एक टाइम निकाल के पेन फिजिशियन के पास जाके हमारा पेन का जो जनरेटर है, पेन जनरेटर, जैसे कि मैडम बता रहे हैं कि पेन का सोर्स क्या है, पेन इजाद कहाँ से हो रहा है, वो क्लिनिकली हमें पता चल जाता है, एंड देन हम उसके रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस, जांचें कराते हैं, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गई, एक्सरे हुआ, एमआरआई हुआ, वो करा के हम आप पेशेंट को एक लंबे समय के लिए समाधान दे सकते हैं। हमारा पेन का जो साइकिल है ब्रेक करने का एक ही मंतव होता है, मस्कुलोस्केलेटल एंड डीजनरेटिव पेन में, जैसे कि जॉइंट्स पेन एंड स्पाइन पेन में, सो दैट पेशेंट को एक पेन फ्री इंटरवल दिया जाए लंबे समय तक के, सो दैट पेशेंट अपना रिहैबिलिटेशन, अपनी वर्जिश अच्छे से कर पाए और बार बार ये क्रॉनिक पेन के साइकिल में ना फंसे।
1: और डॉक्टर साहब, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जैसे तो आपने बताया कि सीधा डॉक्टर से पहले ही बात करें, बट जब वो घर पर है और घर पे उसे घरेलू उपचार से हम कहते हैं, तो क्या कुछ उसे करना चाहिए जिससे उसे रिलीफ मिल सके इंस्टेंट?
2: घरेलू उपचार अगर वो डॉक्टर साहब के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो उसमें एक राइस प्रोटोकॉल होता है, जिसमें रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, रेस्ट करनी चाहिए, नए दर्द को हमेशा आइस लगानी चाहिए, पुराने दर्द में हम गर्म सिकाई करते हैं। तो अगर कोई सूजन है या मान लो कमर में लचक आ गई, तो वो जो कमर में लचक आई है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है पेन का, हमारा ब्रेन बता रहा है कि वहाँ पे दर्द है, आप उसका ज़्यादा उपयोग मत कीजिए, अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे उस शरीर के उस हिस्से का तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है, लेकिन इतना तो भगवान ने, नेचर ने हमें स्मार्ट बनाया है। लेकिन अगर वो पेन आपका घरेलू उपचार से, रेस्ट से, आइस लगाने से, या कोई घर पे दर्द की मलहम रखी है वो लगाने से नहीं आराम मिलता, तो ज़रूर आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, या वो दर्द आपका आपको काम नहीं करने दे रहा, आपको आपके काम पे नहीं जाने दे रहा है, पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाई नहीं करने दे रहा, और जो होम मेकर फीमेल्स हैं उनको अपना घरेलू काम करने में दिक्कत है, तो आपको अपने पेन फिजिशियन से मिलना चाहिए।
0: इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी दर्द जो समझो आपने घरेलू उपचार लिया, 2-3 दिन उपचार लिया, लेकिन ना आपकी सूजन कम हुई ना आपकी तकलीफ कम हुई, उस वाले मरीज को श्योरली अपने पेन फिजिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दर्द का कारण कुछ और हो और जिसका इलाज बहुत ही मैंडेटरी है,
1: और जरूर डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। और क्या क्रॉनिक पेन से पूरी तरह सामान्य जीवन जीना संभव है?
0: बिल्कुल, क्रोनिक पेन अगर सही टाइम पे उपचार लिया जाए तो सामान्य जीवन जीना बहुत संभव है। अगर इस दर्द का सही टाइम पे इलाज नहीं होता तो उससे मरीज का जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो खराब होती है, पेशेंट की स्लीप, नींद खराब होती है, पेशेंट की भूख पे फर्क पड़ता है, पेशेंट की जो सोशल लाइफ है वो खराब होती है। अगर आप सारा टाइम कमर दर्द से परेशान है तो ऑब्वियसली आप बाहर निकलना बंद कर देंगे, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सोशली आइसोलेट हो जाएंगे, तो इसलिए क्रोनिक पेन का सही समय पे उपचार बहुत जरूरी है। और अगर सही समय पे उपचार करके प्रॉपर पेन जनरेटर का पता लगा के ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत हद तक सामान्य जीवन जीना बिल्कुल पॉसिबल है।
1: क्रोनिक पेन के प्रोसीजर के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे।
0: देखिए, क्रोनिक पेन के प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं, 2 कैटेगरीज में आते हैं, रीजेनरेटिव थेरेपीज बोलते हैं या फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशंस या नर्व ब्लॉक, ये 2 कैटेगरीज में यूजली मैनेजमेंट हमारे होते हैं। जो नर्व रिलेटेड पेन है उसमें हम नर्व का रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से या फिर कैंसर पेन में अल्कोहल की सहायता से उन नर्व्स को परमानेंटली स्टन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि वो जो पेन की सेंसेशन जो वो नर्व्स कैरी कर रही थी ब्रेन तक उनको दबाया जा सके। दूसरी एंटिटी होती है रीजेनरेटिव, जिसमें आप ही के ब्लड सेल्स जो कि हमारी हीलिंग में हेल्प करते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, जैसे कि आजकल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बहुत कॉमनली यूज की जाती है स्पोर्ट्स इंजरी में या फिर डिजेनरेटिव कंडीशंस में। तो ये 2 मोस्ट कॉमन पद्धतिज हैं जिनसे हम क्रोनिक दर्द का इलाज कर सकते हैं।
1: और किन किन बीमारियों में इस तरीके से क्रोनिक पेन होता है ये भी जरूर जानना चाहेंगे।
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। कुछ बीमारियों में तो क्रोनिक पेन जो होता है वो हमें बीमारी दिखती है, लेकिन कुछ में आपको पेशेंट पेन बताता है लेकिन आपको कुछ दिखता नहीं। अब इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल है हर्पीज निकला, पेशेंट निकला ठीक हो गया, 1.5 महीने में 1 महीने में जख्म भर गए, लेकिन मरीज को 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। तो हमें कोई जख्म दिख नहीं रहा है, वो जख्म भर गया है लेकिन मरीज को उस जगह पे फिर भी पेन चल रहा है। एक कंडीशन होती है फैंटम पेन। मान लो दुर्भाग्यपूर्वक किसी पेशेंट का हाथ या पैर कट जाता है, लेकिन हाथ कट जाता है सिर्फ कंधे पे स्टंप बचता है लेकिन उसको फिर भी हाथ में दर्द महसूस होता है या हाथ में खारिश होती है, इसको हम फैंटम पेन बोलते हैं। ये भी एक क्रॉनिक नर्व पेन है जिसको हम क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन भी बोलते हैं। एक एंटिटी होती है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें बहुत मुश्किल है कोई कारण ढूंढना लेकिन स्टिल पेशेंट को पेन महसूस होता है एनीवेयर इन द बॉडी। उसमें बहुत रिसर्च है कि प्रोबेबली इन पेशेंट्स में देर इज लैक ऑफ हैप्पी हार्मोन्स, बिकॉज जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे को अंदर ही अंदर हमारे पेन को रिलीव करते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज से एंडोजीनियस मॉर्फिन निकलती है, बॉडी थोड़ी बहुत अफीम बनाता है और हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनको एक्सरसाइज करके बड़ा अच्छा महसूस होता है और छोटा मोटा क्रैम्प उनका बेटर भी हो जाता है। और अब बात करते हैं वो क्रॉनिक पेन कंडीशन जो हमें दिखती है, जैसे कोई पेशेंट चल रहा है, चलते चलते लिंप कर रहा है, पैर लड़खड़ा रहा है, तो कमर से उसको सैटिका हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, वो बैक पेन हो रहा है, किसी का कंधा नहीं मूव कर रहा, वो हमें दिख रहा है कि फ्रोजन शोल्डर है। तो इन सब कंडीशंस में हम जो मिनिमल इन्वेसिव इंटरवेंशंस करते हैं, हर कंडीशन के लिए डिफरेंट है, बहुत वैरायटी ऑफ मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस हैं जो कि डे केयर एडमिशन में ही होती हैं, इनको 24 आवर एडमिशन की जरूरत नहीं है, जो कि आज की डेट में हर गवर्नमेंट पैनल और हर इंश्योरेंस पैनल में वो सुविधा उपलब्ध है, इंक्लूडिंग रीजनरेटिव मेडिसिन। तो इससे हम पेशेंट को बहुत अच्छा पेन साइकिल ब्रेक करके दे सकते हैं और बहुत लंबे समय के लिए आराम दे सकते हैं।
1: मैम ये जरूर जानना चाहेंगे जैसे कि कंटिन्यूएशन मेडिसिन लेना ही क्या इसका एक समाधान है, क्या अदर ऑप्शंस पर जा सकते हैं, यानी कि एक्यूप्रेशर थेरेपी या कुछ और तरीके की हम लोग ट्रीटमेंट लें?
0: ये कंटीन्यूअस मेडिसिन लेना ऑब्वियसली एडवाइजेबल नहीं है। हमारे पास इस तरह से बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि इंडिया में अब जैसे वो क्वैक प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, तो कुछ इस तरह की दवाइयां हैं जो बॉडी को डिपेंडेंट बना देती है और वो दवाइयां वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कंटीन्यूअसली लेते रहते हैं। कुछ सालों तक उनको बहुत अच्छा लगता है वो दवाइयां लेकर, और फिर कुछ साल बाद जब डिपेंडेंट हो जाते हैं वो दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं। तो दवाइयां लेना सॉल्यूशन नहीं है। जैसे पहले भी हमने बात की कि हमें पेन जनरेटर ढूंढना बहुत जरूरी है और पेन जनरेटर ढूंढकर उसका इलाज करना बहुत मैंडेटरी होता है। हाँ, ये वाली जो पद्धतियां होती हैं, जो एक्यूप्रेशर है या ड्राई नीडलिंग है, ये सब कुछ हेल्पफुल होते हैं। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर एक्सरसाइजेस अंडर गाइडेंस, ये सब कुछ हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे एक बहुत ही कॉमन से पेन की बात करते हैं, सपोज फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर हम फोर्सफुली अगर उसमें एक्सरसाइजेस करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हमारी मांसपेशियों में डैमेज हो जाए। लेकिन अगर हम उसी पेन को ट्रीटमेंट करते हैं पेन फिजिशियन के पास जाके, उस पेन का पहले इलाज करते हैं, जो हम शोल्डर की मूवमेंट ओपन कर देते हैं, हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं इस तरह के जिससे शोल्डर की पेन फ्री मूवमेंट हो जाती है, वो प्रोसीजर करने के बाद अगर हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जो दर्द में जो रिलीफ है, जो एक्सरसाइजेस का जो रिलीफ था, वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता। तो सिर्फ एक्सरसाइज करना सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ दवाई लेना सॉल्यूशन नहीं है, या सिर्फ इंटरवेंशन करना सॉल्यूशन नहीं है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए कि सारे लोग, हमारे जो पेन फिजिशियंस हैं वो और उनके साथ जो अटैच्ड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो मिलके एक अप्रोच डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट में ये प्रोसीजर होना चाहिए और इस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए।
1: लाइफस्टाइल की बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या लाइफस्टाइल भी इफेक्ट करता है क्रॉनिक पेन में?
2: यस मैम, हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल से आप बीपी भी प्रिवेंट कर सकते हो, डायबिटीज भी प्रिवेंट कर सकते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले पेन, स्पाइन पेन, नी पेन, जॉइंट पेन, इनको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। बट दुर्भाग्यपूर्वक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आज की फास्ट पेस लाइफ में थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन, बहुत पेशेंस और बहुत एफर्ट लगता है।
1: और तबास मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि क्रॉनिक पेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ हमारे लिसनर्स के लिए रहेगा कि किस तरीके से इसको अगर हम घर में क्योर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर ये एक्सेस में ये पेन जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकता। क्रॉनिक पेन के ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने प्रॉपर फिजिशियन से इवैल्यूएट करना और उसका ट्रीटमेंट लेना मैंडेटरी है। बट यस, घर पे हेल्दी लाइफस्टाइल के अच्छा डाइट, अच्छा फ्रूट्स फाइबर रिच डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर लाइफस्टाइल, कि अगर आपके लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, आपकी जॉब इस तरह की है, डेस्क जॉब है, आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो आपको चेयर पे किस पोस्चर में बैठना है और कितना टाइम में आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना है एंड क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि आपकी स्पाइन हेल्दी रह सके, ये सब कुछ आप घर पे फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, फॉर प्रिवेंटिंग बेसिकली द क्रोनिक पेन्स।
1: और इस विषय पर हमारे श्रोताओं के लिए क्या कुछ मैसेज और जानकारी आप देना चाहेंगे?
2: एक ही मैसेज है हमारी तरफ से कि अगर आप किसी भी तरह के दर्द में, चाहे वो मांसपेशी का दर्द है, हड्डी का दर्द है, घुटने कमर कंधे का दर्द है या कैंसर का पेन है और अगर आप उससे पीड़ित हैं, आपको नहीं कोई समाधान मिल रहा, तो आप अपने नजदीकी पेन फिजिशियन से मिलिए। हमारे ISSP की वेबसाइट पे हर शहर में जितने भी पेन फिजिशियन काम करते हैं वो अपने शहर का नाम डालेंगे तो वहाँ के शहर के सारे पेन फिजिशियन का नाम उस वेबसाइट में दर्ज है।
1: आज कई जो टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: धन्यवाद। दीर्घकालिक दर्द, कारण, लक्षण और प्रबंधन। अभी आप इस विषय पर ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारे प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर नम्रता डबास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन, और डॉक्टर दीप दीवांशु लाल, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी मंजीत कौर। दीर्घकालिक दर्द केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक और भावात्मक चुनौतियां भी पैदा करती हैं। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व एल्जाइमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एल्जाइमर्स एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो आपकी रोजाना की दिनचर्या को काफी प्रभावित करती है। इस बारे में हमने बात की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव से।
3: What is the basic difference between the two, dementia and Alzheimer's?
4: So, जो Alzheimer's disease या Alzheimer's dementia is a variety of dementia. तो dementia की मतलब नहीं है कि दो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर आदमी जो भूलते हैं या भूलने लगते हैं ये नहीं कि उनको dementia हो गया. So, that is एक myth है, एक गलतफहमी है कि अगर हम कुछ भूलने लगे तो हमको dementia हो गया. नहीं, that is one important thing. दूसरी चीज कि हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं है, तो कहीं वेराइटीज होते हैं उसमें ट्रीटेबल होते हैं जो अच्छी तरह उपचार हो जाएगा और बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ होते हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ होता है हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, वो डीजनरेशन से हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, तो उन वेराइटीज में सबसे कॉमन वेराइटी है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। सो देयरफॉर हर भूलना डिमेंशिया नहीं है, हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिसीज नहीं है।
3: श्रोताओं, हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन आत्महत्या के मामलों की रोकथाम में मदद के लिए लोगों को जागरूक और जानकार बनाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसी जानकारी को समेटे है हमारी भेंट वार्ता। हमारी विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर स्वाति। कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे लोग सुसाइड करने के लिए प्रेरित होते हैं, आपकी नज़र से एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिसके कारण लोग ऐसा करते हैं?
6: दो प्रमुख कारण हम समझते हैं। एक तो हुआ मानसिक स्वास्थ्य, जहाँ पे डिप्रेशन बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है कि जिसकी वजह से एक पर्सन आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है। उसके अलावा नशा करना, कोई तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना भी कारण बन सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि डिप्रेशन नहीं होता लेकिन किसी फेलियर की वजह से या किसी क्राइसिस की वजह से उस इंसान को एक बहुत सेंस ऑफ वर्थलेसनेस कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी, मैं दूसरों के ऊपर बोझ बन जाऊंगा, या एक सेंस होना कि मेरी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, मीनिंगलेस है, मेरे जीने से किसी को क्या फर्क पड़ता है या मेरे मरने से भी क्या हो जाएगा, वो सब भी कारण बन सकते हैं। सामाजिक की हम अगर बात करें तो दो तीन कारण पाए गए हैं उसमें। एक होता है कि आपको जहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं आती, आइसोलेशन।

0: हो जाता है। दूसरा वजह हो सकता है कि आपकी मान लीजिए कम्युनिटी या सोसाइटी या फैमिली इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि आपको उसमें अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं कौन हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ वो नहीं मिलता। जहाँ पे औरतें किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं उनमें इस तरह के सुसाइड देखे जाते हैं। या जैसे अगर हम फार्मर्स वगैरह की बात करें तो जहाँ पे एक सिस्टम से वो हो जाना कि ये सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिस्टम को भी एक पॉइंट देना कि देखिए आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इंसान आत्महत्या के लिए प्रेरित हो।
1: जी जी, बहुत सारे आपने कारण बताए तो उसे मुझे लगता है कि शायद जिंदगी के किसी पड़ाव पर भी इस तरह की भावना किसी को आ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: या आप कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप बताना चाहेंगी जहाँ पर ये ज्यादा कॉमन है सुसाइड टेंडेंसी?
0: आने को तो किसी भी स्टेज पर आ सकता है, बट जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क का एज माना गया है वो है 15 साल से लगभग 35 से 40 साल। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट्स की एंड यंग एडल्ट्स की। और उसके अलावा एल्डरली में भी, जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी सुसाइड की प्रवृत्ति देखी गई है।
1: अच्छा।
0: जो हाई रहती है
1: तो वो उनका कारण क्या बनता है?
0: उनमें कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है तो लोनलीनेस, अकेलापन, फाइनेंशियल इश्यूज अगर हो गए हैं, क्रॉनिक फिजिकल इलनेसेस, तो मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, पेन वगैरह होना। एंड सबसे और इम्पोर्टेंट है जो सुसाइड देखा गया है वो जो लोग विडो पति या पत्नी गुजर गए हैं उनमें सुसाइड का रिस्क बहुत हाई देखा
1: अच्छा।
0: गया है।
1: तो जैसा मैं अभी पूछ रही थी आपसे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता लगे, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन, डिप्रेशन इतना कॉमन लूज वर्ड्स की तरह यूज होता है कि हम रोज ही बोलते हैं कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ, आज तो मुझे एंजाइटी हो रही है, तो क्या ये सुसाइड की तरफ इशारा करती है, ये कैसे पता लगे?
0: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम अपने कान और आंख खुले रखेंगे तो हम जान सकते हैं कि अगर हमारे आसपास वाला, हमारा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर शायद इस तरफ जा रहा है।
1: जी।
0: तो कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं, जहाँ पे एक इंसान ने मान लीजिए बहुत बार एक बात नेगेटिव, नकारात्मक बातें करनी शुरू कर दी, जिंदगी क्या है, क्या करना है, फ्यूचर में तो सब ऐसे ही है, कुछ भी तो ठीक नहीं होने वाला, मेरे तो कुछ करने से कुछ होगा नहीं। उसके बाद कभी इस तरह से बातें कि इससे अच्छा तो भगवान उठा ले, या चलते चलते एक्सीडेंट ही हो जाए, मन करता है कभी कभी कि ये सब छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप आएगा जहां पे इंसान शायद ये बोलने लगे कि मुझे कभी कभी लगता है कि खुद को हानि पहुंचा लूं, खुद को कुछ कर लूं। फिर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हो सकता है वो दवाइयां इकट्ठा करने लगा हो, ब्लेड्स रखने लगा हो, या बाहर से कोई पेस्टिसाइड या ऐसी कोई चीज खरीद के अपने पास रख ली हो, तो उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। जाके रिश्तेदारों से मिलना, ऐसे लोगों से मिलना जिनसे वो यूजुअली नहीं मिलेगा फैमिली में, काइंड ऑफ सेइंग गुड बाय कि मैं जाने वाला हूँ, एक्सप्लिसिटली ना बोले,
1: कुछ लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव,
0: लाइफस्टाइल में बदलाव देखने को मिलेगा, अपनी चीजें किसी और को उसने दे दी कि चलो दे देता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिस होती है, एक मान लीजिए एक लंबे समय से इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस एंजाइटी में चल रहा है, अचानक से बिना किसी ट्रीटमेंट के या बिना किसी वजह के अचानक से पॉजिटिव मूड हो जाना, एंड उस समय केसेस देखे गए हैं कि इट वाज काइंड ऑफ बिकॉज उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे अब जाना है यहाँ से। इट वाज काइंड एक बर्डन हट जाता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट अब मेरा फैसला हो गया कि मुझे क्या करना है। दैट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि कुछ गड़बड़ हो,
1: रेड फ्लैग है जिसको हमें जरूर वॉच करना चाहिए, और ये मुझे लगता है लोग मिस करते होंगे। अच्छा, जैसे बहुत समय कई बार ऐसा होता है कि हमें सिम्टम भी दिखते हैं, हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, और कई बार हमारे साथ भी ऐसी कई चीजें हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, और कई मिथ्स भी हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो जितना अवेयर हम फिजिकल बीमारियों के लिए हैं उतना हम मेंटल बीमारियों के लिए नहीं है, तो कई बार हम उनको नेग्लेक्ट भी करते हैं। तो कहाँ से ये नेग्लेक्ट जो है ये हार्मफुल हो सकता है?
0: अगर जैसे मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड रहा है और एक बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर उसके बारे में बात कर रहा है और आपने इग्नोर कर दिया, वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बच्चा अगर आपको पता चले कि आपका फ्रेंड या अगेन कोई फैमिली मेंबर खुद को हर्ट कर रहा है, चाहे सुसाइड के लिए नहीं कर रहा बट खुद को हर्ट कर रहा है, और आपने कहा चलो हर्ट ही तो कर रहा है कि थोड़ा बहुत ब्लेड से अपने आप को काट लिया या दीवार सर पे दे दिया, मार दिया या हाथ से मुक्का मार दिया तो कोई बात नहीं, सुसाइड नहीं करेगा। सो ये रीजंस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर पहले उन्होंने कभी अटेम्प्ट किया है और वो हमने इग्नोर कर दिया कि पहले एक बार तो करा है लेकिन अब नहीं करेगा,
1: समझा बुझा दिया,
0: हाँ समझा।

0: बुझा दिया है, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, तो अब तो ये ठीक हो जाएगा, तो अब ये नहीं करेगा।
1: अच्छा, तो रिलैक्स नहीं होना है।
0: रिलैक्स नहीं होना है। अगर वो जो हमने रिकग्नाइजिंग साइंस की बात करी, अगर उनमें से कुछ भी दिखता है तो सतर्क हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि वो अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहा है।
1: अच्छा, ये भी बताइए कि कई बार जैसे फैमिलीज में भी हमने देखा है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कहे जाते हैं जेनेटिक भी होते हैं कई बार, और एक्वायर्ड तो होते ही हैं। तो अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री रही है तो क्या वो इफेक्ट कर सकता है फ्यूचर जनरेशन में?
0: बिल्कुल कर सकता है। जेनेटिक्स का रोल होता है, जैसे फर्स्ट डिग्री में अगर किसी को, फर्स्ट डिग्री मतलब पेरेंट्स हैं, सिबलिंग है, उसमें किसी को मेंटल इलनेस है तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। सेकेंड डिग्री ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा सा कम करेगा, तो ऐसे करके होता है। तो रिस्क फैक्टर्स तो हाई होते हैं अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो।
1: तो इस तरह के सिम्टम्स वाला, जैसे हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप जाएं और मिलें डॉक्टर से और बताएं, पूछें कि क्या है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो किस तरह से आप निदान, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं?
0: सो जब हमारे पास पेशेंट पहली बार आता है तो सबसे पहले उसकी डिटेल केस हिस्ट्री ली जाती है, पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से पहले हम बात करते हैं, अगर स्पेशली अगर चाहे वो एडल्ट है, बच्चा है, कोई भी है, एंड फिर हम फैमिली मेंबर्स से भी बात करते हैं। तो उसमें हम सारी चीजें, जितने भी मेंटल इलनेसेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग अब्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज, उन सबको हम डिटेल में असेस करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि अगर सुसाइडल आइडियाज हैं, क्या क्या वो बता रहा है कि हाँ मेरा मन करता है मैं खुद को हार्म कर लूँ, क्या उसने कोई प्लान बनाया है, क्या उसने कोई चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, या जाके जैसे रेलवे स्टेशन में देख के आया है क्या हो रहा है। तो हम फिर सिवेरिटी कितनी है, कितना,
1: इसकी स्टेजेस भी होती हैं।
0: स्टेजेस में जैसे बोला गया है, एक शुरू में आएगा कि भगवान मुझे उठा ले, इसको कहते हैं डेथ विश, कि मैं कुछ नहीं करूंगी अपने आप को बट भगवान उठा ले। उसके बाद एक्टिव सुसाइडल आइडिया, कि कोई कुछ नहीं करने वाला, मुझे ही खुद को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन विदाउट एनी प्लान, कोई प्लान नहीं बनाया। और तीसरा होता है जहां पे प्लान बनाना शुरू कर दिया, तो आपने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कहां से, किस तरह के सब्सटेंसेस से, किस चीज से मैं कंज्यूम कर सकता हूं, या किससे पेनलेस डेथ हो सकती है, और फिर उससे लास्ट में आपने एक्चुअली उन चीजों को इकट्ठा करना या देखना शुरू कर दिया, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने लगना, वो फिर लास्ट स्टेज।
1: कोई ऐसी हेल्पलाइन हो या कोई ऐसी वेबसाइट हो जो आप कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताना चाहें?
0: तो एक जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने शुरू करी है वो है टेलीमानस, जिसका नंबर है 14416। वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो आपको स्क्रीन करेंगे, आपके इश्यूज को समझेंगे और आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करके, किसी भी चीज में, चाहे वो मेंटल इलनेस है, सुसाइड है, पर्सनालिटी इशू है, और उसके बाद वो आपको एक्सपर्ट्स के पास रेफर करेंगे। एंड ये सारी चीजें आप ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं इजिली। सो उसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट हेल्पलाइंस वगैरह भी हैं, और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है।
1: तो बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिल रही है डॉक्टर स्वाति। तो आज श्रोताओं, आपने सुना आत्महत्या और इसके कारण, इसका उपचार और इसका बचाव। अभी आप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: और श्रोताओं, अब समय हुआ है अगले कार्यक्रम धरती आकाश का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।
4: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर निमिष कपूर और आप सुन रहे हैं विज्ञान और तकनीक से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो केवल रेल की पटरियों पर नहीं चल रही बल्कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रही है। जरा कल्पना कीजिए, एक ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, उसके भीतर यात्री सफर कर रहे हैं, इंजन अपनी पूरी शक्ति से ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस ट्रेन में न डीजल जल रहा है और न उससे पारंपरिक इंजन की तरह धुआं निकल रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये ट्रेन चल कैसे रही है, और इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। और भारत ने अब हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन को वास्तविक परिचालन में उतारकर स्वच्छ रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन, जिसे नमो ग्रीन रेल का नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद में किया गया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन तकनीक पर काम कर रहे हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। तो आज की हमारी इस वार्ता में हम बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन पर, यह कैसे चलती है, भारत में इसका क्या महत्व है और दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत की उपलब्धि कहां तक जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हाइड्रोजन ट्रेन वास्तव में विकसित भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में रेलवे का बहुत विशाल नेटवर्क है। देश के अनेक रेल मार्ग विद्युतीकरण से जुड़ चुके हैं और विद्युत ट्रेनें यहाँ प्रभावी ढंग से चल रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ रेल मार्ग ऐसे हैं जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है और वहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेनें संचालित होती हैं। यहीं पर हाइड्रोजन ट्रेन एक संभावित विकल्प बनकर सामने आती है, क्योंकि किसी रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने के लिए ओवरहेड बिजली के तारों सहित पूरी विद्युत अवसंरचना विकसित करनी पड़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसी व्यवस्था अलग तरीके से काम करती है। इस ट्रेन में बिजली बाहर से लगातार नहीं लाई जाती, बल्कि ट्रेन के भीतर ही हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाती है। यानी हाइड्रोजन ट्रेन अपने साथ अपना ऊर्जा स्रोत लेकर चलती है, इसीलिए गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों पर इसका महत्व बढ़ जाता है। भारत की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का उद्देश्य भी ऐसे ही गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों पर डीजल ट्रेनों के स्थान पर स्वच्छ हाइड्रोजन आधारित तकनीक को बढ़ावा देना है। जींद सोनीपत रेलखंड को इसी उद्देश्य से पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। अब आते हैं इस तकनीक के सबसे रोचक हिस्से पर। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन को सामान्य अर्थों में जलाकर इंजन नहीं चलाया जाता, इसके बजाय इसमें इस्तेमाल होता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, यानी PEMFC। नाम जरा वैज्ञानिक है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस पहुंचती है। हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अलग किया जाता है। विशेष झिल्ली प्रोटॉन को तो दूसरी तरफ जाने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोकती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत परिपथ से होकर गुजरते हैं और यही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा पैदा करता है। यह बिजली ट्रेन की इलेक्ट्रॉनिक मोटरों को चलाती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन के प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं, यानी इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद है पानी और ऊष्मा। डीजल इंजन की तरह यहाँ दहन से धुआं नहीं निकलता, यही हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। अब एक और दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। हाइड्रोजन का भार के हिसाब से ऊर्जा घनत्व लगभग 120 मेगाजूल प्रति किलोग्राम बताया गया है, जबकि डीजल का लगभग 43 मेगाजूल प्रति किलोग्राम है। अर्थात समान भार की तुलना करें तो हाइड्रोजन में डीजल की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हाइड्रोजन का उपयोग अपने आप में यह सुनिश्चित नहीं करता कि पूरी ऊर्जा व्यवस्था शून्य कार्बन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन कैसे बनाया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा की मदद से तैयार किया जाता है तो इसका पर्यावरणीय लाभ काफी अधिक हो सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन की कहानी केवल ट्रेन तक सीमित नहीं है, यह कहानी जुड़ी है ऊर्जा उत्पादन से, नवीकरणीय ऊर्जा से और पूरे ऊर्जा तंत्र के परिवर्तन से। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन कितनी शक्तिशाली है, अब थोड़ा ट्रेन की तकनीकी संरचना पर भी बात कर लेते हैं। भारत की इस हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं। इनमें 2 हाइड्रोजन चलित पावर कार और 8 यात्री डिब्बे हैं। प्रत्येक पावर कार में 1200 किलोवाट क्षमता का फ्यूल सेल लगाया गया है, यानी दोनों पावर कार मिलकर लगभग 2400 किलोवाट बिजली उपलब्ध करा सकती हैं। ट्रेन की स्वीकृत अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि इसका डिजाइन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और परीक्षणों के दौरान इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलाया गया। ट्रेन में लगभग 2600 यात्रियों की यात्रा क्षमता है और यह ट्रेन 89 किलोमीटर लंबे जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी, जहां 13 मध्यवर्ती स्टेशन है। यह सिर्फ ट्रेन नहीं, पूरा भारतीय सिस्टम है। किसी नई ट्रेन को बनाना एक बात है, लेकिन एक ऐसी ट्रेन बनाना जिसमें हाइड्रोजन का उत्पादन या आपूर्ति, उसका भंडारण, संपीड़न, ईंधन भरना, सुरक्षा के इंतजाम, ट्रेन का डिजाइन और परिचालन, सब कुछ एक साथ काम करे, बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती है। इस परियोजना में कई भारतीय संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड, RDSO लखनऊ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन और हाइड्रोजन के भंडारण और वितरण से जुड़ी व्यवस्था के लिए PESO यानी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने लाइसेंस प्रदान किया है। हाइड्रोजन ट्रेन और डीजल ट्रेन में फर्क क्या है? अब एक बहुत सरल तुलना के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। डीजल ट्रेन में जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सूक्ष्म कण जैसे प्रदूषक निकल सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन में बिजली रासायनिक

0: अंकन लंबे समय के परिचालन अनुभव के बाद ही बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसका इंतजार शायद आपको भी है, क्या भारत दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाला पहला देश है? नहीं, हाइड्रोजन रेल तकनीक पर दुनिया के कई देश पहले से काम कर रहे हैं। भारत ने जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो फिर भारत की उपलब्धि क्या है, आप ये जरूर जानना चाहेंगे। भारत की असली उपलब्धि इस बात में है कि उसने हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को भारतीय रेल प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने, ट्रेन में एकीकृत करने और वास्तविक परिचालन में उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस परियोजना में भारतीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। RDSO ने तकनीकी और डिजाइन की विशेषताओं में बड़ा योगदान दिया है। अब इस पूरी कहानी को विकसित भारत के व्यापक संदर्भ में देखते हैं। विकसित भारत केवल बड़ी इमारतों, तेज रेलगाड़ियों या आधुनिक शहरों का नाम नहीं है। विकसित भारत का अर्थ है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन, उन्नत तकनीकी क्षमता, स्वदेशी अनुसंधान और निर्माण, कुशल मानव संसाधन और ऐसी अर्थव्यवस्था जो भविष्य की तकनीकों को अपनाने के साथ उन्हें विकसित भी कर सके। हाइड्रोजन ट्रेन इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ती है। भारत आज अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। यदि सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ता है तो भविष्य में हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है हाइड्रोजन ट्रेन का संबंध केवल रेलवे से नहीं है, इनका संबंध है भारत की ऊर्जा सुरक्षा से, जलवायु लक्ष्यों से, आत्मनिर्भर भारत से और हरित अर्थव्यवस्था से। भारत ने हाइड्रोजन को व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बनाया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। और अब हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन में होता है तो यह स्वच्छ ऊर्जा को सीधे हमारी रोजमर्रा की गतिशीलता से जोड़ता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधनों की खपत को कम करना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी तकनीक का उदाहरण है जो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन के बीच पुल का काम कर सकती है। हाइड्रोजन को सभी ट्रेनों के लिए एकमात्र ईंधन नहीं माना जा सकता। जहां रेल मार्ग पहले से विद्युतीकृत हैं, वहां विद्युत ट्रेनें अधिक प्रभावी हो सकती हैं। कुछ परिस्थितियों में बैटरी आधारित प्रणालियां भी उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे गैर विद्युतीकृत रेल मार्ग जहां लंबे समय तक डीजल का उपयोग जारी रहने की संभावना है, वहां हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विकल्प बन सकता है। यानी सही सवाल यह नहीं है कि हर ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी, सही सवाल यह है कि किस रेल मार्ग के लिए कौन सी स्वच्छ ऊर्जा तकनीक सबसे उपयुक्त है। और इसी प्रश्न का उत्तर भारत को अपने पायलट प्रोजेक्ट और वास्तविक परिचालन अनुभव से मिलेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल यह नहीं है कि एक ट्रेन हाइड्रोजन से चल रही है, इससे बड़ी उपलब्धि यह है कि तकनीक भारतीय संस्थागत क्षमता और राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को एक साझा लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यही तो है विकसित भारत की यात्रा। और शायद आने वाले समय में जब हम किसी गैर विद्युतीकृत रेल मार्ग पर बिना डीजल के चलती किसी हाइड्रोजन ट्रेन को देखेंगे तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस ट्रेन में केवल यात्री नहीं होंगे, उसमें सवार होगा भारत का स्वच्छ ऊर्जा का सपना, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का विश्वास और विकसित भारत का संकल्प।
1: मैं महेश भारती आज आपको अंतरिक्ष में हमारी तीसरी आंख के बारे में जानकारी दूंगा। EOS-05 एक जियोसिंक्रोनस यानी भूतुल्यकालिक इमेजिंग उपग्रह है जिसे 4 सितंबर 2026 को प्रातः 2:55 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसके लिए GSLV-F17 रॉकेट का प्रयोग किया गया। इसे भूतुल्यकालिक कक्षा में 35,860 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। यह मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में उसके साथ साथ उसी गति और दिशा में घूमेगा। ऐसा होने से यह भारतीय उपमहाद्वीप और निकटवर्ती इलाकों के सापेक्ष स्थिरता बनाए रखेगा। दूसरे शब्दों में यह साल के 365 दिन और 24 घंटे हमें निगरानी क्षेत्र की ताजा तस्वीरें लगातार उपलब्ध करवाता रहेगा। अतः यह अंतरिक्ष में हमारी तीसरी आंख की भूमिका निभाएगा। इस जानकारी का सबसे बड़ा फायदा कृषि क्षेत्र के लिए होगा। हमें आने वाले मौसम और उसमें होने वाले उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी मिल पाएगी। जब यह जानकारी हम किसानों को दे पाएंगे तो वे फसलों के बुआई को बेहतर प्रबंधन करके अपनी उपज बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। इस उपग्रह के द्वारा दी गई जानकारी का दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपदा प्रबंधन क्षेत्र में होगा। आने वाली बाढ़ सुनामी की पहले से चेतावनी देना संभव होगा, जिससे भविष्य में भारी जन हानि से बचा जा सकेगा। समुद्री चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी दी जा सकेगी और चक्रवात के आगे बढ़ने की दिशा और मार्ग का

0: अनुमान संभव हो सकेगा। इससे संभावित तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा सकेगा। तीसरी बड़ी उपयोगिता भू सामरिक क्षेत्र में होगी। हम शत्रुओं की सेना की गतिविधि और आवागमन की पूर्व सूचना पाकर हम अपनी सुरक्षा के सामरिक और रणनीतिक प्रयास कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारा देश विश्व के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो यह क्षमता रखते हैं। इस उपग्रह का वजन 2367 किलोग्राम है और इसका जीवन काल 10 वर्ष है। वर्तमान में भारत 20 इमेजिंग उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है, जिनमें से अधिकांश निम्न भू कक्षा में है। प्रक्षेपण के इसे GT यानी भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में भेजा गया और 7 सितंबर 2026 को इसके साथ लगे थ्रस्टर्स के जरिए इसे अपनी अभीष्ट कक्षा में 35,860 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। यहाँ यह रेखांकित करना भी जरूरी है कि इतनी अधिक दूरी होने के कारण इसके द्वारा लिए गए चित्रों का रेजोल्यूशन बहुत अधिक नहीं होता। इसकी खासियत लगातार नजर बनाए रखने में और 24 घंटों बिना पलक झपकाए। इसकी तस्वीरों को हमारे निम्न भू कक्षा में पहले से 20 इमेजिंग उपग्रहों द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के साथ मिलाकर देखा जाएगा। नोटी बॉय GSLV-F17 की ये 19वीं उड़ान थी। इसकी ऊंचाई 51.5 मीटर और वजन 420.5 टन था। उपग्रह का वजन 2367 किलो था, जो इसके द्वारा ले जाए जाने वाला सर्वाधिक पेलोड था। उपग्रह की सुरक्षा के लिए 4 मीटर व्यास वाला विशेष कक्ष बनाया गया था। इस भीमकाय रॉकेट के 3 चरण होते हैं। इसके पहले चरण के अंदर में S-139 सॉलिड रॉकेट मोटर होती है, जिसमें ठोस ईंधन HDPE का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य बूस्टर के चारों ओर स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती है, इसमें तरल ईंधन भरा जाता है। उड़ान भरने के तुरंत बाद यह चरण रॉकेट को वायुमंडल के बाहर धकेलने का काम करते हैं। जब पहला चरण अपना ईंधन जलाकर अलग हो जाता है तो तुरंत तरल ईंधन वाला दूसरा चरण सक्रिय हो जाता है। इसमें इसरो का प्रसिद्ध विकास इंजन लगा होता है। यह भाग रॉकेट को अंतरिक्ष की निचली सीमा तक ले जाता है। तीसरा चरण इस रॉकेट का सबसे सक्षम और उन्नत भाग है, जिसमें क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग होता है। अत्यधिक कम तापमान पर रखे गए तरल हाइड्रोजन तथा तरल ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यह चरण अंतरिक्ष के निर्वात में काम करता है तथा बेहद सटीक गति से उपग्रह को उसकी अंतरण कक्षा में स्थापित कर देता है। इस रॉकेट को कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ा है, इसलिए इसे नोटी बॉय यानी शरारती लड़के का नाम दिया गया। प्रक्षेपण के 3 प्रमुख चरण, पहला चरण ठोस और तरल। इसके केंद्र में S-139 सॉलिड रॉकेट मोटर लगी होती है, जिसमें ठोस ईंधन HDPE का उपयोग होता है। मुख्य बूस्टर के चारों ओर 4 स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती हैं, जो तरल ईंधन से संचालित होती हैं। उड़ान भरते ही यह चरण रॉकेट को तीव्र गति से वायुमंडल से बाहर धकेलता है। पहला चरण अलग होने के बाद दूसरा चरण सक्रिय होता है। इसमें इसरो का सुप्रसिद्ध विकास इंजन लगा होता है, जो रॉकेट को अंतरिक्ष की निचली सीमा तक ले जाता है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक, यह रॉकेट का सबसे उन्नत और सक्षम हिस्सा है। अत्यधिक कम तापमान पर रखे गए हाइड्रोजन ईंधन और तरल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के मिश्रण से संचालित यह क्रायोजेनिक चरण अंतरिक्ष के निर्वात यानी वैक्यूम में काम करता है और उपग्रह को बेहद सटीक गति व कोण से उसकी अंतरण कक्षा में स्थापित करता
1: है। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।
2: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजर हाँ। मैं संदीप कौर अज दे प्रोग्राम विच असी तुहानू सुना रहे हां एक वार्ता सोशल मीडिया अते परिवारिक रिश्ते। वार्ताकार होणगे डॉक्टर गुरप्रीत कौर। इस तों इलावा असी सुनांगे सूफियाना कलाम। दोस्तों अजकल तंबाकू दा सेवन जोरां ते है, जदके इस दे माड़े प्रभावां बारे असी सारे जानदे आं। कहा जांदा है कि तंबाकू इक अजिहा कातिल है जिहड़ा चुपचाप मनुख दी जिंदगी नूं लै लैंदा है। इंसान इक बार तंबाकू दा सेवन शुरू कर देवे तां उसदा इस नूं छड्डना बहुत मुश्किल हुंदा है, क्योंकि इस विच शामिल निकोटीन इंसान नूं इस दी वरतों छड्डन नहीं दिंदा। इंडियन कौंसल फॉर मेडिकल रिसर्च दे मुताबिक साडे देश दे मर्दां ते औरतां विच होने वाले सारे कैंसरां विचों 30% विच तंबाकू दा योगदान हुंदा है। मूंह दा कैंसर ते उस तों बाद फेफड़ियां दा कैंसर भारत विच सब तों

असी सुन रहे सी काफी बुल्ले शादी आ मिल यार सार लै मेरी हुण पेश है ए कलाम अल्लाहू दा आवाजा आबे कुली नी फकीर दे विचों जिसनू आवाज दित्ती ए बीबी नूरा ने।

असी सुन रहे सी ए सूफी कलाम अल्लाहू दा आवाजा आवे गुली नी फकीर दी विचों। हुन पेश है काफी बुले शादी बस कर जी हुन बस कर जी जिसनु आवाज दिती है प्रीति चावला ने।

0: बस कर जी।
1: असी सुन रहे सी काफी बुले शादी, बस कर जी, हुण बस कर जी। सानू उम्मीद है कि तुसी अज दे प्रोग्राम मिट्टी दी महक नूं माणिया होवेगा। तुहानू याद ही होवेगा कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम रोजाना इसे वक्त प्रसारित कीता जांदा है। सो अपने इस मनपसंद प्रोग्राम नाल जुड़ना ना भुलना। इस दे नाल ही मिट्टी दी महक प्रोग्राम दा समां खत्म हुंदा है। हुण संदीप कौर नूं इजाजत दिओ।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा

0: रहे हैं। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े एक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में प्रधान को अपने दल का समर्थन देने की घोषणा की। पुलिस ने बताया कि प्रधान के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रधान का नाम 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े कई मामलों में है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के जल्द पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। ये सर्वेक्षण विदेश में कारोबार करने के लिए स्वीडन की कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजो स्टेडियम में होगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माही में भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More on this from our correspondent.
2: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Court, and

पर्यावरण को का बचाव करने के लिए आप हमें बताइए कि आप एक छोटी सी क्या पहल कर सकते हैं, और इसके साथ आप अपने पसंदीदा गीत भी हमें भेज सकते हैं। और हमारा जो पहला संदेश है वो लिखते हैं आदरणीय उद्घोषक जी, सब प्रेम नमस्कार, आज के दिन की शुभकामनाएं किसी भी गीत में शामिल करें। जमशेदपुर से यह हमें मैसेज आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया का। इसके अलावा हमारे पास जो मैसेज है, लिखते हैं आदाब, किसी भी गीत में शामिल करें बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू का मैसेज आया है। इसके अलावा डुमरांग बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम और दानिश का मैसेज हमारे पास आया है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये कहते हैं कि पर्यावरण को बचाना हम सब की एक जो सामूहिक जिम्मेदारी है। कितनी अच्छी बात कही आपने। और ये लिखते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, क्योंकि ये जो धरती है ना, जब ये हरी भरी होती है, जब पेड़ पौधे से समृद्ध होती है, हमारी नदियाँ ये स्वच्छ होती हैं, तो चारों ओर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। हमें सांस लेने के लिए एक अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। और ये कहें कि पूरा जो ये मुझे लगता है कि एक हमारे पास, जी हाँ, आपका मैसेज आ गया है। लिखते हैं, हो सिद्धार्थ जी नमस्कार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ हमारे मेल को पढ़ें। जी हाँ, और पर्यावरण को बचाना एक बड़ा संकल्प है, हम सभी को संकल्प लेना होगा, बिल्कुल। और इसके साथ ही एक बड़ा सा, जिसे कहते हैं, बड़ा रिलेटेड सा सॉन्ग है जो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर।

जी हाँ, ये कौन चित्रकार है, किसने इस खूबसूरत प्रकृति को बनाया है, हमारी इस हरी भरी धरती को। और इसी से मिलता जुलता एक संदेश आया है हमारे पास। ये लिखते हैं कि नमस्कार, पर्यावरण हमारी जिंदगी का आधार है। स्वच्छ हवा, साफ पानी और हरियाली के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। घर और आसपास साफ सफाई रखें, कचरे को सही जगह पर डालें और बिजली की भी बचत करें। छोटी छोटी आदतें मिलकर प्रकृति को सुरक्षित रखने में बड़ा योगदान दे सकती हैं। कितना अच्छा आपने संदेश भेजा है। और ये कह रहे हैं रोशन दिवांगन, जो कि हमें छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं। इसके अलावा कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी मिलकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसके अलावा हमारा अगला संदेश है, लिखते हैं सिद्धार्थ भाई जी, नमस्कार। पर्यावरण को महफूज रखना हमारा नैतिक फर्ज है और हमने अपने घर के बाहर पूरी बागवानी कर रखी है, उन्हें खाद पानी देना दिनचर्या में शामिल है। बिल्कुल अच्छी बात है। लिखते हैं चंडीगढ़ तो वैसे भी पर्यावरण के बारे में जागरूक है और हरियाली ही हरियाली है। कितनी अच्छी बात लिखी सतीश अनेजा जी, बिमल अनेजा के साथ। बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि जब आप इस हरी भरी धरती को देखते हैं तो मन अंदर से प्रसन्न हो जाता है। इसके अलावा हमारे अगला संदेश आया है, भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया लेकिन संभालना हमारा फर्ज है। बिल्कुल अच्छी बात आपने लिखी है। संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर और साथ में आपके परिवार के सभी सदस्य जालंधर से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास संदेश है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। बिल्कुल, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जब प्रकृति की बात चल रही है और बहुत सारे हम हरी भरी वसुंधरा की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं।

जी हाँ, प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है। और आपके अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं पर्यावरण के बारे में। 6067 मोहाली चंडीगढ़ से हमें टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप हमें संदेश भेजते हैं और ये लिखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दे डू नॉट रन आउट। कितनी अच्छी बात आपने कही कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें इसको बहुत केयरफुली और सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। और हमारे अगले श्रोता रघुवीर नगर से हमें लिखते हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू, इनका संदेश हमारे पास आया है। इसके अलावा हमारे पास संदेश है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का, बागपत उत्तर प्रदेश से। और हमारे पास संदेश है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी करवी का संदेश हमारे पास आया है। और लिखते हैं हमारे हमें किसी भी मधुर गीत में शामिल करिए। और ये संदेश है नगर निगम वार्ड नंबर 28 से नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत और वसीम इकरत और परिवार के सभी सदस्य।

जी हाँ, ये हवाएं, ये फिजाएं और खूबसूरत समा, ये तभी बनता है जब आपका पर्यावरण स्वच्छ होता है। आपके बहुत सुंदर सुंदर संदेश आज आपकी पसंद में आपने हमें भेजे, आपके पसंदीदा गीत हमने आपको सुनवाए। तो इसी के साथ आज इस कार्यक्रम से विदा दीजिए अपने होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह को।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं कमल किशोर बड़ाइक और कौशिक रॉय। आइए विज्ञान भवन चलें।
4: नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन का उद्देश्य आज विश्व के समक्ष उपस्थित गंभीर पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी चुनौतियों पर व्यापक रूप से संवाद करना है, विचार विमर्श करना है और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के लिए एक प्रतिष्ठित वैश्विक मंच उपलब्ध कराना है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के न्यायिक और पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस सम्मेलन की विभिन्न गतिविधियों का पूरा विवरण हम आप तक पहुंचाने के लिए मैं हूं आपका दोस्त कमल किशोर बड़ाइक और मेरे साथी हैं कमेंटेटर कौशिक रॉय। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने की क्षमता, सर्कुलर इकोनॉमी, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, सतत ऊर्जा समाधान समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। तकनीकी सत्रों में जलवायु न्याय, पर्यावरण कानून एवं शासन, वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वन संरक्षण जैसे पुनर्स्थापन जैसे कई विषय शामिल हैं।
5: नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द conference that has been organized by the National Green Tribunal, India's apex and specialized statutory

0: इससे संबंधित आदेश और निर्णय कभी भी देख सकते हैं। वहीं डिस्प्ले बोर्ड फीचर आपको एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की चल रही कार्यवाही से जुड़े रखता है। ई फाइलिंग, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, करियर एंड रिक्रूटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी अब एक ही ऐप पर उपलब्ध हैं, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी तक आपकी पहुंच और भी आसान बनेगी। आप अपनी आवश्यक जानकारी को फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर केवल एक क्लिक में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस, एनी टाइम, एनी वेयर।
1: That was a short film on the features of the National Green Tribunal mobile application, and the plenary session is packed with the delegates and domain experts and legal numeraries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
2: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं।
1: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।
3: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यहाँ हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है। मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है।

विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है और मैं हर भारतवासी से कहूंगा, आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं।
ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में एलईडी बल्ब, जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब्स घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने है। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, यह आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है, हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है, और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है, और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना। 2014 से पहले के साल में भारत में 3,000 से भी कम ईवी की बिक्री थी। 3,000। वही पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है, और इससे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब

किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे। 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम, आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवे का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है। और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब

0: ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट को वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस, उससे जो नए विचार नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: But, ladies and gentlemen,
2: Honorable Prime Minister delivered the inaugural address at the Future of Environment and Climate Dynamics Conference organized by the National Green Tribunal here at the plenary session of Vigyan Bhavan. And now the Honorable Prime Minister is departing from the plenary hall. He's shaking hands with the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, and the Chairperson of the NGT, Justice Prakash Srivastava, and the Chief Justice of India, Justice Shri Suryakant, and the Attorney General for India, Shri R. Venkatramani. And the dignitaries have now departed from the plenary hall of Vigyan Bhavan. And Kamal, the Prime Minister, in very unequivocal terms, mentioned about India's commitment, deep commitment to nature and environment since the dawn of civilization. The Prime Minister complimented the NTG for organizing this timely conference, and he said that carbon emission is wrongly blamed on developed countries, especially of the global south. The historical truth is that the Honorable Prime Minister mentioned that per person emission in India is below 50% of the global average. The developed countries have a per person emission that is more than six times that of India. The Prime Minister mentioned that our traditions and strengths are being shared with the world today. At the Conference of Parties 21 in Paris, the Prime Minister mentioned that India mentioned about convenient action and conformity for change. The Prime Minister mentioned the initiatives of India, such as the One Sun, One World, One Grid, the International Solar Alliance, the CDRI, the Global Biofuel Alliance, the Big Cat Alliance, and Mission Lifestyle for Environment. India

0: as ancient knowledge, and its deep commitment to environment is well known. Today, India is a key player in the world of renewable energy. In the last 12 years, solar energy increased from just 2 gigawatts to more than 160 gigawatts now. Through the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, more than 50 lakh houses have solar rooftop panels now, and 80,000 rupees per house has been given as financial help. Through the Kusum Yojana, 30 lakh solar pumps are now functional. The One Nation, One Grid has been completed, and with the LED bulbs, the question of environment pollution has been taken care of. 20 crore tons of carbon emission have been saved. Wind energy, nuclear energy are now open to private players. Non-fossil fuel capacity has increased by 4 times. India is now committed to coal gasification. India is committed to the welfare of mankind and will be a responsible and sustainable nation, ensuring the future of our civilization, said the Honorable Prime Minister of India.
1: कौशिक, वैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती तो बड़ी जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार नीतियों, तकनीकी नवाचार और जन भागीदारी के माध्यम से हम इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और भारत ने इस दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा भी दिए हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन के सत्र का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। चलते चलते हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल 20 सितंबर 2026 को समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित होगा। और अब अपने तकनीकी सहयोगों कमल सिंह, सुमित कटियार, ओब इंचार्ज विवेक तोमर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार के साथ मैं यानी कि कमल किशोर बड़ाइक और अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए वापस आपको आकाशवाणी के दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण विज्ञान भवन से सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे कमल किशोर बड़ाई और कौशिक रॉय। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुदेश सुबेरी का गाया राग गुर्जरी तोड़ी। आपका साथ दे रहे हैं तबले पर डॉक्टर अजय कुमार और सारंगी पर शाहनवाज खान।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सुरमंजरी कार्यक्रम समाप्त होता है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि

0: साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालुमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics. In New Delhi today, Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
2: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. Jabki aitihasik sachchai ye hai, aaj bhi प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
1: Prime Minister Modi said India is working with the rest of the world and setting new standards for environmental protection through initiatives such as the International Solar Alliance, Global Biofuels Alliance, International Big Cat Alliance and Mission Life. Mr. Modi said that over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment. The Prime Minister said India's major focus has been on renewable energy and played a significant role in environmental protection. On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It has brought together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and District Court judges. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion.

0: घर आंगन। आज की घर आंगन कार्यक्रम में मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त अमित कंवल
1: और मैं हूं रेनू। तो कीजिए स्वीकार हम दोनों का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
0: मुस्कुराते हुए चेहरे, बेफिक्र दिन और वो कागज की कश्ती, याद है रेणु वो बचपन जब बारिश होने पर हम स्कूल की छुट्टी की दुआ मांगा करते थे जब बिजली कटने पर पूरा मोहल्ला छतों पर इकट्ठा हो जाता था और 5 रुपए की वो बर्फ की चुस्की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगती थी।
1: बिल्कुल सही कहा अमित, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती थी वो। और आज की लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगता है हम कितने बड़े हो गए हैं। कौन सी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ऐसी आ गई हैं जैसे कि हमारा मासूम सा बचपन कहीं पीछे से छूट सा गया है। लेकिन कार्यक्रम में आज वक्त की सुइयों को हम थोड़ा पीछे घुमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के सवाल के सेगमेंट में हम आपसे बचपन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। और वो सवाल क्या है अमित?
0: बिल्कुल रेणु, आज हम श्रोताओं के लिए

0: सवाल लेकर आए हैं। दोस्तों आज का सवाल है, आपके बचपन का वो कौन सा खेल है जिसे आप आज भी मिस करते हैं। इसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com।
1: बिल्कुल अमित, तो श्रोताओं को हमें इसी मेल आईडी पे लिखना होगा और हमें रहेगा उनके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार। लेकिन कार्यक्रम में सुनते हैं सबसे पहले ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना दोस्तों, जीने की राह फिल्म से।
1: और अमिता, देखो कविता केवल शब्दों की सुंदर सजावट नहीं बल्कि अपने समय, समाज और मनुष्य के अंतर मन को स्वर देने का माध्यम है। आज ऐसे ही एक संवेदनशील रचनाकार कवि कुंवर नारायण को उनकी जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, जिनके शब्द केवल कविता नहीं बल्कि जीवन को समझने का माध्यम थे।
0: कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में जीवन की सुख दुख, आशा निराशा, संघर्ष, जी जीविषा और रिश्तों की जटिलताएं बहुत गहराई के साथ अभिव्यक्त होती हैं। उनकी भाषा सहज है लेकिन उसके भीतर विचारों की गहरी परतें हैं।
1: बिल्कुल, वे जीवन को केवल देखते नहीं बल्कि समझते हैं।

0: के विविध संदर्भों और अंतर्विरोधों के साथ। उनकी महत्वपूर्ण काव्यकृतियों में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और हाशिए का गवाह शामिल है, और है आत्मजयी, जिसमें वे कठोपनिषद के कथानक को आधार बनाकर जीवन, मृत्यु, जिज्ञासा और आत्मिक स्वतंत्रता जैसे गहन प्रश्नों से संवाद करते हैं।
1: बाद में वाजश्रवा के बहाने में उन्होंने इसी संदर्भ को नए दृष्टिकोण से देखा है। इसमें वह मिथकीय प्रसंग के माध्यम से आज के मनुष्य, उसके रिश्तों और जीवन मूल्यों से जुड़े सवाल उठाते हैं।
0: वे अपनी कविताओं में भारतीय चिंतन परंपरा के उन सवालों को संबोधित करते हैं जो जीवन को सहजता, सफलता की ओर उन्मुख करती है, और इस प्रक्रिया में वे कविता को दर्शन के बराबर स्थापित करते हैं।
1: आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करना केवल एक बड़े कवि को नमन करना नहीं है, बल्कि उस विचारशील और मानवीय दृष्टि को नमन करना है जिसमें हिंदी कविता को नई संवेदना, नई भाषा और नए अर्थ दिए।
0: आइए इस अवसर पर कुंवर नारायण की रचनाओं को फिर से पढ़ें, सुनें और महसूस करें। अब की बार लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर देखूंगा उन्हें भूखी शेर की आंखों से, अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा।

0: भावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। अक्सर IIT का नाम सुनते ही हमारे मन में केवल कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे विषयों का ख्याल आता है, लेकिन अब IIT बॉम्बे अपने अलग अलग और आधुनिक कोर्स के लिए चर्चा में है। संस्थान ने एविएशन के शौकीनों के लिए फ्लाइट टेस्टिंग में MA का स्पेशल कोर्स की शुरुआत की है।
1: और IIT बॉम्बे अब छात्रों को फ्लाइट टेस्टिंग में मास्टर्स डिग्री देगा। संस्थान ने भारतीय वायुसेना और IIT मुंबई के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। दोनों संस्थानों की ओर से एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके तहत फ्लाइट टेस्ट क्रू के लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम तैयार किया जाएगा और इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से टेस्ट पायलट्स और फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स शामिल होंगे।
0: आसमान छूने की चाहत रखने वालों के लिए IIT बॉम्बे का एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग अब छात्र छात्राओं को विमानों और एरोस्पेस प्रणालियों की टेस्टिंग की बारीकियां सिखा रहा है। फ्लाइट टेस्टिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी नए विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को हवा में उड़ाने से पहले उसकी सुरक्षा मानकों, प्रदर्शन और तकनीकी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है।
1: और अमित, इसके लिए उम्मीदवार के पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग या संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में वैध बीटेक, BE या समकक्ष डिग्री होनी जरूरी है।
0: और इस कोर्स के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिमुलेशन तकनीक और एरोडायनामिक्स का गहरा अनुभव दिया जाएगा। जो छात्र छात्राएं एविएशन इंडस्ट्री, रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO, इसरो या प्राइवेट विमानन कंपनियों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप संस्था की वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन।

0: लगो हमें कब तक हम परतेंगे।
1: ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल बरसेंगे।
0: फिरेंगे कभी न, तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक।

0: छोटी सी बात फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और यशुदास के आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है और अब क्या बताने वाली हो रेणु?
1: हाँ अमित, बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। ये शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी और सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की एक विशेष योजना है, जो छोटे कारोबारियों और उनके कारोबार को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने में मदद करती है।
0: इसमें पहला ऋण दोस्तों 10,000 एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है और समय पर पहला ऋण चुकाने के बाद दूसरा ऋण 20,000 से 25,000 तक और फिर तीसरा ऋण भी मिलता है अगर आपने दूसरा ऋण समय पर चुका दिया हो तो।
1: और ये ऋण मिलता है 50,000 रुपए तक का और इस ऋण का समय पर भुगतान करने पर आपको 7% की दर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है।
0: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1200 तक का कैशबैक इंसेंटिव भी मिलता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह की गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं होती है।
1: आवेदक शहरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर सामान बेचने का काम करता हो, ये योजना मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जिनके पास लोकल निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त वेंडिंग सर्टिफिकेट या आईडी है।
0: तो जिनके पास वेंडिंग से जुड़ा हुआ वैध प्रमाण पत्र है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अपने नगर निकाय बैंक या आधिकारिक पीएम स्वनिधि पोर्टल से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल अमित, और इसी के साथ हम एक बार क्यों ना अपने श्रोताओं को जो सवाल हमने उनसे पूछा था उसके बारे में भी एक बार उनसे फिर से उन्हें बता देते हैं कि हमारा सवाल क्या है।
0: आज का हमारा सवाल है दोस्तों, आपके बचपन का वो कौन सा खेल है जिसे आप आज भी मिस करते हैं? इसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी और ईमेल आईडी बताएंगी रेणु।
1: ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों और जवाबों का इंतजार है।

0: ना खुदा फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है और आज की सभा में मैं हूँ आपके साथ अमित कमल और मेरे
1: और
0: साथ
1: मैं हूँ रेनू। तो अमित, अब बात करते हैं मिशन शक्ति सेट के लिए चुनी गई आंध्र प्रदेश की 14 वर्षीय छात्रा केंद्रुला जेसी की, जिन्हें ऑल गर्ल्स ग्लोबल लूनर क्यूब सेट मिशन मिशन शक्ति सेट के लिए चुना गया है। ये मिशन दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसे पूरी तरह से छात्राओं द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसका नेतृत्व चेन्नई की संस्था स्पेस किड्स इंडिया कर रही है, जिसमें इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सहयोगी है।
0: इस मिशन का उद्देश्य है विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और युवा लड़कियों की भागीदारी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। इसी मिशन के लिए दुनिया भर के 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं में से चुनी गई कंदुला जेसी अपने राज्य आंध्र प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि है,
1: जो धवलेश्वरम के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा हैं और इनके पिता एक बढ़ई का काम करते थे अमिता। लेकिन इन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को इन्होंने कभी भी अपनी सफलता की राह में नहीं आने दिया।
0: इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए जेसी ने अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और थर्मोडायनेमिक्स जैसे विषयों पर 550 से अधिक ऑनलाइन सत्र और 21 मॉड्यूल्स पूरे किए हैं।
1: और पता है अमिता, जब जेसी को इस मिशन के बारे में पता चला तो उन्होंने न केवल खुद आवेदन किया बल्कि अपने स्कूल की 8 अन्य छात्राओं को भी इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए प्रेरित किया। तो आप भी इस मिशन से जुड़िए। ये ऑल इंडिया गर्ल्स मिशन है और जिसमें केवल लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं, यानी लड़कियों के लिए ये है एक सुनहरा अवसर।

0: आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना जीवा फिल्म से, और घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप।
1: और अमित, देखो ना, हम लोग ने जो सवाल पूछा था अपने श्रोताओं से, तो जवाब आने, मेल्स आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें से एक मेल जो मेरे पास है, ये सामने खुला हुआ है, इसको पढ़ते हैं। पहले चरण दास लिख रहे हैं, ये तो चौधरी वास हरियाणा से, इनके साथ राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी भी हैं। और ये लिख रहे हैं कि हमारे ज़माने में बहुत अच्छे खेल होते थे, लुका छिपी, तालाब में हथेली से पानी उछालकर, मिट्टी रैंप और दूल्हा बनाते थे। तो इस तरह से ये काफ़ी बचपन में खेल खेलते थे, गली मोहल्लों में नाचते थे, शादी में।
0: तो इन्होंने पूरा बचपन याद
1: कर लिया है, और इन्होंने बहुत अपने बचपन की याद तो दिलाई ही, और हम लोगों को भी अपने बचपन की याद आ गई।
0: एक और मैसेज आया है हमारे पास, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रही हैं। ये लिख रहे हैं, आदरणीय रेणु और अमिता जी, आपको सादर प्रणाम। कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन। इंडोर गेम्स में इन्हें कैरम, लूडो, चिड़िया उड़, तोता उड़ अच्छा लगता था। और आउटडोर गेम्स की बात करें तो इन्हें पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे खेलना, ये मिस करते हैं। तो बहुत ही सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं।
1: नहीं, सवाल तो हम दोहरा ही देंगे, लेकिन इसको देखो ना, ये कुछ मैसेज और भी हमारे अच्छा। सामने ये मैसेज है इनका, उत्तम सिंह का, ये गुरुजी के नाम से इन्होंने लिखा है। जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा और अनमोल जुनेजा, तो और सबा गुप्ता भी, तो ये लोग भी लिख रहे हैं और कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सवाल से

0: संबंधित तो कोई जानकारी नहीं, जवाब नहीं दिया है। तो भाई सवाल एक बार हम फिर से अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि आज आपको बताना है कि बचपन में आप कौन से खेल खेलते थे और कौन सा खेल आपको आज तक याद है या मिस करते हैं। आप भले उन खेल को खेल ना पाएं, लेकिन जब किसी को खेलते हुए देखते हैं और कहीं आपके बच्चे या घर में कोई खेलता है तो याद आ जाती है आपको भी कि आप भी ये गेम बहुत अच्छे से खेलते थे।
1: इसके लिए आप नोट कीजिए हमारा मेल आईडी, हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार।

0: अभी आपने सुना फिल्म घर से लता मंगेशकर को ये गीत उनकी आवाज़ में।
1: रेणुकल से स्वच्छता ही सेवा माह मनाया जा रहा है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना और इसे एक जन आंदोलन बनाना है।
0: बिल्कुल अमित, और इस माह को मनाने का उद्देश्य देश के हर नागरिक को स्वच्छता से जोड़ना

0: और ये एहसास कराना कि साफ सफाई केवल सरकार का ही नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखो ना, जब तक लोग खुद नहीं जुड़ते यानी जन आंदोलन, जब तक कोई नियम या कानून नहीं बनता तब तक वो सफल नहीं हो सकता। तो सफलता तो इसी बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं।
1: दोस्तों, इसके द्वारा लोगों को कचरे का पृथक्करण, रिसाइकलिंग और कचरा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, स्कूलों और पर्यटक स्थलों को साफ सुथरा और हरा भरा रखना सिखाना है।
0: बिल्कुल अमित, और इसके साथ ही इसके अंतर्गत शहरों को कचरा मुक्त बनाना, वैज्ञानिक तरीकों से कचरा प्रबंधन करना और स्वच्छता सर्वेक्षण के जरिए नगर निकायों में सुधार लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये देशव्यापी विशेष अभियान जन भागीदारी, श्रमदान और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर केंद्रित है।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना हीरा फिल्म से, और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से पूरा शहर सराबोर है। रेणु बप्पा हमारे घर आ चुके हैं तो उनके स्वागत में कुछ मीठा और खास तो बनना ही चाहिए। और जब बात भोग की हो तो सबसे पहले नाम आता है
1: मोदक का,
0: तो कैसे बनाएंगे रेणु?
1: बिल्कुल, तो मोदक बनाने के लिए देखो ना, एक पैन में एक चम्मच घी गरम करें, उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ डालें, इसमें धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पिघल ना जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो ध्यान रहे कि इसमें सूखा नहीं बल्कि सूखा नहीं करना है इसको, मतलब थोड़ा सा लटपटा ही रहे, तभी इसमें इलायची पाउडर और मेवे मिलाकर गैस बंद कर दें।
0: और आपकी खुशबूदार स्टफिंग तैयार है। और एक बर्तन में एक कप पानी, एक चम्मच घी और नमक डालकर उबालें। जैसे ही पानी उबलने लगे गैस धीमी करें और चावल का आटा डालकर लगातार चलाते हुए आटा गूंदें। और 5 मिनट बाद इस आटे को एक परात में निकालें और गर्म रहते हुए ही हाथ में थोड़ा सा पानी या घी लगाकर अच्छे से गूंद लें। आपका आटा तैयार है।
1: बिल्कुल, अब आटा तैयार होने के बाद उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। एक लोई की उंगलियों की मदद से कटोरी जैसा आकार दें। इसके लिए किनारा थोड़ा थोड़ा जो है उसमें उंगलियों में कलियां जैसी बना लें और फिर बीच में एक चम्मच नारियल गुड़ की जो स्टफिंग आपने तैयार की थी वो उसमें डालें और फिर मोदक का एक खूबसूरत आकार देकर और इसको आप तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप सांचे का भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: अब आखिरी और सबसे जरूरी काम, एक स्टीमर या इडली पात्र में पानी गर्म करें और स्टीमर की प्लेट पर थोड़ा सा घी लगाएं और केले का पत्ता भी आप रख सकते हैं। इस पर मोदक रखें और ढककर 10 से 12 मिनट तक भाप दीजिए। लीजिए, तैयार है आपके स्टीम मोदक।

0: ये गीत आप सुन रहे हैं आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है द ग्रेट गैम्बलर और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है रेणु विदा लेने का वक्त हो चला है।
1: तो मुझे यानी रेणु को
0: और मुझे यानी अमित कमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।

0: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
0: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that free trade agreements are opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements

0: paved the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. He said the talent and skills of countries' youth have won the trust of the entire world.
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है. इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है. रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है. भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है.
0: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with the greater transparency. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the Conference of the Parties 21 Summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है.
0: On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. India has dispatched another 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. This is the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, India continues to support Nepal's recovery. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah today said that disaster early warning systems will be implemented on the highest priority following devastating floods in the Bhote Koshi and Trishuli river basins that caused extensive loss of lives and infrastructure damage. The United Nations experts have warned Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. The experts called for authorities to assess whether individuals face risks of persecution, torture, or other serious human rights violations before their removal. The experts also raised concerns over a directive requiring medical and dental institutions in Pakistan to remove Afghan students. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe. Assam is remembering iconic singer, composer and cultural figure Zubin Garg on his first death anniversary today. The state has also been observing a 3-day Zubin Divas since September 17th. And that is the end of this news bulletin.
2: Yeah. आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आपके साथ सुनिधि गुप्ता. और आप सुन रहे हैं हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम जो कि आप सभी को बहुत पसंद आता है, एक ही फिल्म से. दोस्तों हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका जादू सिर्फ उनके गीत संगीत या सितारों की लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहता, कुछ फिल्में अपने कथानक, रहस्य और रोमांच के कारण दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखती हैं। आज की हमारी फिल्म भी कुछ ऐसी ही है। आज हम बात करेंगे साल 1965 में आई एक रोमांचक और रहस्य से भरपूर फिल्म 12 o'clock। जी हाँ, नाम सुनते ही आपके मन में शायद घड़ी की सुइयां घूमने लगी होंगी। रात के 12 बजने वाले हों, सन्नाटा हो और तभी कोई ऐसा रहस्य सामने आ जाए जिसका जवाब पूरी दुनिया को बदल दे। तो आइए आज के एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जाने इस दिलचस्प फिल्म की कहानी, इसके कलाकार, संगीत और उन तमाम बातों के बारे में जो इस फिल्म को यादगार बनाती है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि और आइए सुन रहे हैं आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, 12 o'clock सिर्फ एक रहस्य और अपराध की कहानी नहीं है, इस फिल्म में रोमांस और संगीत के लिए भरपूर जगह है। फिल्म के संगीतकार थे ओपी नैयर, जिनका संगीत अपने खास अंदाज, लय और ठेठ भारतीय रंग के लिए जाना जाता था। और जब ओपी नैयर संगीत का हो और जब ओपी नैयर का संगीत हो तो गीतों में एक अलग ही चंचलता और ऊर्जा महसूस होती है। तो आइए फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत है, सुन लेते हैं, कैसा जादू बालम तूने डारा।

दोस्तों, ओपी नैयर की खासियत ये थी कि उनके संगीत में भारतीय धुनों के साथ साथ पश्चिमी वाद्य संगीत और लय का भी खूबसूरत इस्तेमाल दिखाई देता था। उनके संगीत की यही पहचान इस फिल्म में भी सुनाई देती है। तो और अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है एक

ऐसे अपराध से जो पूरी फिल्म के रहस्य की नींव रखता है। फिल्म में एक हत्या होती है और परिस्थितियां इस तरह सामने आती हैं कि शक की सुई एक महिला की ओर घूम जाती है। मामला अदालत तक पहुंचता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया वही वास्तव में हत्यारा है, या फिर इस अपराध के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अभी सामने नहीं आया। यही सवाल दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़े रखता है। फिल्म के प्रमुख कलाकारों में एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है, गुरुदत्त। गुरुदत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्मकारों में भी उनका नाम लिया जाता है। उनकी फिल्मों में कहानी कहने का अंदाज, कैमरा, प्रकाश और भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने आप में विशिष्ट थी। 12 O'Clock में भी उनका अभिनय कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीदा रहमान की बात करें तो वहीदा रहमान का परिचय अब बात उस अभिनेत्री की करेंगे जिनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी अभिनय क्षमता ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। वहीदा रहमान। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी हिंदी सिनेमा की चर्चित जोड़ियों में रही है। दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ साथ काम किया और उनके अभिनय में भावनाओं की गहराई दर्शकों को हमेशा से अपनी तरफ खींचती रही। 12 O'Clock में भी दोनों की मौजूदगी फिल्म के आकर्षण को बढ़ाती है। और फिल्म में संगीत दिया था, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओपी नैयर ने। ओपी नैयर का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसा संगीतकार उभरता है जिनकी धुनों में एक अलग तरह की रवानगी रहती है। उनके गीतों में ताल, गति और ऑर्केस्ट्रन की विशेष भूमिका होती है। फिल्म 12 O'Clock में गीत कहानी के भावनात्मक पक्ष को भी सामने लाते हैं। इसके गीत इस तरह से लिखे हुए और ढले हुए हैं कि खुद ब खुद फिल्म की कहानी आपके सामने रखते हैं। तो आइए इसी बात पर सुन लेते हैं इस फिल्म का दूसरा गीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और अपना और अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। दोस्तों 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, मदन मोहन, रोशन, ओपी नैयर और कई अन्य संगीतकार अपनी अलग अलग संगीत शैलियों से हिंदी सिनेमा को मजबूत कर रहे थे। अब बात हमारे दिमाग में ये आती है कि इस फिल्म का नाम 12 o'clock ही क्यों चुना गया। दोस्तों फिल्म का नाम ही अपने आप में एक उत्सुकता पैदा कर देता है, 12 बजे का समय, लेकिन घड़ी में 12 बजना अपने आप में कोई असाधारण घटना नहीं है। फिर इस फिल्म का नाम इस फिल्म की कहानी से क्या संबंध है, यही वह सवाल है जो फिल्म के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की 12 o'clock की, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रात का समय, सन्नाटा, अपराध और एक ऐसा मामला जिसमें सच और भ्रम के बीच अंतर करना आसान नहीं, यही वातावरण फिल्म को एक खास रहस्यपूर्ण रंग देता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, घटनाएं जटिल होती जाती हैं। एक तरफ है अपराध का मामला और दूसरी तरफ है उसे सुलझाने की कोशिश।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अभी आपने गीता दत्त की आवाज़ में सुना अरे तौबा, फिल्म 12 o'clock से। दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं iprradiodelhi@gmail.com पर भी भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आप और कौन सी फिल्में इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे 12 o'clock का ये गीत, और दोस्तों यही तो हिंदी फिल्मों की खूबसूरती है। एक ही फिल्म में जहां रहस्य और अपराध का तनाव हो सकता है, वहीं उसी कहानी में प्रेम, भावनाएं और संगीत भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं इस फिल्म का बहुत ही एक सुंदर सा गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में।

दोस्तों, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों से ही अभिनय करते हैं और दर्शक उनके साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि बस उन्हें वही जोड़ी हर पर्दे पर चाहिए, हर फिल्म में चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी को हिंदी सिनेमा में विशेष स्थान मिला। इन दोनों की फिल्मों में भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। गुरुदत्त की फिल्मों की दृश्य भाषा और वहीदा रहमान की सहज अभिनय शैली का मेल दर्शकों को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। 12 o'clock में भी इस जोड़ी के साथ जुड़ी महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में और भी अन्य कलाकार हैं, लेकिन आइए अब हम सुनते हैं आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ती है। जांच आगे बढ़ती है, एक एक करके नए तथ्य सामने आते हैं, लेकिन हर नए तथ्य के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। जिस व्यक्ति पर शक किया जा रहा है उसके पक्ष में भी कुछ बातें सामने आने लगती हैं और अपराध की वास्तविकता को समझना और भी कठिन हो जाता है। यहीं से फिल्म दर्शकों को अपने अंतिम रहस्य की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की फिल्म 12 o'clock की। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर जाने के लिए, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ चलते हैं इस फिल्म के एक और बेहद खूबसूरत गीत के साथ, जो कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। आइए सुन लेते हैं।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 20वें रोजगार मेले दौरान वक्-वक् सरकारी अदारियां विच नवे नियुक्त हुए नौजवानों 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने आज नवी दिल्ली विच वातावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय बारे एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन निकासी विच भारत का योगदान विश्व औसत के अद्धे तो भी घट है। भारत विच कामकाजी औरतों की हिस्सेदारी विच तेजी नाल वाधा होया है। भारत ने हड़ प्रभावित नेपाल नूं 11 टन राहत समगरी की एक होर खेप भेजी है। 20वीं एशियाई खेडां अज तों जापान के आईची नागोया विच शुरू हो रही ने। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 20वें रोजगार मेले दौरान वक्-वक् सरकारी अदारियां विच नवे नियुक्त हुए नौजवानों 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके संबोधन करदे श्री मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के नौजवानों लिए मौकियां दे नवे दरवाजे खोल रहे ने। उन्होंने कहा कि अजिहे व्यापारिक समझौते देश के उद्यमियों लिए नवी भाईवाली और नौजवानों लिए करियर दीआं नवीआं संभावनावां पैदा कर रहे ने। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों की प्रतिभा और हुनर ने पूरी दुनिया का भरोसा जीत लिया है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: इस मौके अमले जनतक शिकायतां ते पेंशन राज मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले राही रोजगार सिरजन अते भर्ती दे मुलांकण तो पता लगता है कि सरकारी नियुक्तियां विच काफी वाधा होया है। मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रणाली नूं बेहतर बनाउण लई कई पहलकदमियां कीतियां गईआं ने। देश भर विच 45 थावां ते 20वां रोजगार मेला आयोजित कीता गया। नवें भर्ती हुए उम्मीदवार भारत सरकार दे वख-वख मंत्रालयां ते विभागां विच शामिल होणगे जिन्हां विच वित्त रेलवे गृह सेहत अते परिवार भलाई अते रक्षा मंत्रालय आदि शामिल ने। 20वें रोजगार मेले नाल हुण तक कुल मिला के लगभग 12,75,000 नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र मिल चुके ने। यह रोजगार मेला नौजवानों लई रोजगार के मौके पैदा करना ते देश की विकास यात्रा विच उन्हां दी वध तों वध हिस्सेदारी यकीनी बनाउण लई सरकार दे निरंतर यत्नां नूं दर्शाउंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन निकासी विच भारत का योगदान विश्व औसत के अद्धे तों वी घट है। अज नवी दिल्ली विखे वातावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय से आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करदे श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को कार्बन निकासी लई वार वार जिम्मे ठहराना गलत है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों दौरान वातावरण नाल संबंधित सारे खेत्रां विच बेमिसाल तरक्की की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत होर देशों के सहयोग नाल काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने नवीन युग ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिता है ते वातावरण संभाल विच अहम भूमिका निभाई है।
1: हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्य कांत ने इस मौके बोलदिया कहा कि धरती संभाल का विचार देश विच वातावरण ट्रिब्यूनल नेमबद्ध विधियां अते पालना ढांचे के होंद विच आउण तों पहला मौजूद सी। उन्होंने जंगलों झीलों नदियां अते जंगली जीवों समेत कुदरती वातावरण की रक्षा अते सुधार करन अते जीवों प्रति हमदर्दी रखण दे हरेक नागरिक दे बुनियादी फर्ज की महत्ता नूं रेखांकित कीता। वातावरण जंगलात ते जलवायु तब्दीली मंत्री भुपिंदर यादव ने कहा कि भारत दा वातावरण प्रति दृष्टिकोण इस दी प्राचीन विचारधारा विच डूंघाई नाल जुड़िया होया है, जो धरती नूं संपत्ति वजों नहीं सगों एक सांझी विरासत ते पवित्र खजाना मानदी है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ NSO ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 57.8% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ 40% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 34,000 ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ 14 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 3,57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 11 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੰਬੂ, ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ ਨਾਗੋਆ ਵਿਚ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਪਾਲੋਮਾ ਮਿਜ਼ੂਹੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ 469 ਤਮਗਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਬਾਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਖਿਡਾਰੀ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ 37 ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਿਓ ਨੇ 1958 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉਪਰ 100% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 20वें रोजगार मेले दौरान वक्त-वक्त सरकारी अदारों में नवे नियुक्त हुए नौजवानों को 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र सौंपे ने। श्री मोदी ने आज नवी दिल्ली में वातावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय बारे एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन निकासी में भारत का योगदान विश्व औसत के अद्धे तो भी घट है। भारत में कामकाजी औरतों की हिस्सेदारी में तेजी से वाधा हुआ है। भारत ने हड़ प्रभावित नेपाल 11 टन राहत समगरी की एक होर खेप भेजी है। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 होगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वीं रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे में तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्ब से भी कम है। उन्होंने वाजे किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फॉरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाह गुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। माहिरीन ने भी पाकिस्तान के तिब्बी इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। मशहूर गुलकार, कंपोजर और सकाफती शख्सियत जुबिन गर्ग को उनकी पहली बरसी पर आसाम में याद किया जा रहा है और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नए मुकर्रर किए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज़ादाना तिजारती मुआहदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मुआहदे मुल्क के सनअतकारों के लिए नई शराकतदारियों और बाजारों की राह हमवार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कान तश्कील देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के टैलेंट और उनकी सलाहियतों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
0: इस मौके पर अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मम्लकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए रोजगार की तश्कील और तकर्रुरी के जायजे से जाहिर है कि सरकारी तकर्रुरियों में काबिले जिक्र इजाफा हुआ है। साथ ही इस अमल में ज्यादा शफाफियत आई है। उन्होंने कहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के जरिए एनडीए हुकूमत के 10 साल के दौरान तकरीबन 10,96,000 तकर्रुर किए गए हैं, जबकि यूपीए हुकूमत के दौरान 7,22,000 तकर्रुर हुए थे। 20वां रोजगार मेला मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक़िद किया गया है। नौ मुकर्रर उम्मीदवार खजाना, रेलवेज, उमूर दाखला, सेहत व खानदानी बहबूद की वजारतों समेत हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में ओहदे संभालेंगे। 20वें रोजगार मेले में तकरीबन 12,75,000 नौजवानों ने तकर्रुरनामे हासिल किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा है कि कार्बन इखराज के लिए अक्सर तरक्की पजीर ममालिक को गैर मुनसफाना तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। जनाब मोदी ने वाजह किया है कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में मुनाकिदा COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। वजीर आजम ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने माहौलियात से मुतालिक हर शोबे में गैर मामूली पेशरफ्त की है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में छह गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैन-उल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद, हयातियाती ईंधन के आलमी इत्तेहाद, शेरों की नस्ल से मुतालिक बैन-उल-अक़वामी इत्तेहाद और मिशन लाइफ जैसी पहल के जरिए माहौलियाती तहफ्फुज़ के नए पैमाने कायम कर रहा है और बाकी दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा है कि भारत की असल तवज्जो काबिले तजदीद तवानाई पर है जो माहौलियाती तहफ्फुज़ में अहम रोल अदा करती है। तकरीब से खिताब करते हुए भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुर्रयार्स को बचाने का नजरिया मुल्क में माहौलियाती ट्रिब्यूनल्स, इंजबाती मैकेनिज्म और तामीली फ्रेमवर्क के उभरने से पहले मौजूद है। माहौलियाती तहफ्फुज़ से मुतालिक ये दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जरिए मुनाकिद हो रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौलियाती माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के जजेस इकट्ठा हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। देही तरक्की की वजारत अगले महीने ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दोयम के तहत तकरीबन 34,000 देही नौजवानों को तरबियत फराहम करेगी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु समेत 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तरबियती बैचेस के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजारत ने कहा है कि आइंदा साल 31 दिसंबर तक 357,000 से ज्यादा देही नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका ये सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंथक अजम से इबारत है जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के जरिए ये अजम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान के खसूसी सीरीज के तहत अग्निपथ स्कीम का जायजा पेश किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने नौजवानों को मुल्क की खिदमत का मौका फराहम करने के लिए साल 2022 में अग्निपथ स्कीम का आगाज किया। स्कीम के तहत नौजवानों को, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, मुसल्ला अफवाज में शामिल किया जाता है। अग्निवीर 4 साल तक खिदमत अंजाम देते हैं। इस दौरान उन्हें फौजी तरबियत से लैस किया जाता है और नज्म व जब्त और मुख्तलिफ महारतों से रूशनास कराया जाता है। उत्तराखंड की मजबूत फौजी रिवायत रही है जहां नौजवान मुसल्ला अफवाज में अहम रोल अदा कर रहे हैं। रियासत के नौजवान बड़ी तादाद में अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में भर्ती हो रहे हैं। इस साल फरवरी और मार्च के महीने में चंपावत के बनबासा में अग्निवीर भर्तियों में उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। फौज में 4 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद हर बैच के 25% अग्निवीरों को तयशुदा तरीक़ेकार के जरिए मुसल्ला अफवाज में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया जाता है। देहरादून से संतोष थापलियाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है, जिनमें अद्वियात, फोरेंसिक सप्लाईज, खेमे, सफाई सुथराई के किट्स, सोने के लिए बिस्तर और दीगर जरूरी साजो सामान शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाहगुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी हुक्काम से अपील की है कि वह मुल्क बदर करने से पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद को जुल्म व जबर, तशद्दुद या दीगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे खतरात का सामना है। आज मायनाज गुलोकार, मौसीकार और सकाफती अहमियत के हामिल जुबीन गर्ग की पहली बरसी के मौके पर उनको याद किया जा रहा है। लाखों लोग जुबीन गर्ग की मौसीकी के दिलदादा हैं। आज रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। 20वें एशियन गेम्स की शानदार इख्तामी

0: सतही तकरीब आज जापान के आइची नागोया के पालोमा मिजोहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे मुनाकिद होगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्ब से भी कम है। उन्होंने वाज़े किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights, India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deendayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer, composer and cultural figure Zubeen Garg on his first death anniversary, and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: He said the government's endeavor has also been to ensure that the education and skills of the country's youth keep pace with the needs of the changing economy. Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with the greater transparency. He said that nearly 10,96,000 appointments were made during the 10 years of the NDA government as

0: distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, highlights India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubin Garg on his death anniversary and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित

0: भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी कार्बन एमिशन पर रोकथाम हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों झीलों नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को

0: विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र

0: सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका मनपसंदीदा सेगमेंट एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो कलाकार हैं वो एक जाने माने भारतीय हिंदी फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, अभिनेता और निर्देशक थे। हालांकि वे किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन उनकी एक और पहचान थी कि वे आमिर खान के पिता थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन के बारे में। तो श्रोताओ, आइए इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं की फिल्मों को जो उन्होंने एक निर्माता के रूप में फिल्म को प्रोड्यूस किया, आइए उस फिल्म के गीतों को हम सुनते हैं और करेंगे उनसे, उनके जीवन से कुछ रोचक बातें। फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म कारवां से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल सुरों में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज के कलाकार में ताहिर हुसैन के बारे में। उनका जन्म 19 सितंबर 1938 को शाहबाद में मोहम्मद जाफर हुसैन खान, एक स्कूल शिक्षक जो पश्तून मूल के एक ज़मींदार परिवार से संबंधित रखते थे और आमना के घर हुआ था, जिन्होंने अपनी अरब जड़ों को भारत के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद की, जो कि भतीजी थी और वे 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। ताहिर हुसैन निकहत खान, फरहत खान, आमिर खान और फैजल खान के पिता थे। नासिर हुसैन एक हिट फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, ताहिर हुसैन के बड़े भाई और संरक्षक थे।

आमिर ने अपनी चाचा नासिर हुसैन द्वारा निर्मित और अपने चचेरे भाई मंसूर खान द्वारा निर्देशित कयामत से कयामत तक में अभिनय किया। ताजिर हुसैन ने 1990 में अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म तुम मेरे हो में अपने बेटे आमिर को पहली बार निर्देशित किया।

श्रोताओं, ताहिर हुसैन ने अपनी करियर की शुरुआत अभिनय से की और बाद में वे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरे। उन्होंने हम है राही प्यार के, कारवा और पैदल यात्रा जैसी कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने वर्ष 1990 में आई फिल्म तुम मेरे हो का निर्देशन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें उनके बेटे आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और जो हमारे पास पहला संदेश है वो है नितीश देवांगन का और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन जो हमें लेकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो है स्वर्ण सिंह का, इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गाँव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अमर रमेश कुमार खत्री हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ हैं कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद आमिन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा। और अगला जो संदेश है वो हरजिंदर शिंदा के है, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव नथाना पंजाब से। इनके साथ है जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। धर्मेंद्र छिपा हमें लिखकर भेज रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से और इनके साथ है कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। जो अगला संदेश है वो है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ताज मोहम्मद हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मिराज जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से। जो अगला संदेश है छत्तीसगढ़ पलारी से है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और वो हमें लिखकर भेज रहे हैं कि वे हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्दर्शन कौर जी का अगला संदेश आया है मेरठ से, इनके साथ है कविता गौर। और जो अगला संदेश है तुलसी मस्कीन और इनके साथ है वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। और अगला संदेश जो है वो है राधेश्याम देवांगन का, छत्तीसगढ़ भंवरपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, संजय ढींगिया हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ है नमन ढींगिया, पा ढींगिया, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से।

श्रोताओं, हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो आया है स्वर्ण सिंह का, और इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। ये हमें लिख कर भेज रहे गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। अगला संदेश जो है वो है रोजी डिकैस्ट्रो का, इनके साथ है जोन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। ये हमें लिख कर भेज रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से। जो अगला संदेश है धर्मेंद्र छीपा का है, भोपालगढ़ राजस्थान से, और इनके साथ है कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। अगला संदेश है बाबू शिवा का, और इनके साथ हैं प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। और ये हमें लेकर भेजे पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। सुदर्शन मुखी हमें संदेश भेज रहा है, इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और जो अगला संदेश है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये

श्रोताओं, जो अगला संदेश है वो गुरमीत सिंह का है और इनके साथ हैं मीता, जो हमें लेकर भेज रही है साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें संदेश भेज रहे हैं, उदय भानपाल हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ है जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनका अन्य परिवार। जो अगला संदेश है वो है भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक का और ये इन्होंने भेजा है हमें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। राजकुमार डूडी हमें संदेश भेज रहे हैं और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव फरांसी जिला हिसार से। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और इसी के साथ ही हमारा आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तब तक लिए मुझे यानी आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा को दीजिए इजाज़त।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। दिन के 3 बजे हैं और अब कार्यक्रम है ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी, देखो राधा अष्टमी महोत्सव आज पूरे ब्रज में मनाया जा रहा है।
0: हाँ।
1: रावल और बरसाना में तो भक्ति की धारा ही बह रही है।
0: हाँ।
1: श्री जी मंदिर बरसाना को तो दुल्हन जैसा सजाया गया है और पूरे बरसाना में भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है।
0: और बहना समाज गायन की ध्वनि ते तो पूरा मंदिर झूम रहे है। बहना जी महोत्सव ब्रज की पावन धारा पे भक्ति साधना और प्रेम ते परिपूर्ण होए। प्रेमी रसकन के काजे तो युगल वर की रूप सुधा को पान करना ही बिनको आहार है।
1: और सखी ब्रजवासी कितेक तरह ते युगल वर ते अपना नातो माने है। कोई बिने आराध्य माने तो कोई लाली लाला कह के लाड़ लड़ा में और मनोरथ सिद्ध करे।
0: हाँ, बहना रसकन के काजे ब्रजवासिन के काजे युगल सरकार को प्रेम और बिन की जन्मभूमि को सुख बैकुंठ के ऐश्वर्य ते बढ़ गए है। तभी तो ब्रज को सुख धाम कहमे है वे।
1: हाँ सखी, सच में जिन गोपी ग्वालन ने युगल स्वरूप की लीलान को देखे हुए गो वे कितेक पुण्य आत्मा होंगे ना।
0: हाँ, और वे पिता और माता कितेक पुण्य आत्मा होंगे जिनके आंगन में स्वयं प्रेम श्री राधा के रूप में खेल तो होएगा।
1: हाँ सखी, आज राधा अष्टमी पर बरसाना गांव में घर घर बधाई बाज रही है
0: और शिवजी मंदिर में रानी कीर्ति के यहाँ आनंद रस बरस रहे है। कहूँ लाल ध्वजा फहराई जा रही है तो कहूँ राधा सुखरासी की महिमा गाई जा रही है।

कहत नंद वृषभान राय सों बहुत बात को जाने भैया, आज भैया हम सब ब्रजवासी तेरे हाथ बिकाने, या कन्या के आगे कोटिक बेटन कौ को माने भैया, तेरे भले भलो सब हिन को आनंद कौन बखाने, आनंद कौन बखाने। बधाई है, बधाई है, बधाई है।

0: तीरथ रानी जी बधाई है,
1: बधाई है,
0: बधाई है,
1: तीरथ रानी जी
0: बधाई है,
1: बधाई है,
0: बधाई है,
1: बधाई है।

0: बंदी जन मागल याचक गुनी गावत गीत सुहाई, जय जय कार भयो त्रिभुवन में प्रेम बेल प्रभटाई। पहरे बसन विविध अंग भूषण गिनतन राजा राने, नाचत गावत प्रेम मुदित नर नारिन को पहचाने। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई
1: है। माया ब्रह्म की है आदि प्रकृति।

0: आज बाजत बधाई बरसाने, बरसाने प्रशभान गोप के आनंद की निधि आई, धन्य धन्य कुख रानी की रथ की जिन यह कन्या जाई। वैसे तो बहना श्री राधा जी की रथ की पुत्री हती, परंतु राधा जन्म के बारे में राधा चरितम महाकाव्य और पद्म पुराण में दिव्य सरोवर ते उत्पन्न स्वीकार कियो गयो है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वे श्री दामा के श्राप के कारण भूतल पे अवतीर्ण भई जे कारण बतायो है।
1: और ऐसा हो कहे हैं कि वे श्री कृष्ण के ही वा मांगते उत्पन्न भई। जो भी हुए, ऐसी अद्भुत बालिका ही जिनके दर्शन के अभिलाषी त्रिभुवन नाथ हते। श्री राधा को कहूँ कृष्ण की प्रेसी तो कहूँ शक्ति कहा गया है।
0: हाँ बहना, अलग अलग संप्रदाय ने राधा तत्व की अलग अलग व्याख्या करी है।
1: हाँ सखी, जैसे पुराणन में श्री कृष्ण की साधना को बिना राधा के उचित न मानो।
0: हाँ सही बात है, सर्वप्रथम निम्बार्क संप्रदाय में ब्रह्म की उपासना श्री राधा और कृष्ण के रूप में करी गई, और राधा जी को श्री रूप गोस्वामी जी ने महाभाव स्वरूपा मानो।
1: और सखी वल्लभ संप्रदाय में तो श्री कृष्ण की अपेक्षा श्री राधा को ही विशेष स्थान प्राप्त है।
0: बिल्कुल, श्री राधा या संप्रदाय की इष्ट हैं, और बिने उज्जवल और पवित्र प्रेम की संज्ञा दी गई है। वे तो श्री कृष्ण की ही आराध्य मानी गई हैं।
1: और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी ने तो भगवत प्राप्ति के काजे गोपी भाव को ही साधन माना।
0: हाँ मैना, वैसे सभी संप्रदाय ने राधा कृष्ण की लीलान के भाव को स्वीकार कर वाई तरिया साधन को मार्ग बनायो, और राधा कृष्ण तो जल तरंग के सदृश हैं। जैसे जल और तरंग को अलग करना संभव ना है, वाई तरिया वे दो एक दूजे के आराध्य हैं।
1: और सखी, व्यास स्वामी ने हूँ बड़े सुंदर भाव प्रकट करे हैं, तो उनको एक पद सुनवाए दे।
0: बिल्कुल।

0: कृष्ण की युगल छवि की भाव जब प्रकट हो में तो वे इनको गाय गाय के झूम झूम के नाच नाच के जयकारे दे के प्रकट करे हैं।
1: और प्रेम की अश्रुधारा आखिन ते बह निकसे है और इन भावन में इन रस में अलौकिक शांति और दिव्यता की अनुभूति होई। तो आज के या पावन अवसर पे आओ युगल छवि के या भजन के माध्यम से दर्शन कर लें।

0: राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद। सखी बहुत ही सुंदर भजन हमारे श्रोता ने सुनो। अब यही के संग ही हमारा आज का ब्रजमाधुरी कार्यक्रम यही संपन्न हो गए है। मोकू याने के वंदना को
1: और मोकू याने वंदना जोरी को जाइबे की अनुमति देओ।
0: राधे राधे। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: कहानी क्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक बेटों वाली विधवा। रूपांतर का

0: निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। चार जवान बेटे थे एक लड़की। चारों लड़कों की विवाह हो चुके थे, केवल लड़की ही कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, दो बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब के साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। फूलमती घर की मालकिन थी। घर की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। संध्या हो चुकी थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, आज उसी की तैयारियां चल रही हैं।
2: अरे बोले क्या, बोरा तो बोरा यहाँ तो गिरा रखा है, यहाँ से उठा।
3: अरे यार सब्जियां इधर रखो, टोकरे इधर गिरा दिया।
4: ये बोरे में आटा, कितने बोरे हैं, घी, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके तो सब आ रहे हैं और महापात्र के लिए दान की चीजें भी लाई गई हैं। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेन, पर मुझे कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियम के अनुसार ये सब चीजें तो मेरे पास आनी चाहिए थी ना, मैं ही तो हर वस्तु को देखती हूँ, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला भी करती हूँ और फिर इन चीजों को भंडार में रखा जाता है। क्या मुझे दिखाने और मेरी राय लेने की जरूरत भी नहीं समझी गई? ये आटा 3 ही बोरा क्यों आया? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही कनस्तर है, मैंने तो 10 मंगवाए थे। हर चीज में कमी की गई है, हर चीज में।
5: 40 वर्षों में घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। इसे वो क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक वो जब्त किए बैठी रही, पर अंत में रहा ना गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वो क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली,
4: कामतानाथ।
1: जी अम्मा।
4: आटा 3 ही बोरे आए हैं, मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था ना, और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद होगा मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन बेटा जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, कितनी लज्जा की बात है।
1: हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफी था। इस हिसाब से और भी चीजें कम कर दी गई हैं।
4: अरे भाई, पर किसकी राय से आटा कम किया गया? हा?
1: हम लोगों की राय से।
4: अच्छा, तो मेरी राय कोई चीज नहीं है?
1: है ना, क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझ सकते हैं ना।
4: मेरे लाभ हानि के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वो करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। मैंने शायद बहुत तेज बोल दिया, मुझसे इसलिए नहीं पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता।
5: जो जो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में उसकी वो हैसियत नहीं रही जो पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते थे वो कामतानाथ से या बड़ी बहू से।
4: अरे वाह रे, ये कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है हाँ? किसी तरह रो धोकर दफ्तर जाता है, उसमें भी महीने के 15 नागों से कम नहीं होते। वो तो कहो कि साहब पंडित जी का लिहाज करते हैं, नहीं तो अब तक कभी का निकाल दिया होता। ये बहुत तिजोरी क्यों खोल रही है, और वो भी मेरी आज्ञा के बिना हाँ? वो मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? चाबी उसके पास है ठीक है, लेकिन जब तक मैं रुपया ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहू, ए बहू।
6: जी माँ जी।
4: तिजोरी क्यों खोली है हाँ? मैंने तो खोलने के लिए नहीं कहा।
6: बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा क्या?
4: कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है ये मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे?
6: हिसाब किताब सब हो गया है।
4: वाह, किसने किया?
6: मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ।
5: फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था, घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब ये एक एक की खबर लेगी, तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है, इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वो निश्चिंत ना बैठी थी, सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहां सत्कार में कौन सा नियम भंग होता है, कहां मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। भोज आरंभ हो गया, सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बिठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे।
4: अरे इस आंगन में तो मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं, ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे भाई? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो।

0: जाती।
1: हाँ?
0: यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता, मगर यहाँ सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह ये बला सर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखी हुई है। ये पूड़ियां तो ठंडी हैं, ये कम से कम गर्म पूड़ियां तो लोगों को परोसते। मैदे की पूड़ियां ठंडी होकर कितनी बुरी हो जाती हैं, इन्हें कौन खाएगा? रसोई को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही तो बातें नाक कटाने की हैं।
2: अरे भाई, सब कुछ तो तैयार है, फिर देरी किस बात की?
3: आंगन में 200 लोगों से ज्यादा बैठने की गुंजाइश नहीं है भैया। खाने वाले होंगे 500 के लगभग। जिमने वालों को 2 पंगतों में ही बैठाना ठीक रहेगा।
2: कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो उमानाथ। अरे भाई, 2 पंगतों में लोगों को खाने बिठाओगे तो निपटते निपटते रात के 2 बज जाएंगे। अरे सीतानाथ
4: जी। भैया,
2: जरूरत भर का सब सामान तैयार है?
4: सब तैयार है कामता भैया।
2: तो उमानाथ
3: जी। भैया,
2: बिठाओ सबको पंगत में और कह दो थोड़ा सिकुड़ सिकुड़ कर बैठे। दयानाथ
5: जी। भैया,
2: परोसने वालों से कहना हाथ जरा फुर्ती से चलाएं।
3: अरे चाचा चाचा बैठिए। अरे बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। अरे आप बैठिए तो सही। बैठिए, अरे बैठिए बैठिए, सब बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। थोड़ा सट के बैठिए बैठिए।
0: अरे बाप रे, कैसे आदमी के ऊपर आदमी बैठा दिए। हाँ, ठंडी ठंडी पूड़ियाँ परोस रहे हैं और रसोइये को भी उठा दिया। नाक कटवाएंगे सब।
6: अरे पानी, अरे पानी के घर से निकल रहे हैं। गर्म पानी है इधर। गर्म पानी पिला दो। ऐसे बहुत कौन कर रहा है?
3: हाँ
7: उमानाथ भैया।
3: अरे सांस ले लो, थाम लो, फिर बोलो क्या हो गया।
7: कुमड़े की तरकारी में नमक नहीं डाला, लोग ऊपर से नमक मांग रहे। पानी भी गर्म है, ठंडा पानी चाहिए सबको।
3: अरे तो हमसे क्यों बोल रहे हो दया? है तरकारी में हमने नमक डाला क्या? हमने छोकी तरकारी। और रही बात ठंडे पानी की, तो जाकर राम सेवक को बोलो बाजार दौड़ाओ, बोलाएगा ना बर्फ। जाओ।
7: ठीक है, जा रहा हूँ।
0: हे भगवान, क्या है ये? तरकारी में नमक नहीं, ठंडे पानी का प्रबंध नहीं, इतनी रात गए, कहां से लाएगा बर्फ? खाली हाथ ही लौटेगा? मेहमानों को गर्म पानी पीना पड़ा। हे परमेश्वर, मेरा बदसलता ना, मैं लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी चीचा लेदर मेरे घर में कभी नहीं हुई। ये सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी सुध नहीं रही। अरे सुध रहे कहां से है? बस गप लड़ाने से फुर्सत मिले तब की बात है ना। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं।
8: मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डाल रही थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली,
0: मुंह में कालिक लगी कि नहीं? ये अभी भी कुछ कसर बाकी है। हुँ? अरे डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे हम। कोई जवाब नहीं ना तुम लोगों के पास? तुम लोगों को क्या, आत्मा तो उनकी रो रही होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्यादा बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने कलंकित किया है। शहर में थू हो रही है, कोई तुम्हारे दरवाजे थूकने भी नहीं आएगा।
8: 2 महीने गुजर गए थे। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है।
9: कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा।
2: देखो भाई, तुम तीनों जो चाहो सो कहो, पर मेरा मानना है बाबूजी की बात बाबूजी के साथ गई। माना मुरारी पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपए में बेचे वो आदमी ठीक नहीं। ऐसे आदमी के लड़के से हम अपनी गुड़िया सी बहन कुमुद का विवाह कैसे कर देंगे, बताइए। अच्छा सुनो।
3: हाँ जी भैया।
2: उसे मना कर दो और दूसरे वर की तलाश करो।
3: ठीक है।
2: अब देखो, हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। 5 मुरारी पंडित के दहेज में दे देंगे और 5,000 बाजे गाजे नेग न्योछावर में उड़ा देंगे, तो हम तो हो जाएंगे ना ठन ठन।

0: गलत कह रहा हूँ क्या?
1: नहीं नहीं भैया, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। कांता भैया, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपयों की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: मैं अपने हिस्से में से तो एक पाई नहीं दे सकता। दयानाथ भी कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है जिंदगी में।
2: जी भैया, कामता भैया, मेरा विचार एक समाचार पत्र निकालने का है।
0: अच्छा।
2: प्रेस और पत्र के लिए कम से कम 10,000 की रकम चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल जाएगा।
1: सही कहते हो,
2: बिल्कुल। समाचार पत्रों में केवल लेख लिखकर मेरा निर्वाह संभव नहीं।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता।
3: देखिए जी, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है,
3: है ना। अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। नसीबों के खेल है सब, क्यों नहीं? ठीक बोला ना मैंने?
1: बिल्कुल ठीक कह रही है।
0: भाई वाह, बात में तुम्हारी दम है श्रीमती जी। और इसी साल हमें सीतानाथ का विवाह भी तो करना है।
1: हाँ हाँ, सीतानाथ भी बड़ा हो गया।
0: क्यों सीतानाथ?
4: भैया, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें।
1: क्यों क्यों ना करें?
4: जब तक मैं किसी काम काज में ना लग जाऊंगा, विवाह ना करूंगा।
1: अरे,
4: आप मेरे हिस्से के रुपए कुमुद के विवाह में खर्च कर दीजिए।
0: क्या?
1: अपना हिस्सा
0: ऐसे कैसे?
4: देखिए भैया, सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिए जाए।
1: बड़ा समझदार हो गया तू तो है सीता। तुम अपने हिस्से के 5 दे दोगे तो बाकी के 5 कहाँ से आएंगे? बताओ बताओ, खर्च तो 10,000 का है ना।
0: बिल्कुल, कहाँ से आएंगे?
4: भैया, मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वो इतने लालची भी नहीं कि बाबूजी के निधन का ख्याल करके कुछ नरम ना हो।
1: हमारी क्यों सुनने लगे हो?
4: भैया, 3,000 नकद में अगर वो संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में कुमुद का विवाह संपन्न हो सकता है।
1: तुमने कह दिया और वो मान जाएंगे हैं? सुन रहे हैं कामता भैया?
2: तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? सीता अपने रुपए दे रहा है, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर थोड़ी ही है। फिर सीता को तत्काल रुपए की जरूरत भी नहीं है, पढ़ने के लिए सरकार से वजीफा पाते ही है।
0: तुम बहुत दूर की नहीं सोच पाते दयानाथ। कौन जानता है, कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या ये सिविल सर्विस में आ जाएं, उस वक्त सफर की तैयारी में ही 4,000-5,000 रुपए लग जाएंगे। नहीं?
1: हाँ। सही बात, बिल्कुल।
0: तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे?
1: बताओ
0: बताओ
4: जी,
0: हमारे पास भी होगा या नहीं कौन जानता है। और बड़े भाई होने के नाते मैं नहीं चाहता कि कुमुद के विवाह के पीछे सीतानाथ का भविष्य नष्ट हो। समझ आई कुछ?
4: जी भैया, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपयों की जरूरत होगी।
1: हाँ, जरूरत होगी। अब आई बात समझ में?
0: क्या ऐसा होना असंभव है?
4: असंभव तो नहीं है भैया, लेकिन वजीफा मिलना कठिन अवश्य है। तो फिर जैसा आप उचित समझे। मुझे तो यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत जाऊँ या ना जाऊँ, कुमुद जरूर अच्छे घर में जाए।
0: अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता सीतानाथ। मैं तो चाहता हूँ मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा वर कुमुद के लिए खोजा जाए जो थोड़े में ही राजी हो जाए। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? तुम तो उन्हें जानते हो ना?
1: अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। MA BA ना सही, लेकिन जजमानी से अच्छी आमदनी है दीनदयाल जी की।
2: अम्मा से भी तो पूछ लो भैया।
0: दयानाथ, मुश्किल यही है कि तुम रत्ती भर व्यवहारिक नहीं हो। अम्मा की बात कर रहे हो? हैं? अम्मा की? अरे उन्हें तो बस एक ही धुन चढ़ी हुई है कि कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए और चाहे हम लोग तबाह हो जाएं।
1: हाँ, और ये भी देख लीजिएगा, अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को दे देंगी।
0: बिल्कुल।
3: हाँ, सारे गहने कुमुद को कैसे दे देंगी जी? उनके गहनों पर क्या हम बहुओं का कोई अधिकार नहीं?
0: अरे भाई सुनो, इस मामले में तुम चुप रहो तो ही अच्छा है। गहने अम्मा के हैं, जिसको चाहे उसको दे है? ये उनका स्त्री धन है।
1: भैया, स्त्री धन है तो क्या क्या वो उसे लुटा दे? आखिर वो भी तो बाबूजी की कमाई से ही आया है।
0: अरे भाई उमानाथ, किसी की भी कमाई हो लेकिन गहने अम्मा के हैं।
1: अरे वाह, अजीब बात है। 20,000 के तो 4 हिस्सेदार हैं।
0: हाँ तो?
1: और 10,000 के गहनों पर केवल अम्मा का अधिकार है।
0: हाँ?
1: क्यों? ऐसा क्यों? उसमें भी तो हम भाइयों का हिस्सा है। भले 2,500 ही हिस्से में आए, मैं इस रकम को आसानी से छोड़ नहीं सकता कामता भैया।
0: अच्छा,
1: देख लेना, इन्हीं गहनों के बल पर अम्मा कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के साथ कर देंगी। कोई ना कोई चाल चलनी पड़ेगी हमें अम्मा से गहने ऐंठने के लिए।
0: देखो भाई, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता।

0: मतलब नहीं डालना चाहता।
1: अच्छा, नहीं डालना चाहते?
0: हाँ।
1: तो आप अलग बैठिए, ठीक है? बैठिए अलग। दया
2: जी। भैया
1: बोलो।
2: मैं साथ हूँ भैया।
1: सीता
2: जी भैया।
1: तुम?
2: भैया मैं अलग रहूंगा।
1: तो रहो, चलो दया।
3: हे राम।
1: अम्मा।
3: हाँ बेटा।
1: अम्मा सो गई क्या?
3: कौन?
1: मैं।
3: अच्छा, उमानाथ। और अच्छा दया भी है। दया, अरे तुम दोनों इतने घबराए से क्यों हो बेटा?
1: अम्मा
3: क्या हुआ, बोलो बोलो ना बेटा।
1: अम्मा तुम तो जानती हो, समाचार पत्रों में लेख लिखना कितना जोखिम का काम है।
3: हाँ।
1: दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है।
3: मुझे एक बात बताओ, तुमने रुपयों का प्रबंध करने को कामता को नहीं कहा?
1: कहा अम्मा कहा, मगर उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो, रुपए उन्हें प्राणों से प्यारे हैं।
3: चलो मैं चलती हूँ, देगा कैसे नहीं, दफ्तर में नौकरी करता है, रुपए होते किस दिन के लिए है?
1: नहीं नहीं अम्मा नहीं, कामता भैया से कुछ मत कहो।
3: मेरे पास और कुछ तो है नहीं, गहने हैं, उन्हें ले जाकर गिरवी रख दो और जमानत देकर मुसीबत से छुटकारा पाओ।
1: सच सच अम्मा?
3: गहने हैं किस दिन के लिए बेटा? जब तुम ही ना रहोगे तो गहने क्या आग में झोंकूंगी? रुको मैं देती हूँ, ये लो पकड़ो दया, लो।
2: कुछ भी हो अम्मा, मैं तुम्हारे गहने तो नहीं लूंगा, किस मुंह से तुम्हारे गहने ले जाऊं?
3: तुम अगर ये गहने नहीं लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी, जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिरछी नजर से नहीं देख सकता बेटा।
1: अब तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा दया, लेकिन याद रखो, जैसे ही हाथ में रुपए आए तो अम्मा के गहने सबसे पहले छुड़वा लेना, समझे?
2: जी जी जी भैया।
1: सच ही है, माँ के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है।
4: तीन महीने और गुजर गए, माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाए, अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वो सरलता से उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती, किंतु कुमुद के विवाह के विषय में एकमत ना हो सकी। माँ पंडित मुरारीलाल पर जमी हुई थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे, और फिर एक दिन आपस में कलह हो गई।
3: कामता
0: जी। अम्मा
3: मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
0: हाँ बोलो अम्मा।
3: देखो बेटा, तुम लोगों को 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद
0: जी,
3: उसमें से क्या कुमुद 5,000 की भी हिस्सेदार नहीं है? माँ बाप की कमाई में क्या बेटी का कोई हक नहीं होता?
0: अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है, 2-4 साल में आप प्रस्थान कर जाएंगी, हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। माँ बाबूजी जीवित थे तब और बात थी, उसके विवाह में वे जैसा चाहते और जितना चाहते खर्च करते, कौन उनका हाथ पकड़ सकता था बताइए। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की बचत करनी पड़ेगी ना माँ, और जो काम 1,000 रुपए में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है बताओ।
1: 5,000 क्यों, 10,000 कहिए कामता भैया।
0: मुझे जो कहना था कह दिया।
3: विवाह तो पंडित मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा कुमुद का, 5,000 खर्च हो या 10, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर उसे जोड़ा है,
0: तो
3: अपनी इच्छा से खर्च करूंगी तो क्या? तुम लोगों ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, कुमुद ने भी उसी कोख से जन्म लिया है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, तुम बैठो और तमाशा देखो, 20,000 में 5,000 कुमुद का है।
0: अम्मा तुम अब बस बात बढ़ा रही हो, जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो ना वो तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं, हमारे।
3: अच्छा?
0: हाँ।

0: तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती।
1: अरे कामता भैया, अम्मा का दोष नहीं है इसमें। अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं, ना हक उलझ रही है।
2: अरे फाड़ में जाए तुम्हारा कानून।
1: अच्छा,
2: मेरे जीते जी मेरे रुपए नहीं छू सकते तुम।
0: अच्छा,
2: मैंने तीनों बेटों के विवाह में 10-10 हजार खर्च किए हैं और कुमुद के विवाह में भी वही खर्च करूंगी। और क्या है ये कानून, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या इस घर में तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ी हूँ?
1: अब हमने तो ये नहीं कहा अपने मुँह से, जैसा तुम समझो अम्मा।
2: वाह, मैंने घर बनवाया, संपत्ति जोड़ी, तुम लोगों को जन्म दिया पाला और आज मैं इसी घर में गैर हूँ। अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता होकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं।
3: वाह रे अधेर, पेड़ मैंने लगाया और उसकी छांव में खड़ी नहीं हो सकती।
4: दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी, बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए।
2: कुमुद, अरे वहाँ क्यों खड़ी है बेटा? रो मत।
5: अम्मा।
2: मत रो बेटा, तेरी विदाई का शुभ मुहूर्त है ये, थोड़ी देर बैठ मेरे पास।
5: क्या बात है अम्मा?
2: अरे आ ना बेटा, बताती हूँ। इधर आ, इधर आ। ये रुमाल में कुछ सेवर और रुपए हैं, इन्हें रख ले चुपचाप से। मेरे तो मन की मन में ही रह गई, तेरे बाबूजी जीवित होते तो आज तेरा विवाह इस तरह होता, लोग देखते तो ऐसे ही रुखे रुखे विदा हो रही है।
5: अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन गहनों को अपने पास रखो, ना जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े।
2: ना ना कुमुद, ये मैंने तेरे लिए बचा कर रखे हैं।
5: अम्मा,
4: अरे कुमुद, यहाँ कोठरी में क्या कर रही है? चल जल्दी कर, जल्दी चल। अरे मुहूर्त टला जा रहा है, बाहर लोग हाय हाय कर रहे हैं। फिर तू 2-4 महीने में आएगी ही, जो कुछ लेना देना हो तब ले लेना।
2: मेरे पास अब क्या बचा है उमानाथ, जो इसे दूंगी। भगवान तेरा सुहाग अमर रखे। ईश्वर, मेरी अंतिम लालसा भी अधूरी रह गई।
4: अरे मां, ऐसा क्यों सोचती हो?
2: तू जा,
4: शांत हो जा, मैं तो जा ही रहा।
2: निकल बाहर।
6: अम्मा, अम्मा।
2: हाँ।
6: इस बरसात में कहाँ जा रही हो अम्मा?
2: तुम तो नल का पानी पीते नहीं हो कामता, इसलिए गंगा जल लेने जा रही हूँ।
6: रहने दो अम्मा, सुबह से तो चौका बासन में लगी हो, छोड़ दो, पानी में भर लाऊंगा।
2: तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी लग जाएगी।
6: तुम भी तो भीग रही हो ना अम्मा, और कहीं बीमार पड़ गई तो?
2: मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, भगवान ने मुझे अमर कर दिया है।
1: सही कहती हो अम्मा। अरे कामता भैया, जाने दो जाने दो, अम्मा को जाने दो, बहुत दिनों तक बहुओं पर राज कर चुकी है अम्मा, इनका कुछ तो प्रायश्चित हो, कुछ तो प्रायश्चित करने दो।
2: अरे भगवान,
1: जाओ जाओ,
2: क्या संताने हैं।
4: गंगा बड़ी हुई थी, जैसे समुद्र हो, घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला, संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी।
7: अरे बचाओ,
8: बचाओ भैया, अरे उस औरत को बचाओ कोई, अरे वो बह रही है, औरत को बचाओ।
4: 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था।
9: बोलती कहानियां क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक बेटों वाली विधवा। रूपांतरकार, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे मालविका जोशी, नितिन भसीन, उमेश दीक्षित, संयम खन्ना, यशिका नैयर, सुहानी और कृष बब्बर।

आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश और एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह

0: बापू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आज कलिम्पोंग के पहाड़ी जिले से अवैध अफगानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 28 वर्ष के सैयद बिलाल खान को पकड़ा। वो पिछले कई महीनों से कलिम्पोंग शहर में किराएदार के तौर पर अवैध रूप से रह रहा था। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास पहले से मौजूद मजबूत रिश्तों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में डॉ. वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी अकादमी का दौरा किया। उन्होंने अकादमी के संकाय सदस्यों से प्रशिक्षण पद्धतियों और तोपखाने के आधुनिकीकरण के मुद्दों पर बातचीत की। जनरल सेठ ने प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं और आधुनिक समय की सैन्य जरूरतों के मुताबिक तोपखाने को विकसित करने पर चर्चा की। एशियाई खेलों के टैगबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसूजा कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसूजा को 2-1 से हराया। आज एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sahira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said that India is today the world's third largest startup ecosystem.
2: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe रिकॉग्नाइज स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today, Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth.

0: youth under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushal Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Secretary, Ministry of Electronics and IT, S. Krishnan, today said that India currently accounts for nearly 20% of the world's semiconductor design workforce. He said that the government has placed substantial emphasis on design talent, with an ongoing program to train approximately 85,000 design engineers. Talking to media on the sidelines of SemiCon India 2026 in New Delhi, Mr. Krishnan said that the government will give priority to all aspects of skill development with a strong focus on semiconductor manufacturing. The grand opening of the 20th edition of the Asian Games 2026 has started at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today. The Asian Games will run till 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. And the Met Department has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Keralam, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. It has also predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, Sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Konkan, Goa, Odisha and parts of Northeast India tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में अभी समय हो रहा है 4:10:14। आइए अब सुन लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। खोए हुए व्यक्तियों के क्रम में पहला नाम है मोनिका यादव। इनकी उम्र 18 वर्ष है, महिला है। इनके शरीर की बनावट सामान्य है। इनकी ऊंचाई तथा कद है 152.4 सेंटीमीटर। इनके हाथ पैरों पर कोई विशेष चिन्ह या निशान नहीं है। प्रार्थी का नाम है देवेंद्र यादव, पुत्र रामवीर सिंह, ग्राम रोजा जलालपुर, थाना बिसरक, जनपद गौतम बुद्ध नगर। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है, आप इस पर सूचित कर सकते हैं 8171673161। खोए हुए व्यक्तियों में दूसरा नाम है गुड़िया पुत्री उमेश पासवान। इनकी उम्र है 22 वर्ष। इन्हें अंतिम बार दिनांक 21 जनवरी 2026 को मस्कन सेक्टर 4 नोएडा में देखा गया। इनका इकहरा सामान्य बदन है, कद है 5 फुट, इनका रंग सांवला है। ये बिना बताए घर से पार्लर का बोलकर कहीं चली गई हैं। इनके लिए सूचना, इनके पाए जाने पर आप सूचना दे सकते हैं चौकी प्रभारी हरोला थाना फेज 1 नोएडा में। खोए हुए व्यक्ति का नाम है आंचल। ये पत्नी है राकेश की। इनकी उम्र है 24 वर्ष। इन्हें अंतिम बार 20 दिसंबर 2025 को किराए के मकान में हरोला सेक्टर 5 नोएडा में देखा गया। इनका सामान्य बदन है, ऊंचाई 5 फुट है, इनका रंग गोरा है। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ पता देना चाहते हैं तो आप ओमपाल का मकान हरोला सेक्टर 5 नोएडा गौतम बुद्ध नगर पर दे सकते हैं। ये बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज किया हुआ है, आप इस मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकते हैं 7895549556। खोए हुए व्यक्तियों के क्रम में अगला नाम है रोशनी। ये पुत्री है बबलू की। इन्हें अंतिम बार B-356 सेक्टर 105 नोएडा में देखा गया। इनकी आयु है 23 वर्ष। इकहरा बदन है, 5 फुट कद है, ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। प्रार्थी का पूरा नाम व पता है आलोक वर्मा। ये निवासी हैं सेक्टर 39 के गौतम बुद्ध नगर। इन्होंने भी अपना मोबाइल नंबर दिया है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर आप इन्हें सूचित कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 99-5653-1911। खोए हुए व्यक्तियों के क्रम में अगला नाम है श्रीमती सीता देवी। ये पत्नी है विजयपाल सिंह की। इनकी आयु है 20 वर्ष। सांवला इकहरा बदन है। 5 फुट इनकी ऊंचाई है। ये भी घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनका पूरा पता और नाम है प्रार्थी का विजयपाल। पुत्र है महेंद्र सिंह के। ग्राम हबीबपुर थाना इकोटेक जिला गौतम बुद्ध नगर। खोए हुए व्यक्तियों के क्रम में अगला नाम है अमर पुत्र रामजी लाल। निवासी ग्राम टमकौली थाना गौतम बुद्ध नगर। थाना इकोटेक गौतम बुद्ध नगर। इनकी आयु है 18 वर्ष। शरीर की बनावट है इकहरा बदन रंग सांवला। इनका कद 5 फुट 2 इंच है। इनके शरीर पर कोई निशान या पहचान का चिन्ह नहीं है। प्रार्थी का पूरा नाम व पता है शीला देवी। पत्नी है रामजी लाल की। गमकौली का किराए का मकान और इकोटेक थाना जिला गौतम बुद्ध नगर। ये भी घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनके बारे में कोई भी सूचना पाने पर आप थाना इकोटेक जिला गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के क्रम में अगला नाम है सलोनी। पुत्री है कलुआ की। ये निवासी हैं ग्राम फरेदा थाना उपरा जिला गौतम बुद्ध नगर। अंतिम बार इन्हें 21 सितंबर 2025 को देखा गया। इनकी उम्र है 21 वर्ष। इनका आंख कान नाक कद सब औसत है। इनका कद है 5 फुट। इनके बाएं हाथ पर कुछ खास चिन्ह है, कुछ निशान है। इन परिस्थितियों में व्यक्ति को खोया और इसका संक्षिप्त विवरण है रोजमर्रा की तरह ये अपने काम पर झाड़ू पोछा करने के बाद अपने गांव फलेदा थाना खुपुरा गौतम बुद्ध नगर से निकली थी। प्रार्थी का पूरा नाम है कम्मो। ये पत्नी है कलुआ की। ग्राम फलेदा थाना खुपुरा जिला गौतम बुद्ध नगर। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है। कोई भी सूचना मिलने पर इन्हें इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 99-5349-9980। खोए हुए व्यक्तियों के क्रम में आखिरी नाम है जितेंद्र यादव। ये हैं पुत्र जवाहिर के। ये निवासी हैं थाना सेमरी जिला बक्सर बिहार। हाल निवासी रिमांड डिपो आर्मी जनकपुरी सहोरन उत्तर प्रदेश। इनकी आयु इसमें नहीं दी गई है। इनका कद है 5 फुट 8 इंच। आंख कान नाक सब औसत है। इनका मजबूत जिस्म है। इनका रंग सांवला है। कोई भी सूचना मिलने पर आप इन्हें जनकपुरी सहारनपुर थाना में इनकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।

0: गोवा आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए आवेदन, कुल सचिव एक पद, अधीक्षण अभियंता और तकनीकी अधिकारी भी एक एक पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए IIT गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय बाल भवन इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपनिदेशक कार्यक्रम समन्वयन और अनुसंधान, सहायक निदेशक विज्ञान तथा क्यूरेटर म्यूजियम। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए बाल भवन की वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज में प्रतिनियुक्ति आधार पर सीधी भर्ती द्वारा संस्थान के निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं हैं, इतिहास सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री, इतिहास सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में किसी भी बड़े एशियाई देश से संबंधित उच्च योग्यता का प्रकाशित अनुसंधान कार्य, कम से कम 5 वर्ष के लिए एक जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव सहित कम से कम 10 वर्ष का पढ़ाने और अनुसंधान का अनुभव। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सभी प्रतियां निदेशक मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के पास रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 3 हफ्ते के भीतर पहुंच जाने चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपनिदेशक का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद और योग्यता की शर्तों, वेतनमान, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.agriwelfare.gov.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हिंदी प्रशिक्षक का एक पद रिक्त है, जिसे प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। वेतन, अनिवार्य योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की इस वेबसाइट पर www.svpnpa.gov.in/vacancies। रक्षा मंत्रालय में प्रधान सिविलियन स्टाफ अधिकारी स्टोर्स ग्रुप क राजपत्रित के 2 पद भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप और अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं इस वेबसाइट पर indianarmy.nic.in तथा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट mod.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशेष व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्म दिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्ताबा। सायरा,

0: आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हज़्बे दस्तूर लाते हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें, बट बिकॉज दिस शो इज ऑल अबाउट डूइंग परिक्रमा ऑफ द कंट्री, सो वील गो टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। एंड ऑफकोर्स इन आर लास्ट सेगमेंट, जैसा कि मुकेश ने ऑलरेडी बताया, वील रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ एनिवर्सरीज, बर्थ डेज और डेथ एनिवर्सरीज, all of that in the roughly next half an hour, but first let's start with the headlines. Mukesh
0: ji, bilkul. Pradhanmantri Narendra Modi ne kaha mukt vyapar samjhote desh ke yuvaon ke avsaron ke naye dwar khul rahe hain. Shri Modi ne aaj 20ve rozgar mele mein vibhinn sarkari sansthanon mein chayanit 51,000 yuvaon ko niyukti patra saunpi.
1: Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule.
0: सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी।
1: India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal.
0: संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन स्वदेश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी।
1: And 20th edition of Asian Games begin in Japan. And Mukesh, as always, we start Parikrama with our special segment, Dateline India, in which we talk about some important topics. Today, we are going to talk about the Swachhta Hi Seva campaign.
0: बिल्कुल सायरा, पूरे देश में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू हो चुका है और यह अभियान 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। ये स्वच्छता के सामूहिक प्रयासों के लिए नागरिकों, संस्थाओं और सरकारों को एक साथ ला रहा है।

0: Yes, we are going to talk about a movement that reminds us of a simple truth that cleanliness is not just someone else's responsibility, it's a way of life and it belongs to all of us. The theme this year, Mukesh, is Swachhta Mein Sahbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat. In other words, participation in cleanliness for a clean India and a developed India.
1: ये अभियान पूरे सरकारी तंत्र और पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका मतलब है कि सफाई का काम सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों या सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं है। इसमें नागरिकों, समुदायों, संस्थानों, संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों की भागीदारी की जरूरत है।
0: That's right, Mukesh. And of course, a special focus has been on our youth. After all that, you know, young people can turn any campaign, especially if it's a cleanliness campaign, into a lasting habit. Whether we talk about schools or colleges, even workplaces, neighborhoods and public spaces.
1: बिल्कुल सारा, ये अभियान सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियों और सामूहिक भागीदारी पर भी बल देता है। इस वर्ष ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के बारे में अधिक जागरूकता फैला रहा है और ये लोगों को ये समझने में सहायता कर रहा है कि अलग अलग पक्ष बेहतर कचरा प्रबंधन में कैसे योगदान दे सकते हैं।
0: That's right, Mukesh, because managing waste doesn't begin when garbage reaches a collection point. It begins right at home with responsible consumption, segregation and proper disposal as well.
1: जी हाँ, और स्वच्छता ही सेवा में नागरिकों की भागीदारी का सबसे स्पष्ट तरीका है श्रमदान। श्रमदान का मतलब है समुदाय की भलाई के लिए अपनी मर्जी से समय और मेहनत देना, यानी निस्वार्थ सेवा के तौर पर अपनी मेहनत का योगदान देना।
0: So well, whether it is joining a community cleanliness drive, helping clean a public space, spreading awareness about waste segregation, or encouraging others to keep their surroundings clean, every contribution can become part of a larger collective effort.
1: जी हाँ, स्वच्छता ही सेवा अभियान वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन की व्यापक जनभागीदारी यानी लोगों की भागीदारी वाले नजरिए से शुरू हुआ।
0: एंड मुकेश, इसकी टाइमिंग भी बहुत सिग्निफिकेंट है। द कैंपेन लीड्स अप टू स्वच्छ भारत दिवस ऑन 2nd October, दैट इज ऑफ कोर्स गांधी जयंती, एंड दैट्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। स्वच्छता ही सेवा 2026 इज

0: not just about cleaning, it is also about participation, taking responsibility, and making a lasting change. Let's take a quick look at its five core activity pillars.
1: जी हाँ, पहला स्तंभ है सफाई के लिए चुने गए स्थानों और सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा बनाना। जिन जगहों पर कचरा जमा होने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और जहाँ सफाई करना मुश्किल होता है, वहाँ सफाई की जाएगी, उन्हें सुंदर बनाया जाएगा और उनका रखरखाव किया जाएगा। इस अभियान में बाजार, स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट हब, पार्क और जलाशय भी शामिल हैं। नागरिक स्वच्छता ऐप के जरिए सफाई और कचरे से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
0: The second pillar, स्वच्छ पाठशाला युवा फॉर स्वच्छता। Well, young people are at the heart of sustained behavioral change. Students from classes 6 to 12 will participate in स्वच्छता ज्ञान यात्रास, learning about waste management and sanitation. Schools will also encourage discussions on hygiene, hand washing, menstrual hygiene, water conservation and safe drinking water.
1: और तीसरा स्तंभ है सफाई मित्र सुरक्षा सेवा और सम्मान शिविर। ये अभियान सफाई कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देता है और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। विशेष शिविरों के माध्यम से सफाई मित्रों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
0: The fourth pillar is Jan Bhagidari or public participation for cleanliness or Swachhta. People's participation remains central, of course. Activities include awareness about the solid waste management rules 2026, demonstrations of four-way waste segregation, home composting awareness, campaigns against littering and single-use plastics, rallies, human chains, Swachhta pledges and collection drives for reusable household items.
1: और स्वच्छता पर्व हरित पर्व भी हैं, जो त्योहारों को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अंत में पांचवा स्तंभ स्वच्छता से समृद्धि, जहां रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल यानी कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल और फिर उपयोग के योग्य बनाना के जरिए कचरे को कंचन में बदलने पर जोर दिया जाएगा। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है, जो आज है। इसका मकसद समुद्र के प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाते हुए समुद्र तटों और जलमार्गों से समुद्री कचरे और प्लास्टिक वेस्ट को हटाना है।
0: And Mukesh, towards this goal, the Indian Coast Guard marked the International Coastal Cleanup Day with a large-scale cleanliness drive across 25 beaches in Goa, drawing enthusiastic participation from more than 4,000 volunteers. Let's hear more from our correspondent.
2: Speaking at the event, Goa Governor Pusapati Ashok Gajapati Raju credited campaigns like Swachh Bharat with helping India make major strides against diseases such as smallpox, leprosy and polio. He noted that sustaining higher standards of cleanliness could help eliminate such illnesses altogether, sparing the country the public health burdens seen elsewhere in the world. The drive's primary objective was to raise awareness about beach cleanliness and encourage its upkeep, given how central tourism is to Goa's economy. Officials emphasized that the Coast Guard hopes citizens will take greater ownership of their surroundings, reducing the need for organized cleanup campaigns in the future. In line with government's Swachh Bharat Abhiyan, they urge every citizen to recognize their individual responsibility and actively contribute to keeping public spaces clean. Beach pollution doesn't just harm marine ecosystems, it has a direct bearing on human life and well-being. They call for greater awareness among both tourists and fishermen to curb waste accumulation on beaches and keep pollution levels in check. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
0: The Swachhta Hi Seva journey shows a gradual expansion, Mukesh, in the meaning of cleanliness. The early editions focused on cleanliness action and volunteerism. Later editions brought plastic waste, visual cleanliness and garbage management into focus. In 2026, Swachhta Mein Sehbag places collective action and cooperation at the center.
1: तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कैंपेन कैलेंडर नहीं है, ये खुद से ये पूछने का मौका है कि आज मैं अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने कार्यस्थल, अपने समुदाय को साफ सुथरा बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि साफ सुथरा माहौल सिर्फ सरकारी कामों से ही नहीं बनता, बल्कि रोजमर्रा के फैसलों और समाज की भागीदारी से भी बनता है।
0: That's so right, Mukesh. And so, well, from 17 September to 2nd October, let's turn participation into action. Let's make cleanliness a shared responsibility. मुकेश, नाउ वी ऑफ कोर्स हेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे. आपने

0: पैंट्रा का जब मैं जिक्र करती हूँ तो आपके जहन में क्या तस्वीर उभर?
1: वही जैसा जो उसका रूप होता वही नॉर्मल दिखता है,
0: मतलब काला सफेद वाला
1: जी,
0: है ना?
1: जी बिल्कुल, आप लेकिन कुछ आप, नया, जी नया बताने जा रहे हैं
0: लेकिन एक रेड पैंडा भी होता है, यूजली हम लोग के तस्वीर में दैट ब्लैक एंड व्हाइट पैंट्रा होता है, बट ऑफकोर्स इट्स अ वेरी वेरी एंडेंजर्ड स्पीशी एंड इंटरनेशनल रेड पैंडा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 3rd Saturday ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एंडेंजर्ड रेड पैंडा एंड स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एक्शन. द इंटरनेशनल रेड पैंडा डे फॉल्स ऑन 19 September. लेट्स हियर अ रिपोर्ट.
2: The red panda is an arboreal mammal of high altitude forests. It has several unique physical and behavioral features that distinguish it from the giant panda. It is slightly larger than a domestic cat. It has thick reddish brown fur, black belly and limbs, white facial markings and a long bushy tail. Panda is a small mountain mammal found across the eastern Himalayas and parts of China and Myanmar. India has important red panda habitats in Sikkim, Arunachal Pradesh and northern West Bengal. Red panda became Sikkim's state animal in the 1990s. It is also the mascot of the Darjeeling Tea Festival. Red Panda Day focuses on the protection of red pandas, their bamboo-rich mountain forests, and the wider Himalayan ecosystem. The red panda is classified as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List. It is included in Appendix 1 of Convention on International Trade in Endangered Species. This provides strict international controls against commercial international trade in the species. In India, the red panda is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, providing it with the highest level of legal protection under the Act. Almost 50% of the red panda's habitat is located in the eastern Himalayas. Loss of nesting trees and bamboos directly affects suitable habitat. The species faces habitat loss, poaching, illegal wildlife trade, infrastructure development, and competition for food. Its global population is estimated at fewer than 10,000 breeding individuals. With Sanyukta's report, Anuja Kumar for Parikrama.
0: Yes, so Mukesh, I think अगर आपने रेड पैंडा नहीं देखा है तो प्रोग्राम के फौरन बाद आप जो है गूगल करके उसकी तस्वीरें जरूर देखिएगा. एंड इफ द लिसनर्स आर ऑल्सो प्रॉब्ली नॉट अवेयर देन वी शुड डू यू नो मोर रीडिंग अबाउट देम एंड ऑफकोर्स हेल्प इन देयर कंजर्वेशन. और आप सोचेंगे कि जब हमारे क्या कंट्री में पैंडा नहीं होते हैं तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग नेचर. अगर हैबिटेट को हम लोग जो है कहीं से भी किसी भी दुनिया में कोने में हो तो एवरीबडी इज affected every single living creature on this earth. And well, now let's move ahead. Mukesh, to sabse pehle dekhte hain Delhi mein kya ho raha tha. Of course, the 20th Rozgar Mela was held this afternoon, Mukesh, in which the Prime Minister distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations.
1: और आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नवनियुक्त कर्मियों ने अपनी खुशी जाहिर की और सरकार को धन्यवाद दिया.
3: This moment is a culmination of hard work, dedication and perseverance. I'm honored to stand before you here and I'm grateful to the Prime Minister and Finance Minister for this esteemed position.
4: मेरा नाम नेहा है और मैं हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हूँ. मेरा चयन आयकर विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर हुआ. मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिला. इसके लिए मैं अपने परिवार, अपने गुरुजनों और साथियों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ.
5: नमस्कार, मेरा नाम वाणी बालिया है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ. मेरा चयन आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हुआ है. मैं प्रधानमंत्री जी का इस नियुक्ति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ. मैं आज अत्यंत खुश हूँ. मैं इस अवसर पर अपने गुरुजनों, परिवारजनों और मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में समर्थन दिया. मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने देश और विभाग की उन्नति में योगदान देने का प्रयास करूँगी.
0: And well, now we have some news for cinephiles. Well, Marathi film Gondhal, written and directed by Santosh Dabhakar, has been selected as India's official entry for the Oscars 2027. Set in rural Maharashtra, the film tells its story over one night and centers on a traditional ritual involving a newly married couple. Let's hear more from our correspondent.
6: Gondhal is a traditional Maharashtrian religious ritual that includes devotional songs, music, storytelling and performances. It is usually performed during important family and religious occasions. The ritual is closely linked to Maharashtra's folk culture and traditions. In the film, it forms an important part of the story and the setting in which the events involving the newlywed couple unfold. The film is selected from a list of 33 films considered for India's Oscar submission. The Film Federation of India announced the selection on September 18. P. Seshadri, chairperson of the selection committee, announced Gondhal as India's entry in the Best International Feature category for the 99th Academy Awards. The film will now represent India in the Oscar race and bring a story rooted in rural Maharashtra and its traditional culture to an international audience. Nivedita for Parikrama, Mumbai.
1: और अपने श्रोताओं को बता दें कि सिलीगुड़ी में कल सचिन रमेश तेंदुलकर खेल अकादमी का उद्घाटन होगा। एसएफ रोड स्थित प्रतिष्ठित सिलीगुड़ी हिंदी हाईस्कूल मैदान में इस अकादमी का संचालन किया जाएगा। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
7: सचिन रमेश तेंदुलकर वेलफेयर सोसाइटी तथा हिंदी हाईस्कूल प्रबंधक के तत्वाधान में कल से सिलीगुड़ी में आरंभ होने जा रहे है स्पोर्ट्स अकादमी। उत्तर बंगाल में इस प्रकार की यह पहली स्पोर्ट्स अकादमी होगी जो क्रिकेट टैलेंट को बढ़ावा देगी। सचिन रमेश तेंदुलकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मनीष टिवरेवाल ने बताया कि इसका मुख्य लक्ष्य क्रिकेट फॉर ऑल के बैनर तले कम्युनिटी एंगेजमेंट और ग्रासरूट क्रिकेट को बढ़ावा देना है। देश के प्रसिद्ध निशानेबाज जीतू राय ने भी पिछले वर्ष सिलीगुड़ी में जीतू राय शूटिंग अकादमी खोला है, तो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भाईचुंग भूटिया ने फुटबॉल अकादमी खोला है, तो वहीं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भरत छेत्री ने भी हॉकी अकादमी खोला है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भूटान नेपाल बांग्लादेश का त्रिजंक्शन सिलीगुड़ी आज खेल प्रतिभा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
0: And now we head to the north to Leh. Well, the Seebachthon Conclave cum Reverse Bio-Cellar Meet was held at Leh Main Market. The aim was to promote the importance and benefits of Seebachthon. Let's hear more from our correspondent.
8: The objective was to promote the importance and commercial potential of Seebachthon, a fruit widely found in the high-altitude regions of Ladakh. The Mela attracted local farmers, entrepreneurs, tourists and residents. Various products made from Seebachthon, including juice, jams, herbal products, cosmetics and other value-added items were displayed and sold at the event. The program also highlighted the health and economic benefits of Seebachthon and encouraged local communities to explore sustainable cultivation and processing of the fruit. The Mela provided a platform for local producers to showcase their products and helped spread awareness about Ladakh's unique natural resources. For Parikrama, this is Rick Zinangmo from Leh Ladakh.
1: उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 25 से 29 सितंबर तक नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के साथ ही आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को भी विश्व स्तर पर प्रस्तुत करेगा। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
9: ट्रेड शो के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत 25 सितंबर को शंख वादन एवं वैदिक मंगलाचरण से होगी। वाराणसी के विशाल कुमार की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद नोएडा के पंडित चेतन जोशी का वाद्य संगीत, लखनऊ की आलोक निशा श्रीवास्तव का कथक नृत्य, प्रयागराज की पूर्णिमा का ढेड़िया लोक नृत्य और वृंदावन की आरती खेतपाल की भजन प्रस्तुति दर्शकों को आकर्षित करेगी। 26 सितंबर को पखावज युगल, भोजपुरी लोक गायन, कथक, मथुरा का लोक नृत्य और स्टार नाइट का आयोजन होगा। पखावज युगल में दिल्ली के पंडित रविशंकर उपाध्याय एवं पंडित ऋषि शंकर उपाध्याय प्रस्तुति देंगे। भोजपुरी लोक गायन में मिर्जापुर की कुसुम पांडे, जौनपुर के अवनीश तिवारी और कथक में नोएडा की मर्यादा कुलश्रेष्ठ शामिल होंगी। मथुरा की सीमा मावल लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगी और सुल्तानपुर की निष्ठा शर्मा स्टार नाइट में प्रस्तुति देंगी। 27 सितंबर को सैक्सोफोन वाद्य संगीत, भजन, लोक गायन, झांसी का राई लोक नृत्य, भरतनाट्यम और स्टार नाइट का आयोजन किया जाएगा। 28 सितंबर को भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ का पर्कशन एसेंबल, महोबा के जितेंद्र चौरसिया का आल्हा गायन, कथक, पीलीभीत का थारू जनजातीय नृत्य और सुल्तानपुर की रूपाली जोगू की सूफी नाइट आयोजित होगी। 29 सितंबर को वाराणसी के पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा का सितार वादन, लखनऊ के कमाल खान का गजल गायन, गाजियाबाद की मिताली सैनी का कथक, कथक ऑफ इंडिया यूपी की कोरियोग्राफ प्रस्तुति और स्टार नाइट के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन होगा। राज्य सरकार की

0: पहल पर आयोजित ट्रेड शो में प्रदेश के विभिन्न अंचलों की लोक कलाओं और शास्त्रीय परंपराओं को मंच मिलना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: और आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
2: सबसे बड़ी हलचल वाली खबर तो यही है मुकेश, दैट द 20th एशियन गेम्स हैव ऑफिशियली बिगन। वेल, दे गॉट अंडरवे टुडे एट मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम इन जापान विद एम्परर नारुहितो डिक्लेयरिंग द गेम्स ओपन। एंड इंडियाज 501 मेंबर कंटिंजेंट वॉज लेड बाय डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर एंड कबड्डी प्लेयर पवन सहरावत ड्यूरिंग द एथलीट्स परेड। Some events have already begun, including women's cricket, where India have already advanced to the semi-finals after an 8-wicket win over Japan yesterday. India will face Bangladesh in the second semi-final in Nissan, Japan tomorrow.
1: और परिक्रमा कार्यक्रम में अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: Today is the death anniversary of veteran freedom fighter Balwant Rai Gopalji Mehta. He died during the Indo-Pak War on 19 September 1965 when the aircraft he was traveling in along with his wife and a few others was shot down by the Pakistan Air Force. At that time, he was the Chief Minister of Gujarat. Born on 19 February 1900 in Bhavnagar, Balwant Rai Gopalji Mehta joined the freedom movement in 1920, fervently fighting back and resisting the colonial oppression. At that time, protests went widespread and it was much more difficult for the people to persist.
4: Balwant Rai Mehta, who had almost finished his degree in Bachelor of Arts, resolutely refused to accept a degree from the colonial government. After making public his stance on the imperial powers present in pre-independence India, he joined the non-cooperation movement in 1920 and promptly threw himself, heart, body and soul, into the battle for freedom. He founded Bhavnagar Praja Mandal in 1921 for carrying on the freedom movement in Gujarat. Later on, he participated in the civil disobedience movement from 1930 to 1932.
3: Mehta also took part in the Bardoli Satyagraha of 1928 for the farmers of Bardoli against the unjust raising of taxes. He was sentenced for 3 years in prison for participating in the Quit India movement. He spent 7 years in prison during the British Raj. A milestone in his life came along when, as the chairman of the Balwant Rai Mehta Committee in 1957, he would institute the scheme of democratic decentralization, which finally came to be known as Panchayati Raj, a scheme that revolutionized welfare at the grassroots level.
4: The committee submitted a report suggesting the building of the now famous three-tier Panchayati Raj system, giving legislative bodies complete control over planning and administration. It was a brilliant move, one whose benefits are reaped even to this day. Being one of the masterminds behind the Panchayati Raj system earned him the title of Architect of Panchayati Raj.
1: और अब हम याद कर रहे हैं चर्चित लेखिका सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री और समकालीन कवित्री रश्मि प्रभा की माँ सरस्वती प्रसाद को। सरस्वती प्रसाद के प्रकाशित संग्रह नदी पुकारे सागर और एक थी तरु और प्रकाशित रचनाएं रही हैं कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान और नैन्सी। और इसके बाद हम याद कर रहे हैं भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान व्यक्ति पंडित विश्व नारायण भातखंडे को। शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में उनका नाम बड़े आदर के साथ दिया जाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक भातखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया था। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर उस्तादों से बंदिशें एकत्र करने, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया था।

एंड मुकेश, टुडे इज द बर्थडे ऑफ वन सिंगर जिनके पहले जैसा भी उनके जैसा कोई नहीं हो सका और मेरे ख्याल से कोई दूसरा होगा भी नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट लकी अली. यस, उनका नाम सुनते ही एवरीबडी प्रॉब्ली इंडल्जेस इन सम काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया बिकॉज ही हैज गिवन सम वेरी वेरी मेमोरेबल सॉन्ग्स एंड स्पेशली जो 90s के हम लोग मिलेनियल्स हैं, वी वुड रिमेंबर सम ऑफ दीज अमेजिंग सॉन्ग्स दैट केम फ्रॉम लकी अली. लेट्स लिसन टू अ मेडले.

0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
1: That's right, and probably spent your evening listening to some very memorable Lucky Ali songs. And usi ke saath dijiye ijazat Mukesh aur Saira ko.
0: Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ

0: एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटका उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवोल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवोल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ था। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में बदलते वैश्विक माहौल में भारत नेपाल संबंधों पर नए सिरे से विचार विषय पर सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आइची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसोजा कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। महिला सिंगल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसोजा को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said in recent years the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
0: Aaj desh ke 51,000 se adhik yuvaon ko सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम आपसे ने अपने श्रोताओं का मन पसंद कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के, जिसमें हमारे श्रोता जानकारी के साथ साथ उपदेश, रागनी और लोकगीत का आनंद लेते हैं। नीलम बहन, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो प्रदूषण की समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समस्या को कम किया जाए, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीक रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रही है।
1: बिल्कुल शशि भाई, इस समस्या से पूरा विश्व चिंतित है। प्रदूषण के कारण इंसान जिस पर्यावरण में पल रहा है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है।
0: बिल्कुल, कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ती है तो कहीं अत्यधिक बारिश बाढ़, और इतना ही नहीं, सभी जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल, प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है, लेकिन किसी कारणवश यदि वो प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है।
0: मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए हम मनुष्यों के क्रियाकलाप और जीवन शैली काफी हद तक जिम्मेदार है। अब बात आती है कि हम इस बढ़ते प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारी बनती है, ये भी बातें हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप श्रोताओं को सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं राजेंद्र जाटव।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राजेंद्र जाटव से ये उपदेश।
1: और नीलम बहन, इस उपदेश से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रदूषण को नियंत्रण करने में हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो जैसे हमारे घरों की जो खाली छत है, बालकनी है, वहां पर हम पौधे लगा सकते हैं, गोबर खाद या जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, फसलों में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम से कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा पॉलीथीन या प्लास्टिक की जगह कपड़े से बने थैले का उपयोग कर सकते हैं और सोलर पैनल लगवा सकते हैं, सोलर कुकर में खाना बनाएं, बल्ब की जगह पर CFL या फिर LED बल्ब का उपयोग कर सकते हैं।
1: और साथ ही जो जन्मदिन होता है या कोई त्योहार होता है, जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो उपहार में पौधे भेंट कर सकते हैं। और जब हम अपने कमरे से निकलें तो जो भी उपकरण हैं उनको बंद कर दें और बिना उपयोग मोबाइल फोन चार्जर को प्लग में ना लगे रहने दें, इससे भी पर्यावरण पर फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा यात्रा में सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके और आसपास आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल का उपयोग कर सकते हैं,
1: क्योंकि साइकिल हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, तो वहीं साइकिल चलाना सेहत के लिए भी लाभकारी होता है।
0: अगर एक वाहन के तौर पर देखें तो आज भी कई लोग स्कूल कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। इससे डीजल और पेट्रोल की खपत कम होने के साथ प्रदूषण स्तर भी कम होता है।
1: और इसके अलावा प्रदूषण को नियंत्रण करने में जल का संरक्षण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने घर में, आसपास और जहां पर भी जाएं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी पर्यावरण का संरक्षण संभव है। तो नीलम बहन, ये तो बात रही प्रदूषण को नियंत्रण करने में हम सबकी जिम्मेदारी की, और आइए अब अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बबीता चौधरी और किस्सा रहेगा अंजना पवन का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे रागिनी और कलाकार थी बबीता चौधरी।
1: और अब कार्यक्रम के आखिर में अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई से ये लोकगीत।
1: और इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। जी हाँ, नमस्कार। आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में मैं हूं हेमंत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रवीण यादव। हम दोनों लेकर चलेंगे आपको खेलों के उस खूबसूरत सफर पर जहां हर मोमेंट होता है बेहद खास। और आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2026 की, और साथ ही बात होगी हॉकी मेंस एंड विमेंस, साथ में बात करेंगे एशियन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन की, साथ में बात होगी फिडे चेस ओलंपियाड की, डेविस कप की भी बातें करेंगे, बात होगी WTT स्टार कंटेंडर अस्टाना की, साथ में बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया U19 क्रिकेट की, और साथ में बात होगी सुब्रतो कप की और अन्य खेल खबरों पर भी नजर रखेंगे, और आपको सुनवाएंगे एशियन गेम्स में इंडियन फ्लैग सेरेमनी मूवमेंट्स का म्यूजिकल आगाज। और क्यों ना प्रवीण, उसी से किया जाए आगाज।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जी हां, जापान के आईची नगोया में 20वें एशियन गेम्स 2026 का बहुत ही शानदार तरीके से आगाज हो चुका है। इस बार भारत ने अपने खेल इतिहास का एक बहुत

बड़ा दल वहां भेजा है जिसमें 37 अलग अलग खेलों के लिए 500 से भी ज्यादा एथलीट शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा खेल महाकुंभ है जो 19 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार 45 देशों के एथलीट 43 खेलों में अपनी किस्मत और मेहनत आजमा रहे हैं। भारत की नजरें इस बार अपने पिछले प्रदर्शन को और भी बेहतर करने पर टिकी है। आपको याद होगा कि हांगजू में हुए पिछले एशियन गेम्स में भारत ने कमाल कर दिया था और 107 मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था। उस समय हमने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस बार जब उद्घाटन समारोह हुआ तो भारत का झंडा थामने का गर्व दोहरे ओलंपिक मेडल विजेता निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के सुपरस्टार पवन सहरावत को मिला, जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा खास पल था। इस पूरे खेल के माहौल के बीच सबसे ज्यादा निखाएं अगर किसी खेल पर हैं तो वो है हमारी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें। दोनों ही टीमें अपने पुराने सुनहरे इतिहास को दोहराने और आने वाले समय के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के इरादे से मैदान पर उतर चुकी हैं। ये टूर्नामेंट भारतीय हॉकी के लिए सिर्फ एशिया में अपना दबदबा साबित करने का मौका नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अहम सीढ़ी है लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए। नियमों के हिसाब से बात करें तो समीकरण बहुत सीधा है कि जो भी टीम इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतेगी उसे सीधा ओलंपिक का टिकट मिल जाएगा। वहीं जो टीमें दूसरे या तीसरे नंबर पर रहेंगी उन्हें ओलंपिक में जगह बनाने के लिए क्वालिफायर्स के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। कोई भी टीमें उस दबाव में नहीं पड़ना चाहती और कोई भी टीम उस दबाव में नहीं पड़ना चाहती। यही वजह है कि भारत की दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगा रही हैं ताकि सोने का तमगा जीत कर अभी से ओलंपिक की टेंशन खत्म कर दी जाए। सबसे पहले बात करते हैं हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। हमारी टीम इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरी है, यानी पिछले एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल भी हमारे ही पास है। हांगजू में टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लेकिन खेल में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। हाल ही में हुए विश्व कप में भारतीय टीम को कुछ निराशाजनक पलों का सामना करना पड़ा था, जहां टीम के डिफेंस यानी बचाव पक्ष में कुछ खामियां नजर आई थी और रणनीति के मामले में भी टीम थोड़ी पीछे रह गई थी। उन गलतियों को सुधारने के लिए टीम ने बहुत मेहनत की और मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने इस बात पर खास ध्यान दिया है कि खिलाड़ी मैदान पर अपना संतुलन न खोए। टीम की कमान एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक फील्डर और शानदार कप्तान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में है। इस बार भारत को पूल ए में रखा गया है। ये एक ऐसा ग्रुप है जहां भारत के सामने मेजबान जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया की टीमें हैं। अगर हम आज की रैंकिंग और हाल की फॉर्म की बात करें तो भारत इस पूल में सबसे मजबूत टीम नजर आती है, लेकिन मैदान पर कोई भी टीम उलटफेर कर सकती है, इसलिए किसी भी टीम को और किसी भी मैच को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर हम भारतीय पुरुष टीम के मैच के शेड्यूल पर नजर डालें तो पता चलता है कि हर मैच की अपनी अहमियत है। सभी मैच राउंड रॉबिन तरीके से खेले जाने हैं। भारतीय टीम अपने सफर की शुरुआत 20 सितंबर रविवार को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगी। इसके बाद टीम को सिर्फ एक दिन का आराम मिलेगा और 22 सितंबर को उनका सामना श्रीलंका से होगा। असली चुनौती की शुरुआत 24 सितंबर को होगी, जब भारत के सामने दक्षिण कोरिया की टीम होगी। कोरिया की टीम अपनी तेज रफ्तार वाले खेल के लिए जानी जाती है, इसलिए ये मुकाबला देखने लायक होगा। इसके बाद 26 सितंबर को भारत को मेजबान जापान से भिड़ना है। जापान को उनके घरेलू दर्शकों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे यह मैच काफी रोमांचक हो जाएगा। पूल स्टेज में आखिरी मैच 28 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा। इसके बाद दोनों पुलों से टॉप की दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 1 अक्टूबर को खेला जाएगा, और फिर 3 अक्टूबर को वो खास दिन होगा जब गोल्ड और ब्रॉन्ज के लिए टीमें आमने सामने होंगी। इस बार पुरुष टीम को जो सिलेक्शन हुआ है उसमें अनुभव और युवाओं के जोश का बहुत ही अच्छा तालमेल रखा गया है। पीआर सृजेश के रिटायरमेंट के बाद अब गोलकीपिंग की पूरी जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा के कंधों पर आ गई है। दोनों ही बहुत शानदार गोलकीपर हैं और ये उनके लिए खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अगर डिफेंस की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह के साथ अनुभवी अमित रोहिदास हैं, साथ ही जुगराज सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, संजय राणा, सुमित और यशदीप सिवाज जैसे मजबूत खिलाड़ी हैं, जो विपक्षी टीम के स्ट्राइकर्स को आसानी से गोल की तरफ नहीं जाने देंगे। मिडफील्ड, जिसे टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वहां मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक कुमार प्रसाद, राजेंद्र सिंह, राजकुमार पाल और नीलकांत शर्मा जैसे फुर्तीले खिलाड़ी मौजूद हैं। हार्दिक सिंह की तेज पासिंग और मनप्रीत का अनुभव टीम के बहुत काम आएगा। वहीं आगे बढ़कर गोल करने का जिम्मा अभिषेक नैन, मनदीप सिंह, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह पर होगा।
अगर हम भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो उनका जोश और आत्मविश्वास इस वक्त सातवें आसमान पर है। महिला टीम ने हाल ही में जो FIH हॉकी महिला विश्व कप 2026 खेला था उसमें उन्होंने पांचवां स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया था। पिछले 50 सालों में विश्व कप में ये उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस शानदार सफलता के बाद हॉकी इंडिया ने टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। खुशी की बात यह भी है कि सिर्फ सीनियर ही नहीं बल्कि जूनियर

0: टीम ने भी हाल ही में चीन को हराकर लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप जीता है। इससे ये साफ हो गया है कि भारतीय महिला हॉकी का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। टीम के मुख्य कोच सोजर्ड मारिन, जो इसी साल जनवरी में वापस आए, उनके आने से टीम के खेल में बहुत ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। एशियन गेम्स 2026 में महिला टीम को पूल बी में रखा गया है। उनके साथ इस ग्रुप में जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान की टीमें हैं। टीम की कप्तानी मिडफील्डर सलीमा टेटे कर रही हैं। महिला टीम भी अपना पहला मैच पुरुष टीम की तरह 20 सितंबर को खेलेगी, जहां उनका सामना उज्बेकिस्तान की टीम से होगा। महिला वर्ग के ये पूल मैच 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 27 सितंबर तक चलेंगे। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले 30 सितंबर को खेले जाएंगे। महिला हॉकी का फाइनल यानी गोल्ड मेडल का मैच 2 अक्टूबर को होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय महिला टीम ने पिछले 44 सालों से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। पिछली बार 1982 में दिल्ली एशियन गेम्स में ये कमाल हुआ था। इस बार हमारी खिलाड़ी इसी 44 साल के सूखे को खत्म करने के मजबूत इरादे से मैदान में उतरी हैं। महिला टीम के खिलाड़ियों पर नजर डालें तो यहाँ भी अनुभव और युवा टैलेंट का शानदार संगम है। गोल पोस्ट को सुरक्षित रखने के लिए टीम की दीवार कही जाने वाली अनुभवी सविता पूनिया है और उनके साथ देने के लिए बिचू देवी मौजूद है। डिफेंस में सुशीला चानू के अनुभव के साथ साथ इशिका चौधरी, ज्योति और शिल्पी डावास जैसे नाम शामिल है। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा टेटे अपनी तेजी से मैदान पर छा जाने के लिए हैं। उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, सुनीलिता टोपो, नेहा और दीपिका सोरेंग मिडफील्ड को मजबूती देंगी। विरोधी टीम के गोल पोस्ट पर हमला करने के लिए लाल रेम सियामी, नवनीत कौर, ऋतुजा दीपिका, ईशिका बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग जैसी बहुत ही खतरनाक फॉरवर्ड खिलाड़ी मौजूद हैं। इस टीम में 11 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हाल ही में अपना बड़ा डेब्यू किया है और अपने शानदार खेल से सबको हैरान कर दिया है। इस बार एशियन गेम्स के ये सभी हॉकी मैच जापान के काका मेघारा में स्थित गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के नियम काफी बदल गए हैं। अब मुकाबले 35-35 मिनट के हाफ की बजाय 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेले जाते हैं। ये कुल 60 मिनट का खेल होता है। इस नियम से खेल की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मैदान पर दर्शकों को बहुत रोमांच देखने को मिलता है। इस तेज रफ्तार वाले खेल में खिलाड़ियों की फिटनेस और उनके समय समय पर मैदान से बाहर बुलाकर आराम देने की रणनीति बहुत अहम होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एशियन गेम्स भारतीय हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। भारतीय पुरुष टीम जहां अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लगातार दूसरा गोल्ड जीतना चाहती है, वहीं महिला टीम अपने विश्व कप के शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 44 साल का इंतजार खत्म करना चाहती है। दोनों टीमों का असली मकसद सिर्फ एक मेडल जीतना नहीं है, बल्कि सीधा ओलंपिक का टिकट पक्का करके आने वाले समय की टेंशन को खत्म करना है। पूरे देश की धड़कने इस खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है और हर किसी को यही उम्मीद है कि जापान के इस मैदान पर भारतीय हॉकी की टीमें तिरंगा सबसे ऊंचा लहराएंगी। एशियन गेम्स में दोनों भारतीय टीमों के आगाज से पहले हमने बात की भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा।
2: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
1: जी,
2: यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहेंगे भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टेमिना, स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा, चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन। तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली भी, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है। वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम्स, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, इंग्लैंड एंड ऑल दी, यू हैव टू फाइट विद हायर रैंक टीम। तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा, वी शुड विन द एशियन गेम्स।
3: सफर साहब, टीम से संबंधित एक सवाल, पी शिजेश की कमी काफी ज्यादा महसूस की जा रही है?
2: बहुत ज्यादा, इन द सेंस के देखिए, वो जो टीम थी जो हमने 2020 ओलंपिक खेला, 24 खेला, उसमें ब्रॉन्ज मेडल दोनों में हमने जीता है, इज अ बिग थिंग। श्रीजेश का भी हाथ है, और जो लड़के थे वो विनिंग कॉम्बिनेशन डेवलप होता है बड़े दिनों के बाद, वो सेट होती है टीम। एज फार एज एशियन गेम्स इज कंसर्न, मेरे ख्याल में उसकी इतनी फीलिंग नहीं होनी चाहिए।
1: जापान, कोरिया, मलेशिया, इनमें से कौन खतरनाक आपको लग रही, किसके खिलाफ भारत को ज्यादा संभल कर खेलना होगा?
2: मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है, मलेशिया है, और हमारे पूल में ये जो टीमें हैं जापान, साउथ कोरिया, तो ये अच्छा हमारे पूल में क्रॉस होगा हमारा, या तो पाकिस्तान से होगा या दूसरी टीम जो सेकंड आएगी मलेशिया से होगा, उनको हमें जीतना पे फाइनल खेलना है।
1: महिलाओं के बारे में पूछ लेता हूँ आखिर में, चलते चलते, महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में। सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
2: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम, और इसीलिए हम लोग तो पांचवें स्थान पे आए। इज नॉट सो इजी टू गेट फिफ्थ प्लेस इन द वर्ल्ड कप थी, मगर ये जरूर कहूंगा कि महिलाओं का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग को मुबारकबाद देना चाहिए कि और इसी तरीके से बढ़ती रहे, क्योंकि सामने कॉमनवेल्थ गेम्स भी 2030 में बींग होस्टेड बाई इंडिया, तो वहाँ की तैयारी तो अभी से शुरू नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने आकाशवाणी दिल्ली को समझ दिया, बहुत शुक्रिया।
0: अब बात करते हैं एशियन गेम्स में अन्य खेलों। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक बेहद शानदार रहा है। 18 सितंबर 2026 को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। इस मैच में जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रनों पर सिमट गई, जिसमें भारत की श्री चंडी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। जवाब में भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 15 गेंदों में नाबाद 40 रनों के तेज पारी की बदौलत केवल 5 ओवरों में आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर लिया। क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के बाद अब भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ कल 20 सितंबर को होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा। इस स्पर्धा के स्वर्ण और कांस्य पदक के मुकाबले 20 सितंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे। दूसरी ओर एशियन गेम्स में पहली बार शामिल किए गए टेक बॉल्स खेल से भारतीय खेमे के लिए मिश्रित परिणाम आए हैं। नगोया के हिकाशी स्पोर्ट्स सेंटर में चल रही इस प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग में भारत की क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल तक का सफर तय। आज 19 सितंबर 2026 की सुबह 10 बजे टेबल नंबर 1 पर खेले गए आधिकारिक सेमीफाइनल मैच में उन्हें इंडोनेशिया की सुमैया से 2-1 से करीबी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ इंडोनेशिया की सुमैया ने सीधे फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि सेमीफाइनल में पराजित होने के बाद भी भारतीय खिलाड़ी की पदक की उम्मीदें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। भारत की क्विंसी डिसूजा कल 20 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाले ब्रॉन्ज मेडल मैच में देश के लिए ऐतिहासिक पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: आज एशियन गेम्स 2026 की फ्लैग सेरेमनी का दिन था। मनु भाकर और पवन सहरावत ने मिलकर भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में तिरंगे की अगुवाई की। आइए सुनते वो मूवमेंट।
5: इंडिया ऑफ कोर्स दे विल बी देयर इन क्रिकेट एंड फील्ड हॉकी एंड मार्शल आर्ट्स इवेंट्स। दे होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स इन 1951 एंड डिड सो अगेन इन 1982 व्हिच इज मेमोरेबल फॉर आवर डियर फ्रेंड द लेट नीति दिवेगा।
6: ओह या Unsa na bansaga ni?
5: The fastest woman in Asia. Well, this is a nice treatment. All black and sambo.
6: Oh,
5: look at that.
6: It's a different take on their national costume, no? Very formal. Wow.
5: Elegante, huh?
6: Yeah. Kakaiba.

जी हाँ प्रवीण, अब बात करते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन 2026 की। इटली के पोरपेटो में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन 2026 में भारत के लिए 15 वर्षीय निशानेबाज युगन शक्तिवेल मुथुकुमार ने ट्रैप मेंस जूनियर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तमिलनाडु के इस युवा खिलाड़ी ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत को पहला पदक दिलाया। क्वालिफिकेशन राउंड में युगन ने 5 राउंड में 22, 22, 24, 23 और 23 के साथ कुल 114 का स्कोर बनाया। इसके बाद उन्होंने छठे स्थान के लिए हुए बेहद कड़े और तनावपूर्ण शूट ऑफ में स्पेन के एडुयार्ड सालिस्ट को 2-1 से हराकर 8 खिलाड़ियों के फाइनल राउंड में अपनी जगह पक्की की। फाइनल मुकाबले में युगन ने अद्भुत धैर्य और अचूक निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 30 में से 27 टारगेट हिट किए और उन्होंने घरेलू दर्शकों के पसंदीदा इटली के निशानेबाज फ्रांसेस्को टेलफेग्नियो को मात्र 1 अंक के कड़े अंतर से 27 के मुकाबले 26 हिट के साथ शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इटली के ही सिमोन रोसेन 21 हिट के साथ तीसरे स्थान पर रहे और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो ट्रैप मेंस स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में अर्जुन और विनय प्रताप सिंह चंद्रावत 112 अंकों के समान स्कोर के साथ क्रमशः 12वें और 13वें स्थान पर रहे, जबकि उद्धव सिंह राठौर 111 अंकों के साथ 16वें स्थान पर रहे और फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। महिला वर्ग की ट्रैप स्पर्धा में जूनियर एशियन चैंपियन भारत की सबीरा हारिस ने कड़ी चुनौती पेश की। उन्होंने शूट ऑफ के जरिए 108 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन फाइनल में वो 15 में से 9 टारगेट ही हिट कर सकी और छठे स्थान पर रहकर अपना सफर समाप्त किया। भारत की एक अन्य महिला निशानेबाज भव्या त्रिपाठी और कृषिका जोशी क्वालिफिकेशन में 105 अंकों के स्कोर के साथ क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर रही और फाइनल की दौड़ से बाहर हो गईं। इससे पहले प्रतियोगिता के शुरुआती दिनों में भारतीय स्कीट निशानेबाजों को भी निराशा हाथ लगी थी और कोई भी खिलाड़ी क्वालिफिकेशन की बाधा पार नहीं कर सका था। इस शानदार स्वर्ण पदक की बदौलत भारत पदक तालिका में शीर्ष देशों की कतार में मजबूती से खड़ा है और ये शॉटगन वर्ल्ड कप मुख्य रूप से 21 वर्ष से कम उम्र के निशानेबाजों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्व भर के करीब 30 देशों के 218 शीर्ष एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के समापन के बाद अब भारतीय टीम की नजरें आगामी जूनियर मिक्स्ड टीम ट्रैप स्पर्धा पर टिकी है, जिसमें युगन और सबीरा जैसी प्रतिभाओं से देश को एक बार फिर पदक की बड़ी उम्मीदें हैं।

0: ये तो बात हुई आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन की, और अब बात करते हैं 46th फिडे चेस ओलंपियाड की, जहां पर जानकारी दे रहे हैं प्रवीण।
1: अब बात करते हैं समरकंद में चल रहे चेस ओलंपियाड 2026 की, जहां पर शुक्रवार 18 सितंबर 2026 को खेले गए तीसरे राउंड में भारतीय टीमों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दोहरी जीत दर्ज की। ओपन और महिला दोनों वर्ग में मजबूत प्रतिद्वंदियों को हराने के बाद भारत ने टूर्नामेंट के अंक तालिका में अपनी शीर्ष स्थिति को और मजबूत कर लिया है। शुरुआत में यात्रा और होटलों की दिक्कतों के बावजूद गत विजेता भारतीय टीम अब पूरी लय में दिखाई दे रही। ओपन वर्ग में भारतीय पुरुष टीम का सामना मजबूत इटली से था, जहां भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम किया। शीर्ष बोर्डो पर कड़ा संघर्ष देखने को मिला। बोर्ड एक पर आर प्रज्ञानंद ने लोरेंजो लोडिसी के साथ एक बेहद जटिल बाजी खेली, जो अंततः ड्रॉ पर समाप्त हुई। दूसरे बोर्ड पर अर्जुन एरेगेशी शुरुआती दौर में कुछ कमजोर स्थिति में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने बेहतरीन मानसिक संतुलन दिखाते हुए लुका मोरेनी जूनियर के खिलाफ मैच को सुरक्षित ड्रॉ कराया। भारत के लिए निर्णायक अंक निचले बोर्डों से आए। बोर्ड 3 पर निहाल सरेन ने फ्रांसिस्को सोनिस को एक तरफा अंदाज में परास्त किया। वहीं विश्व चैंपियन के चैलेंजर डी कुकेश ने ब्लैक मोहरों से खेलते हुए सबीनो ब्रुनेलो को आसानी से मात दी। इस जीत के साथ मुकेश लाइव रेटिंग सूची में वापस 2702 पर पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक रणनीति जारी रखी और ग्रीस को 3.5 के मुकाबले 0.5 के बड़े अंतर से हरा दिया। बोर्ड एक पर खेल रही अनुभवी कोरेनो हम्पी ने ग्लोबल चेस लीग की अपनी पुरानी हार का बदला लेते हुए स्टेवोला सोलोकिडो को एक लंबी और रणनीतिक बाजी में शिकस्त दी। दूसरे बोर्ड पर दिव्या देशमुख का मैच बराबरी पर छूटा। इसके बाद बोर्ड 3 पर वंतिका अग्रवाल ने एकातेरेनी पाविल लिदू को हराया, जबकि बोर्ड 4 पर चल रही युवा सनसनी बी सविता श्री ने एंटोनिया को मात देकर

0: टूर्नामेंट में अपनी लगातार तीसरी व्यक्तिगत जीत दर्ज की। तीसरे राउंड की समाप्ति के बाद वर्तमान स्टैंडिंग्स की बात करें, भारत के ओपन और महिला दोनों दल अपने शुरुआती तीनों मैच जीतकर संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर काबिज। ओपन सेक्शन में कुल 208 टीमों में से भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पोलैंड और मेजबान उज्बेकिस्तान जैसी कुछ टीमें ही लगातार तीन मैच जीत के साथ परफेक्ट स्कोर पर चल रही हैं। इस राउंड में बड़े उलटफेर भी देखने को मिले, जहां सिंगापुर ने शक्तिशाली नॉर्वे को 2.5 के मुकाबले 1.5 से चौंकाया और महिला वर्ग में छठी वरीयता प्राप्त यूक्रेन की टीम अर्जेंटीना से 3-1 से हार कर पिछड़ गई।
1: चेस की खबरों के बाद अब चलते हैं डेविस कप की तरफ। जानकारी दे रहे हैं प्रवीण।
0: भारत डेविस कप 2026 से बाहर हो गया है। उसे सियोल के ओलंपिक टेनिस कोर्ट में साउथ कोरिया ने 1-3 से हराया। शनिवार को भारत को फाइनल 8 में जगह बनाने के लिए एक जीत की सख्त जरूरत थी, लेकिन सुमित नागल रिवर्स सिंगल्स में सुनुवू कोएन से 1-6, 2-6 से हार गए। टीम इंडिया 1996 के बाद पहली बार डेविस कप के टॉप 8 में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पहले दिन के सिंगल्स मैचों के बाद भारत 0-2 से पीछे था। टीम को दूसरे दिन दोनों मैच जीतने बहुत जरूरी थे। मेंस डबल्स मुकाबले में डी सुरेश और श्रीराम बालाजी की जोड़ी ने जी सुंग नाम और उई सिंह पार्क को 6-3, 3-6, 6-3 से हराया। इस जीत से भारत के टॉप 8 में पहुंचने की उम्मीदें जगने लगी थी। इस मैच के लिए भारत ने टीम में बदलाव किया। निकी पुनाचा की जगह डी सुरेश को उतारा गया। रिवर्स सिंगल्स में नागल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में 157वें नंबर के खिलाड़ी क्वेन ने 6-1, 6-1 से हराया। क्वेन ने पहला सेट 6-1 से जीता। दूसरे सेट में नागल ने वापसी की कोशिश की, लेकिन क्वेन ने दूसरा सेट 6-2 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। डबल्स के इवेंट में भारतीय जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने 3 सेटों में से पहले और तीसरे सेट को अपने नाम करने के साथ मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से श्रीराम बालाजी और डी के सुरेश की जोड़ी का सामना साउथ की जिनसुंग नाम और उई सिंह पार्क की जोड़ी से हुआ, जिसमें भारतीय जोड़ी ने पहले सेट को 6-3 के अंतर से अपने नाम किया था। वहीं दूसरे सेट में उनको 6-3 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि तीसरे सेट को भारतीय जोड़ी ने 6-3 के अंतर से अपने नाम करने के साथ मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। डेविस कप के दूसरे राउंड में भारतीय टीम ने 18 सितंबर को सिंगल्स इवेंट के 2 मुकाबले खेले थे, जिसमें डी के सुरेश और सुमित नागल दोनों को अपने अपने मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसमें डी के सुरेश ने कोरियाई खिलाड़ी सुनुवू कोन के खिलाफ मैच खेला था, जिसमें उन्होंने पहला सेट 6-3 के अंतर से जीता था, जबकि अगले 2 सेट में उनको 6-3 और 6-4 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
1: अब बात करते हैं WTT स्टार कंटेंडर अस्ताना 2026 में। भारतीय टेबल टेनिस का सफर समाप्त हो चुका है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अंतिम उम्मीद महिला एकल वर्ग में मनिका बत्रा के रूप में बची हुई थी। और उसके बाद अब प्रतियोगिता के शुरुआती चरणों में भारत की युवा खिलाड़ी सियाली वानी ने महिला एकल के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने के लिए क्वालिफिकेशन मैच खेले। उन्होंने शुरुआती दौर में संघर्ष किया, लेकिन वह अगले दौर के कठिन मुकाबले से आगे बढ़ने में असमर्थ रहीं। इसके अलावा पुरुष एकल और पुरुष व महिला युगल श्रेणियों में भी भारतीय खिलाड़ियों की शुरुआती दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। मजबूत एशियाई और यूरोपीय जोड़ियों के सामने भारतीय चुनौती मुख्य ड्रॉ के शुरुआती स्तर पर ही समाप्त हो गई थी। महिला एकल वर्ग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व रैंकिंग 59 ने अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में उनका सामना रूस की उच्च वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एलिजाबेथ अब्रामियन से हुआ। इस मैच में मनिका बत्रा ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और अब्रामियन को सीधे गेमों में 3-0 से हरा दिया। इस मैच का स्कोर 11-5, 11-7 और 12-10 रहा। तीसरे गेम में रूसी खिलाड़ी ने वापसी का प्रयास किया, लेकिन मनिका ने गेम जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह सुरक्षित की। राउंड ऑफ 16 में मनिका बत्रा का मुकाबला जापान की मजबूत खिलाड़ी सत्सुकी ओडो से हुआ, जिनकी विश्व रैंकिंग 12 है। मैच की शुरुआती 2 सेटों में जापानी खिलाड़ी ने पूरी तरह दबदबा बनाया और मनिका को 11-4 और 11-7 से हरा दिया। 2 सेट से पिछड़ने के बाद मनिका ने तीसरे सेट में वापसी की और इसे 11-9 से जीतकर मैच में बनी रही। चौथा सेट अत्यधिक प्रतिस्पर्धी रहा। मनिका बत्रा के पास सेट में जीतकर मुकाबले को 5वें और निर्णायक सेट में ले जाने का मौका था, लेकिन हालांकि वो इस मौके को अंक में बदलने में असफल रही। सत्सुकी ओडो ने खेल पर वापस नियंत्रण पाते हुए इस रोमांचक सेट को 14-12 से जीत लिया। इस तरह ओडो ने यह मैच 3-1 से अपने नाम किया और इस हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारतीय दल का अभियान जो है आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया।
0: बात करते हैं।

0: क्रिकेट की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 की टीम भारत के दौरे पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 7 रन से जीत लिया है। इस मैच में भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में 11 रनों का बचाव करते हुए सिर्फ 3 रन बनने दिए और रोमांचक जीत दर्ज की। 3 मैचों की सीरीज में पहला मुकाबला जीतकर भारत ने 1-0 की बढ़त ले लिया है। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे भी खेल रहे थे। हालांकि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन ऑलराउंडर यशवर्धन चौहान का रहा। उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ 2 विकेट भी अपने नाम किए। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने इस मैच में भारत के लिए पारी की शुरुआत की। उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया और 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। बारिश के कारण ये मैच 50 ओवर की बजाय 20 ओवर का कर दिया गया था। ऐसे में दोनों टीमों को अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। राहुल द्रविड़ के बेटे अन्य भारत के लिए 6 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 18 गेंदों में 38 रन की तेज और उपयोगी पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 211 का रहा। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इसके जवाब में कंगारू टीम 7 विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी और 7 रन से मैच हार गई। भारत के लिए यशवर्धन चौहान ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। उन्होंने 34 गेंदों की पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। अन्वे के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए उन्होंने 69 रनों की साझेदारी की। भारत को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में इस साझेदारी का सबसे अहम योगदान रहा, क्योंकि एक समय पर भारत ने 12 ओवर में 88 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑफ स्पिनर एली ब्रैंड सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की। टीम के शुरुआती 4 बल्लेबाजों में से 3 ने 40 या उससे ज्यादा रन बनाए। कैप्टन जैक जोसनेक ने 27 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 55 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 11 गेंदों में 24 रन बनाने थे। ऐसे में उन्होंने लगातार 3 चौके लगाए और 25 गेंदों में अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हालांकि अगली ही गेंद पर वे आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 11 रन बनाने थे और तेज गेंदबाज मोहित उलवा ने सिर्फ 3 रन देकर भारत की जीत पक्की कर दी। कतर क्लासिक।
1: अब बात करते हैं क्रिकेट की खबरों के बाद, अब चलते हैं फुटबॉल की तरफ, जहां 65वें एडिशन सुप्रतो कप में अंडर 17 जूनियर बॉयज के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज खेले जा रहे मुकाबलों में जो अब तक रिजल्ट हमारे पास है, उसमें सीबीएसई वर्सेस उत्तर प्रदेश का मुकाबला खेला गया, जहां सीबीएसई ने उत्तर प्रदेश को 5-1 से हराया। वहीं मेघालय वर्सेज अंडमान निकोबार के मैच में मेघालय ने अंडमान निकोबार को 5-0 से हराया। वहीं जम्मू एंड कश्मीर वर्सेज छत्तीसगढ़ के मैच में छत्तीसगढ़ ने जम्मू कश्मीर को 0-4 से पराजित किया। वहीं बात करें सीआईएससीई वर्सेज गुजरात के मुकाबले की, जहां सीआईएससी वर्सेज गुजरात के मुकाबले में सीआईएससी ने गुजरात को 4-0 से हराया। श्रीलंका वर्सेज इसको के मुकाबले में ISSO ने श्रीलंका को 5-0 से हराया। अब घड़ी की सुइयां बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है प्रवीण के अब ज्यादा कुछ खबरें ली जाएं। आप कार्यक्रम प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी हेमंत और मेरे साथी प्रवीण कुमार यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
4: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
3: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने

0: कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होडगी जंक्शन, होडगी ए कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेश स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवोल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवोल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। ABVP के यश डबास अध्यक्ष चुने गए, जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में ABVP की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: Aaj desh ke 51,000 se adhik yuvaon ko sarkari seva ke liye niyukti patra mil rahe hain. Main aap sabhi yuva saathiyon ko aur aapke parivar janon ko bahut bahut badhai deta hu. Aaj aap sabhi ek aise samay mein Bharat sarkar se jude hain जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for the country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said India is the world's third largest startup ecosystem today.
1: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai. और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है. आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है. यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है.
2: India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said the relief material has been handed over to the Nepali side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India continues to support Nepal's recovery. Nepal faced devastating floods last month, disrupting life and property. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences over the loss of lives due to a mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. In a social media post, the Prime Minister extended condolences to those who have lost their loved ones. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured would be given an amount of 50,000 rupees. 8 people, including 3 children, died after a car carrying devotees was swept away in a rain-swollen stream near Nalkheda area of Agar Malwa district. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP has secured 3 major posts in the Delhi University Students' Union election. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chowdhury secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. Independent candidate Deepanshu Shokin emerged victorious for the position of vice president. The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. The 2-hour ceremony was attended by Japan's royal family, games officials and Olympic Council of Asia President Sheikh Juan bin Hamad Al Thani. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat during the athletes' parade. Sehrawat replaced shot putter Tajinder Pal Singh Thor as flag bearer after the latter did not receive his ceremonial kit on time. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन और कला प्रदर्शनी, 17 सितंबर गुरुवार को यशोभूमि सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन में शुभकामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा,
1: सेमिकॉन इंडिया इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की, इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइंस से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की। ऐसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं।

अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई है और अभी अभी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं, वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है। लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं, आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ, इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। एआई के लिए जो चिप्स बन रही हैं, उनका इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी, बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां हैं, वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है, इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है, तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने।

0: और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 16 सितंबर बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर सभागार में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पीएफ प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग सितंबर 2014 में चेंज की गई। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शंस। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15-25 वाले बैंड में थे, दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीज एंड एवरी ईयर। पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें एक हिस्सा एम्प्लॉय का रहता है, एक हिस्सा एम्प्लॉयर का रहता है और एक हिस्सा गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन जाता है दैट गोज इनटू द पेंशन सिस्टम फॉर द एम्प्लॉय। ये बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी और इस डिमांड को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में।
1: संवाददाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,
2: आज एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की एवरेज इनकम करीब करीब 23,000 रुपए पर मंथ है, जो कि पहले काफी कम थी, पहले से करीब 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। अनस्किल्ड की जो मिनिमम वेज है उसको भी कई राज्यों में 15,000 से ऊपर कर चुके हैं। 2014 वाले कैप का औचित्य नहीं रहा था, तो एक बार सबके साथ कंसल्टेशन करके, इंडस्ट्री के साथ, लेबर यूनियंस के साथ, सबके साथ कंसल्टेशन करने के बाद में ये 25,000 रुपीज की पर मंथ की सैलरी कैप डिसाइड किया गया। सैलरी कैप का मीनिंग ये हुआ अप टू 25,000 रुपीज पर मंथ कंपलसरी पीएफ में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। अबव 25,000 रुपीज पर मंथ वैसे भी वॉलंटरीली कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था पीएफ में, यानी पीएफ अकाउंट खुलवा सकता था। 25,000 से ज्यादा अगर है तो वैसे भी खुलवा सकता था वॉलंटरी। अब ये हुआ कि 25,000 से नीचे तक कंपलसरी पीएफ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसका मेजर बेनिफिट आता है कि आपके लिए एक सोशल सिक्योरिटी का कवरेज बढ़ता है। कवरेज जैसे एक्सपैंड होगा उसमें करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: 4 से 10 सितंबर तक रफी मार्ग स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी कला दीर्घा में मूर्तिकला, चित्रकला और फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में एक कलाकार वासु कुमार ने बताया,
3: मैं अपने सारी पेंटिंग में एक्रेलिक कलर में मैं बना रहा हूँ। रंगों का अपना एक प्रभाव होता है, जल का भी एक अपना, समुंदर की अपनी लहरें हैं और खूबसूरत एक सफर हमेशा रहा है।
1: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।

0: अद्य विंशतितमस्य एशियाई क्रीडा महोत्सवस्य औपचारिक समारंभो जातः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे दृश्य श्रव्य माध्यमेन समायोजिते विंशतितमे रोजगार मेला समारोहे विभिन्नेषु सर्वकारीय संस्थानेषु 150,000+ नवनियुक्त युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितवान्। अत्रावसरे संबोधयन् श्रीमोदी अवोचत् यत् विगतेषु वर्षेषु केन्द्र सर्वकारेण आगामि भविष्यस्य सज्जतायै युवकानां कौशल संवर्धने तेभ्यः नूतनावसराणां प्रदाने च निरन्तरं ध्यानं केन्द्रितम्।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री मोदी न्यरूपयत् यत् सर्वकारः अप्रशासकीय क्षेत्रेपि उद्योगावसराणां द्रुतगत्या विस्ताराय कटिबद्धतया कार्यं करोति। अनेनैव उद्देश्येन प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययसाध्या प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रारब्धा। अस्याः योजनायाः माध्यमेन प्रायः 2 कोटि परिमिताः युवानः प्रथमतया कार्यबले प्रवेष्टुं समर्थाः भविष्यन्तीति आशास्यते। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रतिपादितं यत् भारतेन विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु प्रायः 40 देशैः सह मुक्तव्यापारसन्धिः हस्ताक्षरितः येन देशस्य युवकेभ्यः अवसराणां नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि सन्ति। सः अवोचत् यत् एतादृशाः व्यापारसन्धयः देशस्य उद्यमिभ्यः नूतनसहभागितानां विपणीनां च मार्गं प्रशस्तं कुर्वन्ति। युवकानां कृते च आजीविकायाः नूतन संभावनाः सृजन्ति। श्रीमोदिना उल्लिखितं यत् भारतमद्य विश्वस्य तृतीयं विशालतमं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रं संजातम्।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् भारते प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जनस्य प्रमाणं जागतिक मध्यमानस्य अर्धादपि न्यूनं वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य जलवायु गतिशीलतायाश्च भविष्यम् इत्याख्यस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीमोदी न्यरूपयत् यत् विकासशीलदेशाः प्रायेण अकारणमेव कार्बन उत्सर्जनार्थम् अनुचितरूपेण दोषिणः घोषिताः। प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया प्रतिपादितं यत् G20 समूहे भारतम् एकाकी तादृशं राष्ट्रमस्ति येन पेरिस नगरे सञ्जाते COP21 शिखरोत्सवे कृताः सङ्कल्पाः निर्धारितसमयात् पूर्वमेव साफल्येन पूरिताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन आगामि मासतः देशस्य बहुसंख्येषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 इत्याख्यायाः अन्तर्गतं प्रायः 34,000 परिमितानां ग्रामीण युवकानां कौशल प्रशिक्षणं समारप्स्यते। प्रशिक्षणवर्गाणां प्रारम्भार्थं सज्जतानां समीक्षा प्रथमचरणे बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु प्रभृतिभिः 14 राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च सह विहिता। मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् आगामि वर्षस्य दिसंबर मासस्य 31 दिनांकं यावत् 750,000+ ग्रामीण युवानः अस्यां योजनायां प्रशिक्ष्यन्ते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newzoneair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा लोक संगीत पर आधारित फोन इन प्रोग्राम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले बहन भाइयों, आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में सबसे ज्यादा और प्रमुख महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि हमारी जिंदगी में सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि अगर शरीर साथ ना दे तो दुनिया का सारा पैसा, कामयाबी और खुशियां बेअसर हो जाती हैं। इसके लिए हमें नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल शशि भाई, नियमित स्वास्थ्य की जांच, बीमारियों का समय रहते पता लगाने और उनका इलाज आसान करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, और हमारे बहन भाई भी सोच रहे होंगे कि आखिर नियमित स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता क्यों है, तो आपको बता दें।

0: नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारियों का शुरुआती में पता लग जाता है।
1: बिल्कुल, और जिसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां शुरुआती अवस्था में जिनका लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन नियमित जांच से इनका समय रहते पता लगाया जा सकता है।
0: समय पर जांच होने से डॉक्टर आपको जीवन शैली और खान पान में जरूरी बदलाव करने की सलाह देते हैं, जिससे रोग गंभीर होने से पहले ही रुक जाते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, और गंभीर बीमारी बढ़ने पर इलाज का खर्च बहुत बढ़ जाता है। शुरुआती चरण में बीमारी का पता चलने से पैसों और शारीरिक कष्ट दोनों की बचत होती है।
0: नियमित स्वास्थ्य जांच से शरीर में पोषण की कमी और अन्य कमियों का पता चल जाता है, जिससे आप ऊर्जावान और स्वस्थ बने रहते हैं। और अब बात करते हैं कुछ मुख्य स्वास्थ्य जांचों की, जिनको एक साल में करवाना जरूरी है, जैसे संपूर्ण रक्त गणना, जिसको शॉर्ट में CBC कहते हैं, जो कि एनीमिया और संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाती है,
1: बिल्कुल, और ब्लड शुगर जांच जिसमें डायबिटीज का पता चल जाता है।
0: और आगे जांच आती है लिपिड प्रोफाइल, जिससे कोलेस्ट्रॉल और हृदय के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है।
1: बिल्कुल, और थायराइड प्रोफाइल की जांच से थायराइड संतुलन का पता चल जाता है।
0: बात करें ब्लड प्रेशर की, यानी कि रक्तचाप की, और अन्य जांच की, तो जिसमें किडनी है, लिवर है, इनकी कार्यप्रणाली ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब जांचों से पता चल जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहना चाहिए, तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे और सुखमय तरीके से जी पाएंगे। तो नीलमहन, ये तो बात रही नियमित स्वास्थ्य जांच की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: हवलदार जयप्रकाश, ग्राम पाचौता बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: प्रेमराज को सुनवा दीजिए साहब।
0: जरूर सुनवाएंगे
2: नाम नोट कर लो साहब।
0: जी,
2: करण खुशी नंदिनी राधिका प्रतिज्ञा। राम राम साहब।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: सत्यदेव सागर, ग्राम सरवन्ना, थाना चतारी, जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ये प्रेमराज जी की आवाज में सुनवाओ सर, कोई रागिनी या भजन।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: दो तीन नाम है, पत्नी संतोष देवी, बेटा सरदर सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर। नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, शशि जी को नमस्कार। इसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ शशि जी।
0: नमस्ते सैनी जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: प्रेम राज सिंह को सुनना चाहूंगा, गामड़ी से बनवारी लाल यादव, शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा महेंद्रगढ़ से, राहुल सैनी इसार से।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब कैसे हैं?
5: जी अच्छा हूँ।
0: बताइए आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: प्रेमराज सिंह को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: मित्र हैं।
0: हाँ बोल दीजिए नाम मित्रों के।
5: हसीना भी मंसूरी और मीना भी मंसूरी, पालतू नाटक इंदौर से।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: मैं सोनू से बोल रहा हूँ।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज प्रेमराज को। दो एक नाम है।
0: हाँ बोल दीजिए।
6: मेरे पिताजी अमल वर्मा से, मेरी मम्मी फलवती खोटा वोटा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं जगदीश खिलाड़िया बोलो जी, दाना निशान जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: प्रेमराज सिंह को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: ये बच्चों के भी नाम है जी, राजवीर छिंदाड़िया, सतीश छिंदाड़िया, खेड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मैं गांव छोड़ी वास्ते रद्रो अग्रवाल।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: प्रेम राज सिंह को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
8: बच्चे कैसा उदास।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ये उपदेश। कलाकार हैं प्रेम राज सिंह।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार और आकाशवाणी परिवार को भी।
0: आपको भी नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र जाटव, मान की पोस्ट, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: वो ही तो, और वेदपाल को
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम है?
0: हाँ बोल दीजिए।
1: असालत नगर, मुरादनगर से है नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, प्रशांत जाटव, दरोगा साहब है निशांत जाटव, शिवानी जाटव, आबिद मानकी से है महेंद्र शारदा, राम किशोर, शीला, सचिन, अनुष्का, मानसी, शिवम, और ये पूरे आबिदपुर गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ सर, गांव रामसावड़ा, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश से।
0: ब्रजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: मोहित और वेदपाल को सुना दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: एक नाम लूंगा सर
0: जी,
2: हमारे बड़े भाई हैं डेढ़ से बच्चे सर, बता राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: अशोक कुमार शर्मा, सावली खुद बुलंदशहर।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: रोहित और वेदपाल।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: यीशु शर्मा, नीरज शर्मा, नव शर्मा, देव शर्मा, कर्म शर्मा, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्ते जी, मैं खजान सिंह जौहरीपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: रोहित और वेदपाल जी को अच्छी से रागनी सुनवा दीजिएगा।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी, खजान सिंह, राम बसी, चंद्रकांत, जय कुमार, मोहन और बल्लीराम।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं गांव चोलदा बागपत से संजय ढींगा।
0: संजय भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: रोहित जी और वेदपाल जी की आवाज में कोई बढ़िया सी रागनी सुनवाइएगा।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
6: इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: वेदपाल और रोहित सिंह की गाई हुई रागनी सुनवा देना। कुछ नाम लेने चाहूंगा
0: जी,
6: सुमित तेवतिया, प्रत्यक्ष, प्रिंस, छोटू, निष्कर्ष, हमारी बुआ जी राजवीरी, और खुशियालपुर से हैं पंडित रतनलाल और मास्टर शेर सिंह मोदी जी, और डालमपुर से हैं वीरपाल प्रधान जी, आजमगढ़ से राजकुमार जी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो, नमस्कार शशि भाई।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
7: जिला बैंगर हरियाणा से बोल रहा था जी, यादराम पारी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज सुना जी, रोहित सिंह, वेदपाल।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: नाम है जी अभय शर्मा या सुभाष।
0: हेलो ग्राम संसार।
8: राम राम साहब।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
8: खुर्जा, उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: रोहित सिंह एवं वेदपाल को सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर रोहित सिंह और वेदपाल से ये रागनी। किस्सा रहेगा नवल दे परीक्षित का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गांव बराना जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: गजेंद्र सिंह को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: और मेरे साथी आरती भारती साथी मैसेज करता देवी। नमस्कार।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गाँव पनियार जिला हिसार से विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: गजेंद्र सिंह की सुना दिए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: भक्तों के नाम जी, साहिर, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: सती भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं हरिंदर बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से।
0: हरिंदर भाई, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: गजेंद्र को सुनवा दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: दो नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: अरे बड़े भाई साहब है गजेंद्र, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ये गजेंद्र सिंह को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, मास्टर फुंदन सिंह और जगदीश मोटा बादलपुर।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर गजेंद्र सिंह से ये रागनी। किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई। और पश्चिम रेलवे के उधना इकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक न्यायाधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यस डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नगोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसूजा कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसूजा को 2-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी बहन भाइयों का नमस्कार।
4: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी में आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं और वहीं कोई ना कोई ऐसा विषय होता है जिससे हमारे कृषि जीवन में, हमारे युवा जीवन में ऐसी राहें खुलती रहें जो हमें रोजगार के संसाधन अपने

0: आसपास उपलब्ध कराती रहें।
1: आपने रोजगार की बात तो बहुत सही कही है अमित, क्योंकि हर कोई युवा यही चाहता है कि उसके हाथ में रोजगार हो। यदि उसके हाथ में रोजगार होगा तो स्वाभिमान भी उसके अंदर होगा, और जब हमारे युवाओं में आत्मविश्वास होगा तो हमारे भारत का नव निर्माण होगा। और जब योजना की बात करते हैं तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये भारत सरकार की एक योजना है और मत्स्य क्षेत्र के विकास की प्रमुख योजना इसे हम कह सकते हैं। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाना, मछुआरों और मछली किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा कमलेश, क्योंकि भाई रोजगार की जब बात आती है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्तंभ सिद्ध होती है हमारे युवाओं के लिए। और जो हमारे लाभार्थी हैं, यदि हम महिलाओं की बात करें, आरक्षित वर्ग की बात करें, तो इसमें अनुदान भी दिया जाता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और मछली परिवहन जैसी सुविधाओं का विकास भी हमारे युवा साथी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ मछली उत्पादन से आप जुड़े हुए हैं तो उत्पादन को बढ़ाना और जो आपका नुकसान हुआ है उसको कम करना, मूल्यवर्धन को करना और जो आपकी बाजार व्यवस्था है उसको भी मजबूत बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आता है।
0: इस योजना से जो भी हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और बैंकों में इसके अनुदान की व्यवस्था की गई है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूक बनके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों का सामाजिक विकास चाहती है और उनका आर्थिक कल्याण चाहती है।
0: बिल्कुल यही उद्देश्य है इस योजना का मित्रों। और कार्यक्रम किसान वाणी में जब हम कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की सलाह आप तक पहुंचे, आप उसके अनुसार अपने कृषि कार्य को करें, तो निश्चित ही नव भारत का निर्माण होता है।
1: फूल जो है वो हमारे जीवन में केवल रंग ही नहीं भरते, केवल खुशबू ही नहीं भरते, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, जो हमारे किसान भाई बहन फूलों की खेती कर रहे हैं या ऐसे हमारे साथी जो फूलों की खेती करना चाहते हैं, कोशिश है कि कहीं से कोई आधार मिले, कोई जानकारी मिले, तो आज किसान वाणी कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा विषय है फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयाम। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं डॉक्टर ऋतु जैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प एवं भू दृश्य निर्माण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
1: डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जब बात की मैंने फूलों की खेती की, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हमें खाने के लिए गेहूं, दाल, चना, सब्जी, सब चीजें इम्पोर्टेंट हैं, तो हमारी आत्मा को खुश रखने के लिए, मन को खुश रखने के लिए फूलों की बहुत जरूरत है। तो फूल एक ऐसी चीज है जो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, आपकी आत्मा को तृप्त कर देती है और हमें खुश कर देती है। साथ ही साथ फूलों का मनोवैज्ञानिक जो है हमारे ऊपर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। आप ये देखिए, कभी भी आप किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं, एक फूलों का गुच्छा ले जाइए तो वो कितना खुश महसूस करता है। तो फूल जो है सिर्फ इसी चीजों के लिए नहीं, फूल हमारे किसी भी त्योहार में, शादी में, विवाह में, पर्व में, साथ ही साथ कोई आपकी राजनीतिक रैली है, कोई आपका धार्मिक आयोजन है, इसके अलावा आपके होटल में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, विभिन्न विभिन्न जगह पर फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए किसानों की आय का ये एक बहुत बड़ा साधन है, तो इसलिए फूलों की खेती करना बहुत आवश्यक है,
1: क्योंकि पूरे साल ही जो है फूलों की मांग रहती है और हर कोई चाहता है कि हर मौसम में वो फूल उनको उपलब्ध हो जाए। तो जब हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो फूलों की खेती में जो नवाचार है उससे हम क्या समझे?
2: देखिए, जहां तक हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो फूलों की खेती में तो हम बहुत तरह के फूल उगा सकते हैं, चाहे वो कट फ्लावर हो, चाहे वो लूज फ्लावर हो, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो। पर जब हम बात करते हैं नवाचार की, नवाचार का मतलब है कुछ भी नई तकनीक का हमें फूलों को उगाने के लिए इस्तेमाल करना। तो हम उसमें जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हम बात करें टपक सिंचाई की, चाहे हम माइक्रो इरिगेशन बोलें उसको, या फिर हम सेंसर का इस्तेमाल बोलें, चाहे हम मल्चिंग की बात करें, तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करें, तो इन सब चीजों के लिए हम बहुत सारी जो नई नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो हम संरक्षित खेती कर सकते हैं, चाहे तो अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पौधे उगा सके, तो वो पॉटेड प्लांट उगाते हैं, या फिर वो नर्सरी की बात कर सकते हैं कि नर्सरी आप किस तरह से उगाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, नए नए हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके, एरोपोनिक्स का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे नवाचार के आयाम है। इनफैक्ट इसके अलावा फूलों को कैसे काटना है और फूलों को किस समय हमें कैसे उनको श्रेणीकरण करना है, उनको कैसे मार्केट

0: भेजना है, उन सब चीजों के लिए बहुत सारी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता
1: जी,
0: है।
1: जी अभी आपने बात की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की, तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: जैसे हम बात कर रहे थे नवाचार की, तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज मतलब कि हम कुछ भी नई टेक्निक लेकर आते हैं। जैसे हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, ग्रोइंग मीडिया जो है सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया की बात करें जिसमें मिट्टी नहीं होती, क्या होता है जैसे मान लीजिए आपने अपनी बालकनी में पौधे उगाने हैं, छत पे पौधे उगाने हैं, तो छत हमारी ऐसी है या बालकनी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा भार मिट्टी का बर्दाश्त नहीं कर सकती
1: जी।
0: तो उसके लिए हम सॉइललेस मीडिया जिसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, रॉक वूल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो लेका बॉल्स आती हैं, जो लेका बॉल्स हैं वो बहुत ही हल्की बॉल्स होती हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं पौधों को उगाने के लिए छत के ऊपर। या आपने देखा होगा अगर आप एयरपोर्ट जाए या कहीं बड़े बड़े मॉल्स में जाए तो बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं, उसके साथ में छोटी छोटी भूरे रंग की बॉल्स होती हैं
1: जी,
0: तो वो क्या करती हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करती है, मतलब मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती हैं, आपका पानी का वाष्पीकरण कम होता है। उनमें मिट्टी नहीं है तो कोई कीट और व्याधि होने का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि फफूंद वगैरह का या कोई रोग उनको नहीं लगता। साथ ही साथ पौधा उसमें स्वस्थ रहता है, और समय समय पर हम अगर उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते रहें, पोषक तत्व है जो कि आप सिंगल न्यूट्रिएंट के जैसे भी डाल सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाकर भी उसको डाल सकते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। साथ ही साथ नवाचार की बात कर रहे हैं या इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, फूलों को जब कटाई करते हैं तो जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पर भी हम संरक्षित खेती करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस हैं, वहां पर रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है फूलों को काटने के लिए, मतलब कि कली की जो अवस्था है खुलने की या उसका कली का जो रंग है वो दिख रहा है, तो वो सब चीजें रोबोट से देखकर या एआई का इस्तेमाल करके उसे काटी जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि फसल देखनी है आपको, कहीं फसल में कोई व्याधि तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, किसी कीट का प्रकोप तो नहीं हो गया, तो बहुत सारी जो फिनोमिक्स टेक्निक्स होती है, मतलब फोटो ले लेकर देखा जाता है कि कहां पर जो हमारा पौधा है वो क्षतिग्रस्त है, तो उस तरह की चीजों को भी इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के
1: शामिल किया जाता
0: है। जी जी बिल्कुल जी।
1: और जब हम बात करते हैं विविधीकरण के आयाम, तो इससे जो हमारे श्रोता हैं वो क्या समझे?
0: जी देखिए, फूलों की खेती सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाने तक सीमित नहीं है। जैसे कि हम बात करें गेंदे की, सबसे ज्यादा जो एक आम आदमी समझता है वो गेंदे का फूल या गुलाब का फूल, या तो हम उसको माला के लिए इस्तेमाल करते हैं या खुले फूल इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, और या फिर जो गुलाब है उसको कट फ्लावर के लिए भी देते हैं कि किसी को गिफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल हैं जो पूरा वर्ष भर उगाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें विविधीकरण में आवश्यकता है ये जानने की कि हमारी मार्केट क्या है, मार्केट में किस समय पे किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सभी लोग गेंदे की खेती या गुलाब की खेती एक समय करने लगे तो उससे किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा मार्केट में एकदम ग्लट आ जाएगा और ग्लट आने से रेट जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए कट फ्लावर की अलग अलग क्रॉप्स जैसे जूही, चमेली, गुलाब, गुलदाउदी, बबूना और गेलाडिया, चाइना एस्टर, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एरिया में हम रहते हैं उस तरह की क्रॉप्स उगाएं। साथ ही साथ कट फ्लावर के क्रॉप्स जैसे गुलाब है, गुलाब के बाद कार्नेशन है, ग्लैडियोलस है, ट्यूब रोज है, ऑर्किड्स हैं, जर्बरा है, तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं एक तो हम उसको उगाएं। ये तो होगी फ्लावर की खेती की बात। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी उत्पादन
1: जी।
0: लोगों को पौधे तैयार ना करने पड़े और वो पौध उनको मिल जाए ताकि वो रेडीमेड उसको लगा सके, चाहे वो लैंडस्केपिंग पर्पस के लिए लगाएं, चाहे वो अपने इस्तेमाल के लिए लगाएं। उसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल, पौध सामग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अच्छे बीज मिलना, अच्छे कंद मिलना ये और अच्छे बल्ब मिलना ये बहुत ही जरूरी चीज है, तो उस तरह की पौध सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा मूल्य संवर्धन कर सकते हैं
1: जी।
0: जो हमारे पास मार्केट में ग्लट आ गया है, हमारे जो सामान मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो उसके बहुत सारे मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम है, इत्र है, साथ ही साथ अगरबत्ती है और गुलाब जल है, साबुन है, कॉस्मेटिक्स है, शैम्पू है, बहुत तरह के सौंदर्य प्रसाधन है और ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें आप इससे बना सकते हैं। साथ ही साथ एक टर्फ ग्रास की बात करूंगी, लॉन ग्रास, वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, हम मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो ये लॉन घास होता है आप देखेंगे हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो बड़े बड़े मॉल्स हों, चाहे वो आपके बड़े खेल के मैदान हो, चाहे ऑफिसेज हों, चाहे जहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही है, नए फ्लैट्स, नई कॉलोनीज कट रही है, सब जगह टर्फ ग्रास का इस्तेमाल होता है। तो टर्फ ग्रास भी एक अच्छा आयाम है जिसके बारे में हमारे जो किसान भाई हैं या जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं फ्लोरिकल्चर के साथ, वो ये कर सकते हैं
1: जी। और आजकल तो डॉक्टर साहब हर कोई ये बोलता है कि हम डिजिटल हो गए हैं, तो जब डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल और स्मार्ट कृषि के अंतर्गत फूलों की खेती को

0: हम रख कर देख सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे डिजिटल और स्मार्ट खेती हर एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल है। अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो सबसे ज्यादा डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन में, कि इरिगेशन किस तरह का होना चाहिए। कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें हमें कभी तो स्प्रिंकलर इरिगेशन चाहिए होता है, तो कभी तो ड्रिप इरिगेशन चाहिए होता है, तो वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी से हम डिसाइड कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम कि इस इतने दिन तक हमें ये देना है, उसके बाद हमें ये टेक्नोलॉजी फॉलो करनी। उसके अलावा रोबोट जो है वो देखेगा पौधों को कि किसी में कोई बीमार पौधा तो नहीं है, कोई खराब पौधा तो नहीं है, किसी क्वालिटी खराब तो नहीं। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, पहले तो ब्रॉडकास्टिंग करते थे, उसके बाद लिक्विड वो देते थे, तो वो भी अब टपक सिंचाई से माइक्रो इरिगेशन के साथ देना है, कितने घंटे के बाद देना है, कौन सी स्टेज पे देना है, नाइट्रोजन कब देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कब देना है, फास्फोरस कब देना है, पोटाश कब देना है, तो ये सब जो चीजें हैं वो स्वचालित तरीके से आपके स्मार्ट खेती के अंतर्गत आती हैं, तो इनका इस्तेमाल खूब आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल खेती सिर्फ खेती करने के लिए नहीं, आप अपनी फसल को, अपनी उपज को बेचने लिए भी उसका इस्तेमाल करें
0: जी।
1: बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया जिनको हम सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देके, अपनी रील्स बना के, अपने प्रोडक्ट की मशहूरी करके उन सब चीजों को आप बेच सकते हैं, कुछ समूह बना सकते हैं। तो इस तरह का जो डिजिटल एरा है, क्योंकि अब आने वाला एरा तो डिजिटल एरा ही है, तो उसका इस्तेमाल हम क्यों ना करें।
0: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे श्रोताओं को बताई कि जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारी खेती उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और अब बात करते हैं कोल्ड चेन की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए कोल्ड चेन बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लोरिकल्चर का, क्योंकि जो फूल हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं और हमें कटाई से लेकर जब तक वो अल्टीमेटली रिटेलर के कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाते, मतलब कटाई से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए हमें कोल्ड चेन का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो हमारा फ्लावर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, फ्लावर की लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी, ज्यादा दिन तक आपका फूल चलेगा, साथ ही साथ उपभोक्ता को अच्छा फूल मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएगा, आपको अच्छा प्राइस देगा। तो कूल चेन मतलब आपने फूल काटा और काटने के बाद इमीडिएटली उसको आपने ठंडे पानी की बाल्टी में रखा, उसके बाद उसको आप पैकिंग हाउस में लेगा जहां पर एक प्रॉपर कोल्ड चेन या कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, वहां पर उसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग सब अंडर लो टेम्परेचर कंडीशन की जा रही है। उसके बाद जब पैकेजिंग हो गया तो पैकेजिंग करके उसको हम फिर कोल्ड स्टोरेज में फ्लावर को रखेंगे जब तक कि वो हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे
0: जी।
1: तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेन हमें रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद जब वो होलसेलर के पास पहुंचता है चाहे वो रिटेलर के पास पहुंचता है, वहां जाकर भी वो ठंडे स्थान पर ही उसको अगर स्टोर करेंगे तभी फूलों का प्राइस भी अच्छा मिलेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और हमारी जो एक मंशा है कि कोल्ड चेन से क्वालिटी अच्छी बढ़ जाए तो वो भी किया जा सकता है।
0: तो डॉक्टर साहब जब आपने अभी कोल्ड चेन की आप और हम बात कर रहे थे, सुनकर लग रहा है कि ये तो काफी महंगा होगा और एक जो किसान है वो इतनी महंगी चीजों को या इतना जो कोल्ड स्टोरेज बनाएगा वो कैसे बनाएगा, तो क्या ये मिलकर बनाना होगा या इसका भी कुछ ऐसा प्रबंध है कि किराए के हिसाब से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं?
1: जी देखिए कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो एक अकेले किसान के लिए करना ये संभव नहीं है, अगर हम छोटे सीमांत किसान की बात करें तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर एक समूह बनाकर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इसको किया जा सकता है। और कोल्ड स्टोरेज एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो अनुदान भी देती हैं, 60% 70% के करीब अनुदान भी मिलता है, तो आप NHB हो या कोई एपीडा हो, ये बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे अगर किसान हमारा बात करें तो उनको अनुदान भी मिल सकता है, तो वो ये सब फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं
0: जी। अगर मान लीजिए कि हमारे कार्यक्रम सुनकर कोई किसान भाई खेती करना चाहता है, फूलों की खेती करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या सोचना होगा, कैसे अपनी एक प्लानिंग करनी होगी?
1: जी देखिए सबसे पहले किसान को ये देखना है कि उसके आसपास की मार्केट क्या है, मार्केट का सर्वे करना है, मार्केट में फूलों की जरूरत है क्या, है क्या नहीं, उसके बाद उसको अपना क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप ग्रो करनी है, उसको अपना सॉइल टेस्टिंग कराना है, वाटर टेस्टिंग कराना है, मिट्टी और पानी की जांच के बाद उसको ये देखना है कि यहाँ के लिए कौन सी सूटेबल क्रॉप्स हैं, किसी एक विशेषज्ञ की सलाह लेकर वो उगाए। और उसके बाद मैं तो ये कहना चाहूंगी कि खेती करने से पहले एक प्रशिक्षण ले ले, चाहे वो किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ले ले या फिर किसी कृषि विश्वविद्यालय है वहां से ले सकते हैं, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहां पर भी आकर वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरह के प्रबंध किए जा सकते हैं
0: जी। अब उसको बाजार तो मिल गया है, उसके बाद में क्रॉप जो है वो कहाँ से मिलेगी, या बीजों की उपलब्धता जो है वो कहाँ से वो लेकर आएगा।

0: और उसके बाद में उनको जैसे कोल्ड चेन वाली बात की गई है, तो उसके लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे इसके बारे में भी आप हमें बताएं।
1: जी देखिए, बात है जहां तक की कि क्रॉप कौन सी उगानी है, वो तो उस एरिया की जलवायु और पानी के ऊपर और मिट्टी के ऊपर निर्भर करेगा। आपने लूज फ्लावर उगाना है या कट फ्लावर उगाना है, पहले तो ये हमें डिसाइड करना है। तो लूज फ्लावर उगाना है तो उसके लिए हम गेंदा उगा सकते हैं, गिलाडिया उगा सकते हैं, हम रजनीगंधा उगा सकते हैं, हम गुलाब उगा सकते हैं। तो इस तरह की फसलों का हम चयन कर सकते हैं, या फिर बबूना उगा सकते हैं, गुलदाउदी उगा सकते हैं। तो ये सब फसलें हैं जो कि बहुत अच्छे फूल देती हैं। तो इनका जो बीज है, इनके बीज की उपलब्धता जो पास का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग, एक तो वहां से हमें बीज मिल सकते हैं, या किसी सत्यापित नर्सरी से बीज लिया जा सकता है, या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, या फिर जो भी केंद्रीय संस्थान है आसपास में जो कि फूलों पे काम करते हैं, वहां से बीज लिया जा सकता है। जैसे हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो इस वक्त अगर हम गेंदे की बात करें तो हमारे पास 5-6 जो किस्में हैं गेंदे की वो ली जा सकती हैं, और उसकी अलग अलग समय पर खेती होती है। तो इन सब चीजों का मेरा मानना है कि किसान अगर किसी विशेषज्ञ के पास जाएगा तो वहां से वो पूरी जानकारी भी मिलेगी, कैसे करना है सब उसको मिल जाएगा। उसके बाद बात की आपने कोल्ड स्टोरेज की। देखिए, कोल्ड स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर हमारी मार्केट दूर हो, नजदीक मार्केट है जैसे दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है, और हम गाजीपुर तक भेज रहे हैं और लूज फ्लावर हैं, तो इतना बहुत ज्यादा हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर कहीं पर आपको फसल जो है स्टोर करनी है, आपकी आज डिमांड नहीं है, मान लीजिए कोई त्योहार है, दो दिन के बाद आपको अच्छा प्राइस मिलने वाला है मार्केट में, तो आपको कोल्ड स्टोर की और कोल्ड चेन की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे कि आप चाहे तो सरकारी संस्थान से अनुदान लें, चाहे तो आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, इस तरह के प्रयास करके किसान जो है लाभ उठा सकता है।
0: तो चलते चलते जो हम बार बार AI की बात करते हैं, तो AI का क्या महत्व है?
1: जी देखिए, AI means artificial intelligence। अगर हम बात करें, मनुष्य अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो कभी कभी हमसे चूक जाते हैं देखने के लिए, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हर प्रोग्राम एक फिक्स होता है, कोई चीज देखना है इतने डिग्री पे ही देखना है, इतने एंगल पे देखना है, यही कलर होना चाहिए, यही RGB स्कीम होनी चाहिए, इतने ही सेकेंड में वो टेस्ट पास होना चाहिए। तो वो सब चीजें जो है आपको मदद करती हैं आपका काम आसान करने के लिए। जो चीजें आप आंख से कई बार चूक जाते हैं तो वो आप AI के माध्यम से देख सकते हैं। AI आपको ये भी बता देगा कि आपको पौधे में क्या डिजीज लगी है, AI से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी हुई आपके पौधे को, उसका क्या निदान है, और आपको अगर बीमारी ही पता चल जाए तो उसके लिए आपको ये बता देगा कि आपको ये पौधा रखना है नहीं रखना है, कितना फसल के लिए हानिकारक है या नहीं है। साथ में रोबोटिक्स का इस्तेमाल, जो वो भी AI से ही चलते हैं, स्वचालित जिसे हम कहते हैं, उसके बाद AI का इस्तेमाल आप अपनी क्रॉप को मार्केट में बेचने के लिए भी कर सकते हैं, आप नए नए क्या प्रोडक्ट बनाने हैं तो उस सब चीजों के लिए भी AI का इस्तेमाल।
0: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये बातचीत फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयाम, और इस पर विस्तृत जानकारी दे रही थी डॉक्टर ऋतु जैन, जो प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में।
2: बिल्कुल कमलेश जी, ये तो बात रही कार्यक्रम में बातचीत, जिससे हमारे कहीं ना कहीं साथी जागरूक होंगे और कोशिश करेंगे कि फूलों की खेती में जब हम वैज्ञानिक सोच लेकर के आते हैं तो उत्पादन अच्छा होता है, लागत मूल्य कम लगता है। वहीं कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं को सुनवाएंगे एक रागिनी कलाकार रविंद्र खालोर।

0: मित्रों, ये आप रागनी सुन रहे थे रविंद्र खालोर की आवाज में।
1: हमारी जो कृषि है वो मौसम पर ही आधारित है। जब हम किसान भाइयों को मौसम का पूर्वानुमान बता देते हैं तो उससे उनको फायदा ही होता है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से साफ और धूप वाला मौसम रहेगा। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अगर हम वर्षा की बात करें तो बारिश की संभावना ना के बराबर है।
0: मित्रों, जब मौसम का पूर्वानुमान कार्यक्रम में आप तक पहुंच जाता है तो वही बात आती है हमारे किसान भाइयों के लिए। वैज्ञानिकों की कृषि सलाह के द्वारा की गई खेतीबाड़ी से निश्चित ही हम अधिकतम लाभ लेते हैं और हमारा उत्पादन अच्छा होता है, लागत कम हो जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुख्य फसलों के लिए विशेष कृषि सलाह जारी की है। यदि सितंबर के बचे हुए दिनों की हम बात करें तो इस समय धान की फसल के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि जो अगेती धान की वैरायटी है वो पकने की कगार पर हैं, और कृषि मंत्रालय ने सलाह दी है कि कटाई में बिल्कुल भी किसान भाई जल्दबाजी ना करें, अनाज को अच्छी तरह पकने दें ताकि मंडियों में अधिक नमी के कारण फसल रिजेक्ट ना हो।
1: जिन किसान भाइयों ने इस समय सोयाबीन की खेती की हुई है उनके लिए सलाह दी जाती है, अगेती किस्में जो पक रही हैं और पछेती किस्में फलियां भरने की महत्वपूर्ण अवस्था में हैं, और जब 90% फलियां पीली पड़ जाएं तो अगेती किस्मों की कटाई तुरंत कर लें ताकि अचानक बारिश होने पर दाने खराब ना हो।
0: बिल्कुल, और वहीं जब बात कीट नियंत्रण की है तो वही तंबाकू की इल्ली और गर्डल बीटल के प्रकोप पर भी नजर रखें। सब्जियां और रबी की तैयारी वे किसान भाई ध्यान दें, वर्तमान मौसम अगेती मटर की बुवाई के लिए बेहद अनुकूल है। जड़ सड़न रोग से बचाव के लिए बुवाई से पहले बीजों को कैप्टन या थीरम जैसी फफूंद नाशक दवाओं से उपचारित अवश्य करें। तो मित्रों, ये

0: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह हमारे किसान भाई बहनों के लिए।
1: और हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन है, जब हम किसान वाणी कार्यक्रम लेकर आते हैं तो देखो कितने सारे आयाम हम अपने कार्यक्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं वो क्या सोचते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में, ये तो तभी पता चलेगा जो हमें फीडबैक मिलेगा। तो जब फीडबैक की बात करते हैं तो क्यों ना श्रोताओं को अपना ईमेल आईडी भी बता दें। तो हमारे ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आप अपने जो भी विचार हैं या और इस कार्यक्रम में आप क्या चाहते हैं वो सुझाव आप हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं।
0: मित्रों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: हर

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। शाम के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने एक खूबसूरत गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी। श्री मोदी ने कहा, सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने की मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों ने नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
3: नमस्कार, मेरा नाम वाणी बालिया है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस नियुक्ति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने देश और विभाग की उन्नति में योगदान देने का प्रयास करूंगी।
4: मेरा नाम नेहा है और मैं हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर हुआ है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिला।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी रिज के करीब 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद अधिसूचित रिज क्षेत्र बढ़कर करीब 13000 एकड़ हो जाएगा। दिल्ली की पारिस्थितिक सुरक्षा, हरित आवरण और वायु गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। रिज राजधानी की प्राकृतिक विरासत होने के साथ साथ उसका हरित सुरक्षा कवच है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केवल भूमि को कानूनी संरक्षण देना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि रिज के पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें देशी प्रजातियों को बढ़ावा देने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्जीवन और आक्रामक प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। इस दौरान दिल्ली के कला संस्कृति भाषा विभाग के अंतर्गत अभिलेखागार की ओर से इन विरासत क्लबों के छात्रों के लिए कई व्यावहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। योजना का उद्देश्य दिल्ली के छात्रों को राजधानी की समृद्ध सांस्कृतिक स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु आज पीएस मौर्य एनक्लेव में थाना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिकों से सीधे बातचीत करने, शिकायतें सुनने और तय समय में उनका समाधान करने का एक मंच है। श्री संधु ने कहा कि भरोसा कायम करने और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए मार्केट समिति के साथ सक्रिय साझेदारी बहुत जरूरी है। उपराज्यपाल शकुरपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अभियान में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ वृक्षित फाउंडेशन के युवा स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी की। उपराज्यपाल ने स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को अपने आसपास की स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर श्रमदान के माध्यम से पार्क की सफाई करना और उसमें सकारात्मक बदलाव देखना बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे।
6: इन शिविरों में मतदाता अपना नाम और विवरण जांचने के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने की जानकारी भी ले सकेंगे। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर फॉर्म 6, किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। ये फॉर्म संबंधित निर्वाचन कार्यालय BLO या ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। नोटिस चरण और दावों या

0: नियुक्तियों का निपटान 29 अक्टूबर तक चलेगा। एसआईआर के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशेष शुक्ला।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। यश दबास अध्यक्ष, रिया छाबड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। अध्यक्ष यश दबास ने कहा कि पीजी और हॉस्टल की ऑडिट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: हमारे लिए सबसे जो पहला विशेष मुद्दा रहेगा वो रहने वाला है कि हर एक पीजी और हॉस्टल का एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, क्योंकि आप सभी ने देखा जो सत्य निकेतन पे दुर्घटना हुई थी। हम नहीं चाहते आने वाले भविष्य में ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ हो।
1: सचिव रिया छाबड़ी ने कहा कि परिषद को जीत युवाओं की बदौलत मिली है।
3: अपनी सीट से बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है अपने संगठन को, अपने जिन स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया उनको, अपने टीम मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को। जेंजी प्रोटेस्ट में जेंजी हमारे साथ है, तभी हम 3 सीटों से जीते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में इस जीत पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि यह जीत राष्ट्र प्रथम की नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। गृह मंत्री ने कहा कि यह जीत परिषद की विद्यार्थियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता में युवाओं के अटूट भरोसे को दर्शाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीनों विजेताओं को बधाई दी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जीत एबीवीपी पर युवाओं के भरोसे को दर्शाती है।
4: दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत, 3 सीटों पर एबीवीपी ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की है। ये दिखाता है कि आज का युवा भ्रमित नहीं है, इसलिए आज का युवा एबीवीपी को समर्थन देता है।
1: दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल कक्षा और किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के बीच जाकर उसकी वास्तविक चुनौतियों को समझना और उनके समाधान विकसित करना चाहिए। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली स्टार्टअप नीति के अंतर्गत दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप्स और 4,00,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाब में नशे के खिलाफ नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पंजाब के युवाओं और परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना सभी का दायित्व है।
6: वो युवा भाई जो इस नशे की गिरफ्त में है, उनको कैसे छुड़ाया जाए? आज गांव गांव, शहर शहर में ये नशे का दानव अपना रूप बढ़ाता जा रहा है। अब इसे समाप्त होना होगा और ये नशा मुक्त पंजाब यात्रा उसी की शुरुआत है।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। श्री कटारिया ने कहा कि ये पहल चंडीगढ़ की विकास यात्रा में एक प्रमुख उपलब्धि है। इससे श्रम का सम्मान, सहकारी स्वामित्व, तकनीकी आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जोनल कार्यालय ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक कंपनी के 42 करोड़ रुपए से अधिक के इक्विटी शेयरों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल मजबूत संबंधों के आधार पर साझेदारी को नया रूप दे सकते हैं। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक संगोष्ठी में डॉक्टर वागले ने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत की त्वरित सहायता की सराहना की।
7: I think close to 8 cargo planes have arrived.
8: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में

0: फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
1: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी में व्यापक स्वच्छता और सफाई गतिविधियां जारी रखी। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, जेजे क्लस्टरों, प्रमुख मार्गों, सेंट्रल वर्ज और अन्य सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा है कि AI आधारित टूल्स के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की स्क्रीनिंग आसान हो गई है। राजधानी में 2 दिन के डॉक्टर AI ग्लोबल सम्मेलन में डॉक्टर बरनवाल ने कहा कि बीमारी के समय पर पहचान होने से शीघ्र उपचार संभव होगा, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का 2 दिन का IDA दिल्ली स्टेट कॉन्फ्रेंस आज से पश्चिम बिहार में शुरू हुआ। सम्मेलन के दौरान देश भर से आए विशेषज्ञ डेंटल क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना सहित कई स्थानों पर आज राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने को मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सामीन की खदमत में सरफराज आलम का सलामो आदाब। हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा लेकर। सामीन, मुशायरे हमारी तहजीब का अहम हिस्सा हैं। इसने माजी में भी जबान व अदब के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया है और असर हाजिर में भी इल्म व अदब और तहजीब व सकाफत को परवान चढ़ाने में इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुशायरे उर्दू जबान व तहजीब की एक ऐसी खूबसूरत रिवायत हैं जिसकी मिसाल दुनिया की दूसरी जबानों के अदब और सकाफत में बमुश्किल ही मिलेगी। मुशायरे की ऐसी ही एक खूबसूरत महफिल लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के मुशायरे में जिन शुअरा को आप सुनेंगे उनमें शामिल हैं जनाब शर्फ नान पारवी, जनाब अमीर अमरोहवी और जनाब जावेद अब्बासी। निजामत के फ़रायज़ अंजाम दे रहे हैं जनाब फरमान चौधरी।
3: सामईन, एक बार फिर हम उर्दू मजलिस के ख़ास प्रोग्राम महफिल मुशायरा में आपका इस्तकबाल करते हैं। अपने आज के इस ख़ास मुशायरे में डॉक्टर फरमान चौधरी के साथ जिन शोरा को अपना कलाम पेश करना है उनके नामे नामी इस तरह हैं। जनाब शरफ नान पारवी साहब हमारे साथ हैं, जनाब डॉक्टर अमीर अमरोहवी साहब हमारे साथ हैं और जनाब जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। इस बावकार महफिल मुशायरा का आगाज मैं अपने कलाम से करना चाहता हूं। मैं इजाज़त चाहता हूं सभी सामईन से और शुरका से। गजल का मतलब समाप्त फरमाइए।
4: जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह।
3: तेरे दिल में ठिकाना चाहता हूँ।
4: क्या कहने, क्या कहने।

0: मैं हर मौसम सुहाना
1: अच्छा मतलब अच्छा मतलब
0: और बस इतनी बात पर मुझसे खफा है,
1: मुझे इतनी बात पर
0: बस इतनी बात पर मुझसे खफा है, उसे क्यों

0: अच्छा शेर है डॉक्टर साहब, अच्छा शेर है, वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लो फिर तुमको जिताना चाहता हूँ, और मुझे ये हिजर है मंजूर यूं भी,
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
1: मुझे ये हिजर है मंजूर
0: यूं भी
1: मैं तुमको याद जमाना चाहता
0: मैं तुमको आजमाना
1: तुमको याद
0: सब क्या कहने जुमान अल्लाह।
1: और शेर समाप्त फरमाइए,
0: मैं तुमको याद आना चाहता हूँ,
1: तुम्हारे जिस्म की सरगम को अपने,
0: तुम्हारे जिस्म की सरगम को अपने,
1: तुम्हारे

0: अच्छी गजल है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब क्या कहने, वाह वाह वाह वाह।
1: लबों से गुनगुनाना तुम्हारे जिस्म की
0: सरगम,
1: सरगम को अपने,
0: वाह वाह।
1: लबों से गुनगुनाना चाहता हूँ। और आखिर शेर देखिए, जहाँ पहुँचे न कोई गम का साया,
0: जहाँ पहुँचे न कोई गम का साया,
1: जहाँ पहुँचे न कोई
0: गम का साया।

0: वहाँ एक घर बनाना।
1: अरे
2: बहुत
1: अच्छे,
2: बहुत शुक्रिया,
3: बहुत खूब।
0: जहाँ पहुँचे न कोई
1: गम का साया,
0: गम

0: वाह वाह,
1: वहाँ एक घर बनाना चाहता हूँ। हाजरीन और सामाईन, इस समा खराशी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस महफिल मुशायरे को आगे बढ़ाता हूँ और मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब जावेद अब्बासी साहब से कि बराहे करम अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम जावेद अब्बासी साहब।
2: याद उस बे वफा की आई है,
1: वाह वाह,
2: याद उस बे वफा की आई है,

वो गुजारी नहीं गवाई है।

0: वाह वाह वाह वाह।
1: अब के गुलशन में दिल कशी ही नहीं,
0: अब के गुलशन में दिल कशी ही नहीं,
1: अब के गुलशन में दिल कशी ही नहीं, कैसे कह दूं बहार आई।

0: हमको लिए। शुक्रिया,
1: वाह वाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम जावेद अब्बासी साहब, अपना खूबसूरत कलाम हमें सुना रहे थे। सामईन, उर्दू मजलिस का ये महफिल मुशायरा, अब हम इसको आगे ले जाते हैं और इस शेर के साथ मैं दावत दूंगा डॉक्टर अमीर अमरोही साहब को कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो सामईन हजरात समाअत कीजिए मोहतरम डॉक्टर अमीर अमरोही साहब को।
2: तुझे अगरचे गुरूरे सितम ज्यादा है,
1: तुझे
2: अगरचे गुरूरे सितम ज्यादा है, हमें भी अपने खुदा पर भरम ज्यादा है। हमें

0: भी अपने खुदा पर भरम
1: ज्यादा है। वाह वाह वाह वाह।
0: और एक और मतलब देखें, खताए कम हैं हमारी रकम ज्यादा है। खताए कम हैं हमारी रकम ज्यादा है, कुछ हम पे तेरी नवाजिश कलम ज्यादा है। कुछ हम पे तेरी नवाजिश कलम ज्यादा है। और शेर मुलायजा फरमाएं, हमें ये डर है कि रुसवाइयां नसीब ना हो। हमें ये डर है कि रुसवाइयां नसीब ना हो। कुछ हम पे आपकी नजरे करम ज्यादा है।
2: बहुत अच्छा।
0: हमें ये डर है कि रुसवाइयां, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये डर है कि रुसवाइयां नसीब ना हो। कुछ हम पे आपकी नजरे करम ज्यादा है। कुछ हम पे आपकी नजरे करम ज्यादा है। और ये भी शेर देखें, जो बुत कदों के परस्तार हैं समझते हैं। सर साहब देखिए,
1: जी जी आता आता हूँ।
0: जो बुत कदों के परस्तार हैं समझते हैं, सनम कदों से मुकद्दस हरम ज्यादा है। सनम कदों से, जो बुत कदों के परस्तार हैं समझते हैं, सनम कदों से मुकद्दस हरम ज्यादा है। और ये भी शेर देखें कि हमारे पास तुम्हें क्या मिलेगा हम सुखनो। हमारे पास तुम्हें क्या मिलेगा हम सुखनो। हमारे पास खुशी कम है गम ज्यादा है। हमारे पास खुशी कम है गम ज्यादा है। और शेर मुलायजा फरमाएं, अब ऐसी शक्ल में क्यों कर तुम्हारे पास आए। अब ऐसी शक्ल में क्यों कर तुम्हारे पास आए। हमारी जान पे बारे अलम ज्यादा है। हमारी जान पे बारे अलम ज्यादा है। और फरमान साहब शेर देखे, ये हो गई हैं तेरी आर जार के सत्ते।
1: जी जी, ये हो गई हैं तेरी आर,
0: ये हो गई हैं तेरी आर जार के सत्ते। जो रोशनी मेरी आंखों में कम ज्यादा है।
1: अरे डॉक्टर साहब क्या,
0: ये हो गई हैं तेरी आर जार के सत्ते। जो रोशनी मेरी आंखों में कम ज्यादा है।
1: वाह वाह।
0: और शेर देखें कि उठाए फिरता हूँ दुनिया का बोझ कांधों पर।
1: उठाए फिरता हूँ दुनिया का बोझ,
0: उठाए फिरता हूँ दुनिया का बोझ कांधों पर। कमर में इसलिए कुछ मेरी खम ज्यादा है।
1: वाह वाह।
0: कमर में इसलिए कुछ मेरी खम ज्यादा है। और शेर देखें, यकी है जिंदगी मंजिल को पाने वाली है। यकीन है जिंदगी मंजिल को पाने वाली है। बस अब सफर मेरा दो ही कदम ज्यादा है। बस अब सफर मेरा दो ही कदम ज्यादा है। और इस गजल का आखिरी शेर समाज फरमा दें, जो मेरे बस में ही होता तो मैं ही सुल जाता। जो मेरे बस में ही होता तो मैं ही सुल जाता। तुम्हारी जुल्फों में जानम ये खम ज्यादा है। जो मेरे बस में ही होता तो मैं ही सुल जाता। तुम्हारी जुल्फों में जानम ये खम ज्यादा है। और मक्ते का शेर समाज फरमाए, अमीर कूच करो अपने गांव की जानिब।
1: अमीर कूच करो अपने गांव,
0: अमीर कूच करो अपने गांव की जानिब। हर एक शख्स यहाँ मोहतरम ज्यादा
1: है।
0: हर एक शख्स यहाँ मोहतरम ज्यादा है। अमीर कूच करो अपने गांव की जानिब। हर एक शख्स यहाँ मोहतरम ज्यादा है। गजल के चंद अशआर और समाज फरमाने, मतलब समाज फरमाने, हाले दिल हम जो उन्हें अपना सुनाकर निकले। हाले दिल हम जो उन्हें अपना सुनाकर निकले। देर तक हम भी कहां सदमे से बाहर निकले। देर तक हम भी कहां सदमे से बाहर निकले। और शेर देखें, उठ ना जाए कहीं गुर्बत का भरम चेहरे से।
1: उठ ना जाए कहीं गुर्बत का भरम चेहरे से।
0: साहब देखे शेर, उठ ना जाए कहीं गुर्बत का भरम चेहरे से। बस यही सोच के हम घर से ना बाहर निकले। बस यही सोच के हम घर से ना बाहर निकले।

0: और शेर देखे हम तो समझे थे यहाँ हू के सिवा कुछ भी नहीं।
1: वाह।
0: हम तो समझे थे यहाँ हू के सिवा कुछ भी नहीं, दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले।
2: वाह वाह वाह।
0: दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले। और शेर मुलायजा फरमाए बासी साहब, तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को,
1: तेरी चाहत के लिए जब,
0: तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को, वसवसे कितने मेरे दिल के ही अंदर निकले।
1: हाय हाय हाय। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह वाह।
0: वसवसे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
1: क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह।
0: तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को, वसवसे कितने मेरे दिल के ही अंदर निकले।
1: हाय हाय हाय।
0: और ये भी शेर देखें, तब समझ लेना मेरे यार ने गेसु खोले। तब समझ लेना मेरे यार ने गेसु खोले, जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर। तब समझ लेना मेरे यार ने गेसु खोले, जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर निकले। जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर निकले। और ये भी शेर देखें, चांद देखूं कि तेरा रूह है मुनव्वर देखूं।
1: वाह वाह।
2: चांद देखूं
0: तो तेरा रूह मुनव्वर देखूं, चांद निकले तो तेरा रूह मुनव्वर निकले।
1: वाह वाह वाह।
0: चांद देखूं तो तेरा रूह मुनव्वर देखूं, और चांद निकले तो तेरा रूह मुनव्वर निकले।
1: वाह।
0: और शेर देखें, हम जहां पहुंचे वहाँ फतह मुकद्दर पहुँची।
1: बेशक बेशक। हम जहाँ पहुँचे
0: वहाँ फतह मुकद्दर पहुँची, हम जिधर निकले फकत तेरे करम पर निकले। हम जिधर निकले फकत तेरे करम पर निकले।
1: क्या करें डॉक्टर साहब, वाह वाह।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी देख ले, फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली। फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली, जब मेरे बच्चे मेरे तत के बराबर निकले।
2: बहुत अच्छा है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली, जब मेरे बच्चे मेरे तत के बराबर निकले। और फिर लहू रंग हुई जाती है खाके गुलशन। फिर लहू रंग हुई जाती है खाके गुलशन, फिर तेरे नौहा गरा देख सड़क पर निकले। फिर तेरे नौहा गरा देख सड़क पर निकले। और शेर देखें, वक्त पर जो भी मिला उस पे कनात की है। वक्त पर जो भी मिला उस पर कनात की है, पैर अपने कभी चादर से ना बाहर निकले। पैर अपने कभी चादर से ना बाहर निकले। और आखिरी शेर इस गजल का,
1: आता आता
0: दिल को तड़पाती है रह रहे के जुदाई तेरी। दिल को तड़पाती है रह रहे के जुदाई तेरी, तू जो आ जाए तो दिल से मेरे नश्तर निकले। तू जो आ जाए
1: तो
0: दिल से मेरे नश्तर निकले। और मक्ते का शेर और आपकी रहमत तमाम, कौन है किसका ये पत्थर लगा आकर के अमीर।
1: कौन है
0: किसका ये पत्थर लगा आकर के अमीर। आस्ती से तो मेरे यारों के खंजर निकले। आस्ती से तो मेरे यारों के खंजर निकले।
1: वाह वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सामईन हजरात, अभी आप डॉक्टर अमीर अमरोही साहब से उनकी मुरस्सा गजलें समात फरमा रहे थे। अब इस महफिल मुशायरा के मक्ता यानी आखिरी शायर की तरफ हम बढ़ते हैं, और मैं इस शेर के साथ मोहतरम शरफ नान पारवी साहब को दावत दूंगा कि इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक। इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। तो इस्तकबाल कीजिए जनाब शरफ नान पारवी साहब।
1: एक मतले से अपना शेरी सफर का आगाज करता हूँ। तितलियों की हंसी कतारों को, तितलियों की हंसी कतारों को, आप समझो मेरे इशारों को।

0: वाह वाह वाह,
1: जावेद भाई इसे सुने। एक बस तुम ही रोक सकते हो, एक बस तुम ही रोक सकते हो गम की पागल नदी के धारों को, एक बस तुम ही रोक सकते हो गम की पागल नदी के धारों को। हम गजल में पिरोते रहते हैं, हम गजल में पिरोते रहते हैं तेरी पलकों के टूटे तारों को, तेरी पलकों के टूटे तारों को। डॉक्टर साहब खासकर ये शेर तवज्जो का तालिब है। ये मनाजिर बदल भी सकते हैं,
0: ये मनाजिर बदल भी सकते हैं।

एक तितली का दिल दुखाया था, एक तितली का दिल दुखाया था, अब तरसते हैं हम बहारों को, अब तरसते हैं हम बहारों को। खास कर ये शेर डॉक्टर साहब, जब तवाजुन में फर्क आता है, जब तवाजुन में फर्क आता है, जब तवाजुन में फर्क आता है, गिरना पड़ता है शहसवारों को, गिरना पड़ता है शहसवारों को। हम गजल में पिरोते रहते हैं तेरी पलकों के टूटे तारों को। बहुत बहुत शुक्रिया गजल की शेरों सुनिए। वहां से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की है, वहां से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की है। जनाबे कैसे जहां तुमने इल्तहा की है, जनाबे कैसे जहां तुमने इल्तहा की है, लबों से फूल खिलाने का सिलसिला रखना, लबों से फूल खिलाने का सिलसिला

आपते होठों से इल्तिजा किए वहां से हमने। खालिद गजल का शेर रख सब तवज्जो का ताली हूं। कभी कभी तेरी आंखों से खुद को देखा है, कभी कभी तेरी आंखों से खुद

0: ये तेरी
1: वाह वाह वाह वा।
0: तस्वीर आईना की है, वहां से हमने मोहब्बत की इब्तदा की है। जनाबे कैस जहां तुमने इल्तहा की है। आखिरी शेर जरूरतों का पसीना जो आया माथे पर
1: वाह जरूरत
0: जरूर।

0: किस तरह बताऊं मैं कि मेरे साथ मेरे साए ने दगा किए, मेरे साथ मेरे साए ने दगा किए, वहां से हमने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामाइन, उर्दू मजलिस के इस खास प्रोग्राम महफिल मुशायरा को आप समाअत फरमा रहे थे। इस मुशायरे में जिन शोरा ने अपने कलाम से नवाजा, उनके नाम मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जनाब शरफ नान पारवी साहब, डॉक्टर अमीर अमरोहवी साहब, जावेद अब्बासी साहब और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर फरमान चौधरी। तो सामाइन, हमें इजाज़त दीजिए इस शेर के साथ कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत शुक्रिया।
2: समीन, अभी आप मुशायरे की इस खूबसूरत महफिल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे डॉक्टर फरमान चौधरी और तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफ़ी की। इस मुशायरे का बकिया कलाम लेकर हम आइंदा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम की।

ये खूबसूरत सी एक मैं कहूँ गीत है और एक बयान है, वो है फिल्म डेढ़ इश्किया से, और इसे अपनी सुरीली आवाज़ में बयान किया रेखा भारद्वाज ने। अगला जो गीत है वो अचानक बस किसी दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया और सोचा कि क्यों ना ये गीत मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो ये गीत आप ज़रूर सुनिए, इस गीत को आवाज़ दी है हरिहरन साहब ने।

0: चीजों के गुमशुदा हो जाने की रपट आप लिखवा सकते हैं, लेकिन कुछ गुमशुदगियां ऐसी होती हैं जिनकी खबर आपको भी नहीं होती। और अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म है जींस, उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा।
1: लड़की थी या अजूबा?
2: अजूबा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज आप सुन सकते हैं और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। 9:30 पर समय होगा कार्यक्रम चित्र भारती का। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट

0: पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाडी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था।

0: की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
7: I think close to 8 cargo planes have arrived.
8: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
7: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela.

0: ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। दो रोजा शुमाल मशरिकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई है। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश होने का इम्कान है और 20वें एशियाई गेम्स बाजाबता तौर पर जापान में शुरू हो गए हैं। ओलंपिक में दो बार तमगे जीतने वाली मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए मुकर्र किए गए नौजवानों को ये तकर्रुनामे सौंपे गए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने नौजवानों को हुनरमंदी से आरास्ता करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की खातिर उन्हें मौके फराहम करने पर लगातार तवज्जो मरकूज की है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार प्राइवेट शोबे में रोजगार के मौकों को तेजी के साथ वसत देने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मकसद से तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए के खराजात के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। उम्मीद है कि मस्कूरा स्कीम से तकरीबन 2 करोड़ नौजवान अफराद को पहली मरतबा अफरादी कुवत में शामिल होने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता चंद वर्षों में तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आज़ाद तिजारत के समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिससे मुल्क के नौजवानों के लिए मौकों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के तिजारती समझौतों से नई साझेदारियों की राह हमवार होती है और मुल्क के कारोबारी अफराद को मार्केट भी दस्तयाब होती हैं। नेज नौजवानों के लिए करियर के नए इम्कान पैदा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनिज़ाम मौजूद है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है, यानी आज गांव कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा आलमी औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में माहौलियात के मुस्तकबिल और आबो हवा से मुतालिक अवामिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने यह बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कार्बन अखराज के लिए अक्सर व बेशतर तरक्की पजीर मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो मुनासिब नहीं है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में मुनक़िदा COP21 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले ही पूरा किया है। भारतीय रेलवेज ने शुमाल मशरिकी रेलवे के लखनऊ डिवीजन के 607.7 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर चौथे मरहले के कवच बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दस्तियाब सेफ्टी के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। रेल ट्रैफिक की सेफ्टी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया कवच खुदकार तहफुजाती निजाम है, जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया है। मगरबी रेलवे के

0: धना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवे ने बस्ती रेलवे के सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बंदोबस्त को मंजूरी दी है, जिस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा इस डिवीजन में सिग्नलिंग के जदीद तर्ज के निजाम से रेलवे के मुतालिका सिग्नल बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा और कवच निजाम पर अमल दरामद की भी सहूलत होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन डूसू के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने 3 बड़े ओहदों पर जीत हासिल की है। एबीवीपी के यश डवास ने सदर के ओहदे की सीट जीत ली है, जबकि रिया छाबड़ी ने सेक्रेटरी और लक्ष्य राज सिंह ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाबी हासिल की है। नायब सदर के ओहदे पर आजाद उम्मीदवार दीपांशु शौकीन कामयाब हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाब में कामयाबी पर एबीवीपी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कामयाबी मुल्क मुकद्दम की पॉलिसी में नौजवानों के पुख्ता अकीदे की एक अलामत है। उधर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि यह जीत मुल्क मुकद्दम के एबीवीपी के नजरिए में नौजवानों के पुख्ता एतमाद और तलबा की बहबूद के तई उसके अहद की अक्कासी करती है। इंतखाबी कमीशन कल कौमी राजधानी दिल्ली में सभी पोलिंग मराकज के मकामात पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा। दिन भर की इस मुहिम का मकसद वोटर फहरिस्तों में नए नाम शामिल करने के साथ साथ तफसीलात में इसलाह करने, नेज वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल किए जाने या हटाने पर एतराजात दाखिल करने में लोगों की मदद करना है। मुतल्लिका दरखास्तें वसूल करने के लिए बूथ लेवल अफसर BLO नामजद पोलिंग मराकज पर मौजूद रहेंगे। नए वोटर का नाम शामिल कराने के लिए Form 6, एतराजात दाखिल करने के लिए Form 7, जबकि वोटर फहरिस्त में किसी तरह की इस्लाह करने या ताजा जानकारी शामिल करने के लिए Form 8 दाखिल किए जा सकते हैं। कौमी राजधानी में जारी मौजूदा SIR अमल के बारे में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने यह वजाहत की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर ERO अलग अलग केस की बुनियाद पर समाअत के दौरान नोटिस में बयान की गई दीगर दस्तावेजात पर भी गौर कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नज़रिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज हम अपनी खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान में इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने किस तरह लोगों की जिंदगी में यकसर तब्दीली पैदा की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म का आगाज किया था, जिसका मकसद रियासतों और मरकजी वजारतों के साथ शराकत दारी में उनके बराह रास्त और बर वक्त जायजे के जरिए प्रोजेक्टों, स्कीमों और शिकायात के इजाले में तेजी लाना था। एक दहाई में प्रगति से फैसला साजी में तेजी आई है। बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला गया है और जवाबदेही का एक मजबूत कल्चर पैदा हुआ है। फरवरी में इस साल राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वजीर आजम की सतह पर प्रोजेक्टों की तफसीली निगरानी से 85 लाख करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों को दूर किया गया और उनमें तेजी लाई गई।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
1: एम्स बीबी नगर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने उजागर किया कि किस तरह प्रगति तरीक़ेकार ने एम्स के लिए पानी और बिजली की सप्लाई जैसे इंतहाई अहम मामलात को हल करने में मदद की।
3: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: ये प्लेटफॉर्म मरकज रियासतों और मरकजी वजारतों को एक वाहिद डिजिटल राबते मिलाकर इमदाद बाहमी वफाकियत को फरोग देता है। वजीर आजम ने अब तक प्रगति के तहत 53 मीटिंगों की सदारत की है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद।

0: ईहान।
1: आज नागालैंड में नागा यूनाइटेड विलेज चुमो के दिमा में दो रोज़ा शुमाल मशरक़ी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 से ख़त्म पज़ीर हुआ, जिसमें पूरे शुमाल मशरक़ से पॉलिसी साज माहरीन तालीम और मुंतज़मीन यकजा हुए और उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज पर तबादला ख्याल किया। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद तालीम की वजारत के साथ इश्तराक में नागालैंड हुकूमत ने किया था और इसका मौजू था कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का नफाज, शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए नज़रिया, चैलेंज और इम्कान। आज इसकी अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए त्रिपुरा की आला तालीम, पंचायतों और इंतजामी उमूर के वजीर किशोर बर्मन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज पर जोर दिया, ताकि शुमाल मशरक में तालीम को ज्यादा हुनरमंदी पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाया जा सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के दिल्ली जोनल दफ्तर ने इज्तिमाई सरमायाकारी की स्कीम के ताल्लुक से मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर माली धोखाधही के सिलसिले में एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स अबूरी तौर पर कुर्क कर लिए हैं, जिनकी मौजूदा मार्केट कीमत 42 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी ने मरकजी जांच ब्यूरो की जानिब से दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर छानबीन शुरू की थी। बाद में CBI ने गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीम चलाने में मुलविस होने की बिना पर 33 मुलजिम अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म और एक ज़िमनी फर्द जुर्म दाखिल की थी। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत ताल्लुकात के जरिए अपनी शराकत दारी को तकवीत बख्शने के इम्कान हैं। आज नई दिल्ली में तरक्की पजीर ममालिक के लिए तहकीक और इत्तलाआती निज़ाम की जानिब से मुनक़िदा उभरते आलमी निज़ाम में भारत नेपाल ताल्लुकात का नए सिरे से तसव्वुर के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर वागले ने कनेक्टिविटी और इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने और दोनों ममालिक के दरमियान खातिर ख़्वाह इम्कानात को बरूएकार लाने की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने कल अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम माहे मध्य प्रदेश तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कल मराठवाड़ा जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल मशरकी राजस्थान झारखंड कोंकण गोवा उड़ीसा और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। आज जापान के मिजुहू पार्क एथलीट स्टेडियम में 20वें एशियन गेम्स की शाह नारुहितो की जानिब से आगाज किए जाने के बाद शुरुआत हो गई है। 2 घंटे की तकरीब में जापान के शाही कुनबे खेलों से मुतालिक

0: बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। दो रोजा शुमाल मशकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में अख्ताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश का इम्कान है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन। जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर इमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म

ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। यह तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म अंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: नानु दट्टा अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होने क्या
1: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला।
1: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुडी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी।

0: अनंतनाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
1: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कंफर्म आयतु। Here is a man who comes from that powerful place. अदक्के अवकाश इद्रु अवनन मुगसाक लिल्ला।
0: अनंतनाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंतनाग अंकुर, भूमिका, कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
2: हंस क्यों रहे हैं?
3: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिसालदार के नगर पोते मीर रोशन अली में हंस रहे हैं।
2: जरा होश में आइए हुजूर, जरा। हाँ
4: सुनिए मेरी बात, सुनिए।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बारे पत्रा देंगे।
1: चल, तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल ना मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली बोल, सुन।
2: क्या?
1: तेरी कुड़माई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, परेश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब ना रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा।
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
2: आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: नजर हो गया।
4: क्या हो?
3: वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं?
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया।
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
5: यूं ही महके प्रीत पिया की, मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंसराज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए

0: और फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी की बिल्कुल जबरदस्त फैन के मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट, कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी, के जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, इस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था,

0: बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे। बड़ा स्टूडियो है, वहां सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना। कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा, छोटा सा तालाब को
1: जी
0: बड़ा दिखाते थे। तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरीली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती।
1: जी
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो,
1: जी
0: पलंग हो। इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहां आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती। क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने
1: क्या
0: वाली औरत
1: बात
0: हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता है।
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही।

0: स्मृति शेष स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत है। इसमें आज हम आपको श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटक वायलिन रिसाइटल बाय श्री एस हरिकुमार।
0: श्री एस हरिकुमार केरल के एक प्रख्यात संगीतकार हैं, जिन्होंने कर्नाटक, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में अपनी विशेष पहचान बनाई है। सन 1980 में जन्मे आप 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से वायलिन वादन सीखने लगे और 9 साल की आयु में आपने अपनी प्रथम प्रस्तुति दी। तदनंतर आपने स्वर्गीय अनंत लक्ष्मी वेंकटरामन, स्वर्गीय चालकुडी नारायण स्वामी और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जैसे सुविख्यात संगीत पारखियों के अधीन अपना संगीत प्रशिक्षण जारी रखा। यथाशीघ्र आपकी संगीत कौशल की परख हुई और आपको 18 वर्ष की आयु में आकाशवाणी में ए ग्रेड प्राप्त हुआ। संगीत के सफर में तबला विद्वान पंडित किशन महाराज और अनिंदो चाटर्जी, साथ ही पाश्चात्य वायलिन वादक जॉन ल्यूक पोंटी के साथ संगति करते हुए, प्रस्तुतियां देते हुए आप पूरी दुनिया में छा गए। बाद में आप लंदन गए और वहां आपने फ्यूजन संगीत समूह ब्लू फायर की स्थापना की, जिसके एल्बम ब्रथ टेकर ने दुनिया भर की वाहवाही लूटी। 7 एवं 11 तारों वाले इलेक्ट्रिक वायलिन पर वादन करते हुए सुर, ताल और विभिन्न संगीत शैलियों के सम्मिश्रण में नए आयाम तलाशने वाले आप अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए खूब जाने जाते हैं।
1: श्री एस हरिकुमार इज अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन फ्रॉम केरला हु हैज मेड हिज मार्क अक्रॉस कर्नाटिक, हिंदुस्तानी एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशंस। बोर्न इन 1980, हरिकुमार बिगैन लर्निंग द वायलिन फ्रॉम हिज फादर एट द एज ऑफ 7 एंड गेव हिज फर्स्ट रिसाइटल एट द एज ऑफ 9. He went on to receive training from renowned musicians, including late Ananda Lakshmi Venkataraman, late Chalakudi Narayana Swami, and Dr. L. Subramaniam. His musical accomplishments were recognized early, with Harikumar earning the Akashwani A grade by the age of 18. His musical journey has taken him across the world, with performances and collaborations with celebrated artists such as tabla maestros Pandit Kishan Maharaj and Anindo Chatterjee, as well as Western violinist Jean-Luc Ponty. He later moved to London, where he founded the fusion ensemble Blue Fire, whose album Breathtaker received acclaim in the world music scene. Known for his innovative approach, Harikumar also performs on electric violins with 7 strings and 11 strings, exploring new dimensions in melody, rhythm and cross-genre music.
0: कार्यक्रम में संगत वाद्यकार हैं मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर।
1: In tonight's program, he will be accompanied by श्री चंगना शेरी के आर जैन on the मृदंगम and Shri

0: अंजल हेच कृष्ण अय्यर ऑन द घाटम।
1: श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन की शुरुआत संत त्यागराज के एक पंचरत्न कीर्तन जगदानंद कारका से कर रहे हैं। राग है नाटा, ताल आदि।
0: श्री एस हरिकुमार बिगिन्स हिज वायलिन रिसाइटल विद जगदानंद कारका, अ पंचरत्न कृति बाय त्यागराजा इन द राग नाटा सेट टू आदि तालम।

0: आगे प्रस्तुत है आर वेणुगोपाल की रचना सरिसमाना, जो राग विटपी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू सरिसमाना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ आर वेणुगोपाल इन द राग विटपी।

0: आगे पेश है कृति सरस्वती नमोस्तुते, जी एन बालसुब्रमण्यम की रचना, जो राग सरस्वती और आदि ताल में निबद्ध है।
1: नेक्स्ट आइटम इज सरस्वती नमोस्तुते इन द राग सरस्वती सेट टू रूपक तालम कंपोज्ड बाय जी एन बालसुब्रमण्यम।

0: अब आप सुनेंगे कृपया पालया, महाराज स्वाति तिरुनाल की रचना, जो चारुकेशी राग और मिश्र चाप ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू कृपया पालया, अ कॉम्पोजिशन ऑफ श्री स्वाति तिरुनाल इन द राग चारुकेशी सेट टू मिश्र चाप तालम।

0: ये था तनियावर्तनम। इसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर ने। श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन का समापन महाराज स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक तिल्लाना से कर रहे हैं जो धनाश्री राग और आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tani Avartanam played on the Mridangam by Shri Changanasheri K.R. Jayan and on the Ghatam by Shri Anjal H. Krishna Iyer. Shri S. Harikumar concludes his violin recital with a Tillana composed by Shri Swadi Tirunal in the Raga Dhanashri set to Adi Thalam.

0: इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुना श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। कार्यक्रम में संगति कर रहे थे मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित हुआ।
1: With that we conclude the violin recital by Shri S. Harikumar in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shri Changanasheri K.R. Jayan on the mridangam and Shri Anjal H. Krishna Iyer on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. The Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge ROB on Udhna-Ukai-Songarh section of Western Railway. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Dr. Wagle said this while addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order organized by the Research and Information System for Developing Countries in New Delhi today. India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said that the relief material has been handed over to the Nepalese side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolences over the deaths in a road mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured would be given an amount of 50,000 rupees. 8 people, including 3 children, died after a car carrying devotees was swept away by a rain-swollen stream near Nalkheda. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured 3 major posts in the Delhi University Students' Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of president while Ria Chhavdi secured victory for secretary and Laksharaj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. The 20th Asian Games officially got underway today at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, with Emperor Naruhito declaring the games open. India's 501-member contingent was led by double Olympic medalist Manu Bhakar and kabaddi player Pavan Sehrawat during the athletes' parade. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11:10 और तकरीबन 20 सेकंड हो चुके हैं और आप और हम जानते हैं कि ये वक्त है आपकी और हमारी मुलाकात का, और मुलाकात जो है वह है बहुत ख़ास, क्योंकि इसमें गीत होते हैं, आपकी फरमाइश के बातें होती हैं मेरे दिल की, और हम सब मिलके इस वक्त को बहुत ही खूबसूरत यादगार बना देते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस लम्हे को यादगार में दर्ज करने की इस बहुत प्यारे से गीत के साथ।

वाकई दिल की जो पुकार है वो आप तक पहुंचती है, और ये जो हफ्ता और इतवार है ना वो जल्दी से आ जाता है और फिर मैं आ जाती हूँ आपके बीच, आपके रूबरू अपनी आवाज़ के ज़रिए। और ये वाकई जो ये रिश्ता है ना आपका और हमारा, ये इतना कीमती और इतना खूबसूरत है कि इसमें मैं कहूँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई लालच हो या फिर कुछ ऐसा हो कि ये समझ लीजिए कि कोई किसी का फेवर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा और बिना किसी मतलब का रिश्ता है, और बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरे करीब, मेरे नज़दीक तो ये बहुत है। आप क्या सोचते हैं ये आप हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com, ip.radio.delhi@gmail.com वो ईमेल एड्रेस है जिसके ज़रिए आपकी बात, आपकी राय, आपकी फरमाइश हम तक पहुँचती है। तो देर मत कीजिए, फटाफट फोन हाथ में ले लीजिए और इनबॉक्स में जाकर ये टाइप कर दीजिए, अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ जो है फिल्म कश्मीर की कली से।

मेरी चाहत है कि कभी आऊं मैं तेरे जहन में कोई हसीन याद बनके। मेरी चाहत है कि कभी आऊं मैं तेरे जहन में कोई हसीन याद बनके। कभी बस यूं ही छेड़ जाऊं तेरे दिल का साज कोई राग बनके। कभी ऐसा भी हो कि तेरा ख्याल मुझ पे ऐसा तारी हो। कभी ऐसा भी हो कि मेरा ख्याल तुझ पे ऐसा तारी हो कि रात की तारीकी में वसल का चरागा हो। कभी यूं भी हो कि तू चाहे मुझे पा लेना। कभी यूं भी हो कि तू चाहे मुझे पा लेना और मैं किसी पतंगे सी तेरी जद में हूं और फिर थरथराती रहे लौ दिए की रात भर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ तलत। तो अब रुख करते हैं आपके मैसेजेस का। और मैसेज हमारे पास आया है संभल से, लिखने वाले हैं छोटे अंसारी, असद आलम और नसर। आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लिया जाए। अगला मैसेज हमारे पास अनिल कुमार गौहानकर का और आप हमें लिख रहे हैं उमरखेड़ा महाराष्ट्र से। आपके साथ हैं सरिता, प्रिंस, एकांश और बदलापुर मुंबई से हैं प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन और टुकटुक। इसके साथ ही नागपुर से हमारे साथ हैं वैशाली, शैलेश, एकांश, सुमित और कुमारी ध्वनि, परी। आपने भी कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और एक मैसेज हमारे पास ये आया है चंडीगढ़ सिटी से, लिखने वाले हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और वो कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। बात तो सच है। और दोनों की चमक, दोनों की रोशनी और दोनों की ठंडक और दोनों की ही गर्मी अपने अलग अलग मायने रखती है। जब रात होती है तो उसमें अगर सूरज की रोशनी अगर हम इमेजिन करें तो बड़ी नागवार गुजरेगी। ऐसे ही दिन में जब आपको काम करना हो और सूरज की रोशनी कभी चांद जैसी मध्यम पड़ जाए तब बहुत तकलीफ होगी कोई भी काम करने में। ऐसे ही जीवन है, कोई 100% होता है, कोई 50% और कोई कोई उससे कम या

सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानूबी और बादशाह। आपने एक गीत की फरमाइश की है, तो कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। चंडीगढ़ से हमारे पास मैसेज आया है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बरेली से मैसेज है बेनी सिंह, पन्नी लाल, सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना और श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश, पृथव सिंह। और आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंच चुकी है, लेकिन सुनते हैं एक और बहुत सा गीत, बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो आपका हम तक पहुंचा है।

साहस के साथ, हिम्मत के साथ और पूरी कोशिश के साथ खूबसूरती से गुजारने की कोशिश करें। बहुत ही खूबसूरत गीत है और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप अक्सर सुनते हैं लेकिन उसकी गहराई में आप नहीं जा पाते, लेकिन इस गाने का असर इस वक्त मुझ पर कुछ ज़्यादा ही गहरा हो गया और इसके अल्फाज की गहराई में मैं चली गई। लेकिन बाहर आना ज़रूरी है क्योंकि इनबॉक्स हमारा फुल हो चुका है आपके मैसेजेस से, और मैसेज हमारे पास आए हैं गिरडी झारखंड से, लिखने वाले हैं मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज़, हसन अहद, मिफ्रा बेबी, चाहत और सादिया। इसके साथ मैसेज हमारे पास आया है फारूक अली खान का, और आपने सिर्फ फॉरवर्ड किया है मैसेज और कुछ भी नहीं लिखा है। मेहर अरोड़ा हमें मैसेज कर रहे हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, आपके साथ है ममता कीर्ति भूमि का। इसके अलावा मैसेज जो हमारे पास है वो है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, लिखने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। इसके साथ हिसार फ्रांसी से हमारे पास मैसेज आया है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, और आपने कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दें। तो जी उम्मीद ये है कि आपको सभी गीत पसंद आ रहे होंगे, हमारे ही साथियों की फरमाइश है जो आप सुन रहे हैं। दिल्ली के कृष्ण पार्क से मैसेज हमें लिख रहे हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवान और गुरवंश सिंह जौड़ा, आपने कहा कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। बीड़ शहर से मैसेज कर रहे हैं किसन सपकल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकल। एक और मैसेज है बहुत ही कलरफुल और बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ, और कोलासर से हमें मैसेज, नांदूर से हमें मैसेज मिला है, लिखने वाले हैं प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक और संकेत, आपने एक गीत की फरमाइश की है। तो उम्मीद है कि आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे, आपने अपनी फरमाइश ज़रूर सुन ली होगी। भजनपुरा उत्तर प्रदेश से मैसेज आया है शिव मंदिर मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, जगह का नाम और आप सभी का नाम कुछ ऐसा है कि जगह और इंसान के नाम में इंसान ज़रा सा कंफ्यूज हो सकता है, जो कि मैं हो गई। नजफगढ़ से हमारे पास मैसेज आया मैथिली लड्डू और टुक टुक का, आपने कहा है कि एक गीत सुनना है, तो उम्मीद है कि आप सुनेंगे कार्यक्रम, तो आपकी फरमाइश ज़रूर प्ले होगी और आप उसे सुन पाएंगे। मैसेज हमारे पास दिल्ली के पश्चिम विहार से आया है, लिखने वाले हैं नीरज अग्रवाल, सचिन और डी के अल्फी, आपने कहा कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन, फातिमा खातून, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्या, अभ्यानंद आर्या, परमानंद आर्या, और बक्सर से ही है साथ में राज एस डी अंसारी, अस्मा खातून और इकबाल मस्तान। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

इस गाने में जितनी खूबसूरत अल्फाज हैं उतनी ही बेहतरीन सीख भी दी हुई है कि हर फिक्र को आप धुएं में ना उड़ाएं, क्योंकि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जो फिक्र है उसे कहीं ना कहीं उड़ा देना ज़रूर चाहिए, और ज़िंदगी का साथ निभाना आना चाहिए कि ज़िंदगी को किस तरह से एक

और हमारे पास जो अगला मैसेज है वो है दादर नागर हवेली से, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ से भी लोग हमें सुन रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैसेज लिखने वाली हैं कल्पना मदन झा, मानव मयंक, और आपने गीत सुनना चाहा है तो कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश ज़रूर ज़रूर पूरी की जाए। अगला मैसेज हमारे पास आया है रेडियो की आवाज़, और मधुबनी बिहार से ये लिखा है मैसेज। लिखने वाले हैं AK झा, लक्ष्मण जगत प्रताप और अल्लाह बख्श जी। आपने कहा है कि ये गीत आपको सुनना है। अगला मैसेज है हमारे पास अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, राजू, रजक, रजक, संजीव, विपिन, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और आपने हमें मैसेज किया है कटनी से, तो जी आप पसंद भी करते हैं कार्यक्रम, इसके लिए शुक्रिया। मैसेज हमारे पास कीर्ति नगर नई दिल्ली से आया है सुशांत प्रयान झा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमार, आपने एक गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज है नारायण खर्चे जी का, आप हमें मैसेज करें इंदौर से। आपके साथ हैं ललिता, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, स्वाति, लड्डू, देविका। और मुझे लगता है कि हमारे इस प्रोग्राम में लड्डू नाम से काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। बिट्टू गगनेजा हमें मैसेज कर रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से। आपके साथ हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा। आपने कहा कि कोई भी गीत सुनवा दें। इसके साथ अहमद फूलवाले हमें मैसेज कर रहे हैं मुंबई करजत से, और आपने बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश की है। आपके साथ हैं अहमद, इमरान, इकबाल और कापासेड़ा दिल्ली से हैं आमना, नसरीन, असमा, आशु, अहमद और समस्त फूलवाले परिवार। मैसेज हमारे पास रजी शर्मा का आया है मलोट पंजाब से। आपके साथ है निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना और नीना, योगेश भी आपके साथ है। इसके अलावा गोविंद वैष्णव का मैसेज हमारे पास आया है, गोविंद वैष्णव हमें मैसेज कर रहे हैं मध्य प्रदेश राजगढ़ से। आपके साथ हैं कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और सुमन कोमल परी। मैसेज हमारे पास आया है संतोष जी का, और आप हमें महाराष्ट्र अकोला से कर रहे हैं मैसेज। आपके साथ हैं गीता, भूषण, विजया और समस्त धर्मकार परिवार। आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंच चुकी है। आरिश अली का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से, और आपके साथ हैं सैयद शाकिर अली।

मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, और आपने कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दें। नबी हसन ने भी हमें मैसेज किया है एटा से। आपके साथ हैं शहनाज नवेद, सुहेल, अनम यशफ, और कदवाई नगर से लिख रहे हैं जुबैर अली खान, सबीहा अंजुम खान। और सुनते हैं एक और बहुत अच्छा सा गीत।

कभी याद की जो शिद्दत है वो इस कदर बढ़ जाती है कि लगता है कि अब बस गई जान और जब गई जान। लेकिन अभी जान को जाने नहीं देना है क्योंकि तकरीबन 11 मिनट मेरे पास हैं और आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं। हरियाणा कैथल से मैसेज करी है मधु नायक और आपके साथ है मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा टिल्लू नायक और आपके गीत की फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। मैसेज हमारे पास आया है जीतू प्रसाद का और आप हमें मैसेज कर रहे हैं बक्सर से। आपके साथ हैं कविता संजना संवी गुप्ता और आपने कहा है कि मेरा मेल ज़रूर शामिल करें, तो लीजिए आपका मेल शामिल हो गया है। उम्मीद है कि आप प्रोग्राम सुन रहे होंगे और अपना नाम भी सुन लिया होगा। भूषण खेड़ा हमें मैसेज कर रहे हैं फजिल का पंजाब से और आपके साथ हैं भूषण खेड़ा विशु विशाल लाडली लाडी खेड़ा और शालिनी दिवानशी वाणी आरबी खेड़ा और जीवन सिंह बूक। और इसके साथ आपने एक गीत सुनना चाहा था लता जी की आवाज़ में, तो उम्मीद है कि आपने ये गीत ज़रूर सुना होगा। ये अभी जो गीत था ये था फिल्म आम्रपाली से, इसे गाया था लता जी ने। हिमकेश्वर सिंह हमें मैसेज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, आपके साथ हैं करुण राहुल और चंपा साहू। मैसेज हमारे पास आया है हाजी मजहर का और आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। आप मऊ से हमें मैसेज करें, आपके साथ हैं रजिया बेगम मोहम्मद सादिक। गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर रिजवाना परवीन और सुरेश खुराना ने हमें मैसेज किया है ग्वालियर से, आपके साथ हैं किरण लव्या अर्व खुराना और एस के खुराना। मोहम्मद कमर का हमारे पास मैसेज आया है गुरनूर से, आपके साथ हैं अली मुजफ्फर अली और आपने कहा कि एनी सॉन्ग। तो उम्मीद है कि आपको सभी गीत पसंद आ रहे होंगे। नंदकिशोर घाटे जी ने भी हमें मैसेज किया है, आप महाराष्ट्र बीड से हमें मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं संगीता घाटे साक्षी अंजलि करवा और बाला साहिब करवा। खलील कुरैशी ने हमें मैसेज किया है गंज डुंडवारा से, आपके साथ हैं नुसरत बेगम और हम्माद जमील बेबी अरीबा हबीबा। और मैसेज हमारे पास आया है, ये एक मसला हो जाता है कि एक ही नाम से बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा क्लिक किया जाए। ये मैसेज हमारे पास आए हैं कीर्ति नगर से और ये मैसेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भव्या ने हमें मैसेज किया है नजफगढ़ से, ये भी मैसेज दोबारा आ गया है, ऐसा ना किया कीजिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैसेज हमारे पास अगला है मुरादाबाद से, लिखने वाले हैं फरीद अंसारी मोहम्मद रज़ा बिलाल अंसारी मोहम्मद जुबैर अंसारी तनवीर आलम और आपने कहा है कि हमें किसी भी सदाबहार गीत में शामिल करें, तो कोशिश ये है कि सभी गीत सदाबहार रहें। बिहार के समस्तीपुरा से भी हमारे पास मैसेज आया है, आपके साथ है मीरा सिंह ज्योति सिंह और सोनम सिंह अनामिका सिंह।

और ऐसी ही कुछ शिकायतें जिंदगी भर चलती रहें, जो शिकायत तो हो लेकिन खूबसूरत हो और दिल को लुभा लेने वाली हो, और उस शिकायत को पूरा करने में मज़ा भी बहुत आए। और मैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं। अमरावती महाराष्ट्र से मैसेज आया है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना प्रणय, प्रसिद्धि हीरामन और प्रतिभा गोंडाने का। आपने कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। मैसेज हमारे पास इसके अलावा आया है दारा सिंह का, और आप हमें हरियाणा से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, और आपकी गीत की फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। अगले प्रोग्राम में कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा किया जाए। नासिर शेख ने हमें मैसेज किया है महाराष्ट्र के श्रीरामपुर से, और आपके साथ हैं नासिर, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। अहमदनगर से हैं जुनेद मुजावर, सबीहा मिकाइल, ज़ुबैर और जैनब। इसके अलावा मैसेज हमारे पास जो आया है वो बड़ा ढूंढना पड़ेगा। अक्रम हुसैन प्रिंस ने हमें मैसेज किया है सीतामढ़ी बिहार से, आपके साथ है बेगम इशरत, वसीम अक्रम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, और कलेर बिहार से है मोहम्मद आरिफ खान, निखत परफीन। रमेश कुमार ने हमें मैसेज किया है मलोट से, आपके साथ हैं गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू और गुड्डू। इसके साथ ही अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, इसी वायदे के साथ कि फिर मुलाकात होगी, कब ये देखना होगा। तब तक आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी। अपना भी ख्याल रखें और अपने अपनों का भी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर अब 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ

0: मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने उधना उकाई सोनखंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकला और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बादल बरसने और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।

कौन से गीतकार जमीर काजमी? फिल्मी दुनिया में जगह बनाना आसान नहीं था इनके लिए। वो दुनिया जहाँ बाहर से तो हमें बहुत चमकदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर जाने पर उसकी असलियत नजर आती है। और वो वक्त भी तो था, 90 का दशक। वो दशक ऐसा था जहाँ पर पहले से ही हिट से हिट गीतकार मौजूद थे, अपने खूबसूरत शब्दों और खूबसूरत हिट गीतों के साथ। वहाँ पर अपनी जगह बनाना ज़मीर काज़मी के लिए आसान नहीं था। अंदर से उनकी प्रतिभा स्वदी रही है, खासकर गीतकार के लिए एक संगीतकार के पास धुन होता है, गायक के पास आवाज़ होती है, अभिनेता के पास चेहरा, लेकिन गीतकार बिल्कुल पर्दे के पीछे से कुछ इस तरीके से लिख कर दे जिसमें लोग अपने अंदर उस शब्द को महसूस कर सके। ऐसा मौका गीतकार को ही मिलता है। और जब गीतकार अपने शब्दों में उसकी बारीकियों को, यानी सिचुएशन के बारीकियों को समझकर ना ढाल पाए, तो फिर वो गीतकार हिट नहीं हो सकता, या उसे बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। कहते हैं यही काम ज़मीर काज़मी को सबसे ज़्यादा सताती थी कि वो उसमें खरे उतरेंगे कि नहीं। उनके पास सिर्फ शब्द, और उन्हीं शब्दों से उसे किसी फिल्म के किरदार का प्यार, उसकी बेचैनी, उसकी खुशी, उसका दर्द, सब कुछ कहना होता था। ज़मीर काज़मी ने इसी दुनिया में अपनी जगह बनाई। उनका नाम 1990 के दशक की कई महत्वपूर्ण फिल्मों में गीतकार क्रेडिट में दिखाई देता है। जैसे अगर फिल्म लें आप बाजीगर, जिसके गीत अभी आपने सुना, खुद्दार, विजयपत, गुंडा राज और हीरो हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में उनका नाम जुड़ा। क्यों जुड़ा? बात करेंगे एक और इन्हीं के लिखे हुए गीत को सुनने के बाद।

क्यों, खूबसूरत गीत है ना, और आज भी हमें याद है। क्यों? क्योंकि इसके शब्द, इसके बोल कुछ इस तरीके से हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। साल था 1993, फिल्म आई बाजीगर, शाहरुख खान के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक गिनी जाने वाली इस फिल्म के संगीत में अनु मलिक का नाम था और गीतकारों में जमीर काजमी भी शामिल थे। लेकिन यहाँ एक खास बात है, बाजीगर का पूरा एल्बम कई गीतकारों की रचनाओं से बना था और जमीर काजमी के हिस्से आया था समझकर चांद जिसको। इस गीत को विनोद राठौर और अलका याग्निक ने आवाज दी थी और संगीत अनु मलिक का था। रिकॉर्ड में गीतकार के रूप में जमीर काजमी का नाम दर्ज हो गया। अब जरा सोचिए, एक तरफ शाहरुख खान का उभरता हुआ दौर, दूसरी तरफ अनु मलिक का संगीत, और इन सब के बीच एक गीतकार अपने शब्दों के जरिए उस फिल्म का हिस्सा बन रहा है। यही वो समय था जब जमीर काजमी का नाम मुख्य धारा के फिल्म संगीत में दिखाई देने लगा। जी हाँ, उनके करियर को एक नया मौका मिला इस गीत से। इस गीत को हमने सुना था, और आपको एक बात और बताएं कि एक गीतकार की असली परीक्षा जो होती है वो होती है फिल्म में गीत लिखना। सिर्फ कविता लिखना नहीं होता, कविता में आप अपनी दुनिया बना सकते हैं, लेकिन फिल्मी गीत में आपको किसी और की दुनिया में प्रवेश करना होता है। आपको निर्देशक की कहानी समझनी होती है, किरदार को समझना होता है, सीन समझना होता है, संगीतकार की धुन समझनी होती है, और फिर उन सब के बीच एक ऐसे शब्द रखने होते हैं जो सुनने में भी अच्छे लगे और कहानी को भी आगे बढ़ाए, या फिर यूं कहें कि कहानी से मेल खाता हुआ हो। यही शायद फिल्मी गीतकार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और जमीर का

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सुरों का सफरनामा मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं गीतकार जमीर काजमी के बारे में। ये उस दशक के हमारे गीतकार हैं जिस दशक में पहले से ही कई गीतकारों ने अपना परचम फैला रखा था। उनका परचम इतना ज़्यादा था कि लोग उस बीच में किसी और को जगह देने की सोच भी नहीं सकते थे। और उस ज़माने का समय भी कुछ और था। जैसे कि आज अगर हम कोई भी गीत सुनना चाहें तो एक क्लिक में हमें वो गीत मिल जाता है, लेकिन 90 के दशक में संगीत सुनने का अनुभव बिल्कुल अलग था। कैसेट खरीदी जाती थी, कवर पर फिल्म के कलाकारों की तस्वीर होती थी, अंदर छोटे छोटे अक्षरों में गीतकारों के नाम लिखे होते थे और फिर वही कैसेट घर के टेप रिकॉर्डर में चलती थी, कभी सुबह कभी शाम और कभी किसी सफर में। और गीतकार के शब्द धीरे धीरे लोगों की यादों का हिस्सा बन जाते थे। यही वो दौर था जिसमें जमीर काजमी लिख रहे थे। 1994 में आई फिल्म खुद्दार, संगीत फिर से अनु मलिक और गीतकारों में जमीर काजमी का नाम, उनसे जुड़े गीतों में वो आँख ही क्या भी दर्ज हुई जिसे अभी आपने सुना। कुमार सानू और अलका याग्निक जैसे गायकों ने इस गीत में अपनी आवाज दी। ऐसा रोमांटिक गीत उस दौर के संगीत की पहचान था। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, गीतकार का नाम केवल खूबसूरत शब्द चुनना ही नहीं होता है, उसे उस समय के श्रोता की भाषा समझनी थी, ऐसी भाषा जो शायरी की मिठास भी रखे और आम श्रोता को अपनी भी अपना कुछ खास सा लगे। लेकिन सुबह का आज भी नहीं, अपने आप को भी पीछे नहीं समझा। कहते ना कि कभी कभी कोई अपने दिल में ठान कर बैठ जाता है कि मुझे ये परीक्षा पास करनी है। और जमीर काजमी के हिस्से भी यही आया, कई परीक्षा देने पड़े और हर जगह उत्तीर्ण हुए, क्योंकि उनके गीत ने हमें बता दिया कि गीतकार वही है जो हर परीक्षा देता जाए, उससे भागे नहीं। जमीर काजमी ने हर एक वक्त अपने आप को इसी तरीके से ढाला। उनके जीवन के विषय में बहुत सारे आपको चीजें कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपना जीवन बिल्कुल खास रखते थे।

वो अपने जीवन को अपने करियर के बीच में नहीं आने देते थे, बस अपनी चाहत की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। और उनका चाहत था खूबसूरत शब्द, जिसे वो गीत में किसी की भी आवाज में ढलवा सकते थे। लेकिन अच्छे से अच्छे गायक, अच्छा संगीतकार इस गीतकार के शब्दों को अपने संगीत से, अपनी आवाज से खूबसूरत बनाना चाहता था। और यही पहचान होती है एक गीतकार की।

ज़मीर काज़मी के सफ़र को देखने पर एक बार ख़ास तौर पर सामने आती है। उनके लिखे शब्द अलग अलग गायकों की आवाज़ में सुनाई दिए, लेकिन अत्यधिक आप अगर सुनना चाहें तो कुमार सानू, अलका याग्निक, विनोद राठौर और पंकज उदास, ये दिग्गज ऐसे कलाकार गायक थे जिनकी आवाज़ में जो शब्द आपने सुने वो ज़मीर काज़मी के थे। बाद के दौर में जगजीत सिंह और अदनान सामी जैसे नामों के भी रिकॉर्ड जोड़ते चले गए। इसका मतलब ये है कि उनकी लेखनी को अलग अलग गायकी के रंगों में ढाला गया। एक गीतकार के लिए ये आसान नहीं होता, क्योंकि हर आवाज़ का अपना स्वभाव होता है। फिल्मी गीतों से आगे बढ़कर ज़मीर काज़मी का नाम पंकज उदास के जुड़े गीतों के साथ भी मिलता है। ये वो जगह है जहाँ उनके रचनात्मक दुनिया का दूसरा रंग हमें देखने को मिला। फिल्मी गीत की भाषा और गजलनुमा गीत की भाषा में फर्क होता है। फिल्म में दृश्य सामने होता है, गजल या गैर फिल्मी गीतों में शब्दों को अपने दम पर एक वातावरण बनाया जाता है। ज़मीर काज़मी का नाम दोनों संसारों में दिखाई दिया। संघर्ष का सबसे सच्चा अर्थ यहाँ एक बात कहना जरूरी है कि अक्सर कलाकारों की कहानी में संघर्ष शब्द सुनते ही उसके जीवन की ऐसी घटनाएं जोड़ देते हैं जिसकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। किसी ने कहा होगा कि वो भूखे रहे, किसी ने कहा होगा कि वर्षों तक दर दर भटकते रहे, लेकिन अगर ऐसी बातों का विश्वसनीय प्रमाण ना हो तो उसे कहानी बनाकर पेश करना सही नहीं रहेगा। ज़मीर काज़मी के मामले में यही सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी निजी जिंदगी के संघर्षों की विस्तृत प्रमाणित कहानी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने निजी जिंदगी से किसी को मुखातिब नहीं करते थे। इसीलिए उनका वास्तविक संघर्ष हमें उनके करियर की यात्रा से समझना चाहिए, उनकी लेखनी से समझना चाहिए। एक गीतकार के रूप में टिके रहना, बार बार नए संगीतकारों और फिल्मों के साथ काम करना, और फिर ऐसा भी दौर आया जब दशक बदलता गया और नए दौर आए जहाँ कुछ अलग चाहिए था, फिर भी बदलते दौर में लिखते रहना, ये अपने आप में एक रचनात्मक संघर्ष है।

जी हाँ, जब दौड़ की बात होती है तो वो दौर 90 का और फिर जॉगर्स पार्क का दौर कुछ अलग आ गया। तो फिर हर दौर में अपने आप को साबित करके दिखा दिया इन्होंने। आखिर में यही कहूंगी, शब्दों को जन्म देने वालों को याद रखना भी संगीत की कद्र करना है। सुरों का सफरनामा इस कार्यक्रम में मैं पूजा भारती आपसे फिर से मिलूंगी, एक और कलाकार, एक और कहानी और सुरों से जुड़े एक और सफर के साथ। तब तक के लिए संगीत सुनते रहिए, पुरानी यादों को संजोते रहिए और शब्दों की कद्र करते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। एक बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक

0: कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इसका मकसद अवैध और तय समय से ज्यादा समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके अप्रवासन की स्थिति की जांच करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करना था। इस सिलसिले में 150 पुलिसकर्मियों की कुल 25 टीमें बनाई गई और उन्हें कुल 43 जगहों पर तैनात किया गया। अभियान के दौरान 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनकी जांच की गई। इसमें 31 नाइजीरियाई, 4 युगांडा के, 3 तंजानिया के और 2 आइवरी कोस्ट के नागरिक थे। अभियान के तहत 10 विदेशी नागरिकों के खिलाफ देश से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत

और जब दौड़ की बात हो रही है तो फिर उस दौड़ में तलत महमूद की बात हो या फिर लता मंगेशकर, गीता दत्त, आप चाहे कोई भी नाम ले लें, चाहे मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, तो फिर वो नाम कहा गया जिसके गीत को सुनने पर हर वो लय सामने आता था जिस लय की भी आप बात कर ले, कोई भी लय अछूता नहीं रह सकता था, क्योंकि उनके गायकी में हर एक सुर को इतना तराश कर गाया गया कि वो गोल्डन एरा को और भी खूबसूरत बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन्ना डे के बारे में।

यूं कहा था ना कि वो सुर, वो राग, वो लय उस एरा में आप ढूंढेंगे और आपको मिल जाएगा। मन्ना डे के स्वर में आपने जब इस गीत को सुना तो कुछ अलग तो लगा ही ना। क्यों ना लगे, गोल्डन एरा की तो बात हो रही है। सुनहरे गीत, जी हाँ, गीत सुनहरे में उन गीतों को लिया गया है जो उस जमाने के तो हिट थे ही, आज भी हिट है। तभी तो वो गाना आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि हम भी उस गाने के दीवाने हैं।

जब गीत सुनते हैं तो ये लगता है ये दौड़ ही कुछ अलग था। हर एक समय पर, हर एक मूड पर, हर एक सिचुएशन पे गाने मिलना मुश्किल नहीं था। अब चाहे आप किसी भी गीत का नाम ले लें, हर एक गीत जुड़ा है हर एक सोच से, हर एक सिचुएशन से। और अगर आज के दौर में देखें तो आज भी उसी दौर को याद किया जाता है, उसके गीतों से याद किया जाता है। और जब पुराने गीत यानी गीत सुनहरे आपके समक्ष आता है तो आपको भी, आपके ज्ञान में भी एक और बढ़ोतरी होती है, वो तरोताजा हो जाता है। क्योंकि गीत जो उस जमाने की है, गोल्डन इरा की, वो आपके दिलो दिमाग पर छाने लग जाते हैं। फिलहाल आइए सुनते हैं उसी एरा का एक गीत।

देखिए, जितने भी गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार की बात हो रही है, वो सब के सब गोल्डन थे फिल्म संगीत की दुनिया के। और उनके गायकी में जो भी गीत हमारे पास पहुंच रहे हैं, वो सारे के सारे उस जमाने के हिट गाने थे, यानी गोल्डन एरा गीत सुनने में उन्हें हिट गानों को लेकर आने की कोशिश रही है। फिलहाल ये सुनते हैं उसी एरा का एक और गीत।

गोल्डन एरा के अगर गीतों की बात करते हैं तो वो गीत उस जमाने के, आप देखिए कितनी सादगी है उसमें, इतनी खूबसूरत उसके शब्द इतने खूबसूरत हैं कि आज इस गीत ने हमें और भी कुछ सिखाया। देखिए गीतों की जो खूबसूरती है, उसकी जो सादगी है, उसकी जो इनोसेंसी है, यानी कि इतना प्यारा और लग रहा है बिल्कुल कि एक नादान व्यक्ति बहुत कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर जानना चाह रहा है। गीतों के सिचुएशन को देखिए, क्यों? क्योंकि हम उसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इन गीतों के बोल सुलभ और खूबसूरत है। गीतों के बोल की बात आती है तो एक गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

मिस्टर और मिसेज बचपन की इस फिल्म में गीत में गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने अपने स्वर से इस गीत को सजाया। गीतों का सिलसिला चल रहा है, जी हाँ, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती, और वक्त बढ़ता जा रहा है, सुइयां आगे जाती जा रही हैं, लेकिन मन होता है कि वक्त को यहीं पर रोक दें या वह स्वयं ठहर जाए, लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकी। और यही लागू होता है उस जमाने के गीतकार संगीतकार के रूप में। वो क्या है? वो ये है कि वो समय भी यही था कि लोग लिखते थे, उसे अपने स्वर से सजाते थे, लेकिन वो गीत कभी पुराने होते ही नहीं थे। जो कल थे वो आज भी हैं, और हम सब के धड़कनों में उन्हीं गीतों का एक जुनून सा छाया है, क्योंकि वो वक्त ही था गोल्डन एरा।

कितना खूबसूरत सा गीत था, और गीतों में ऐसा समझ में आ रहा था, सुलाया जा रहा है एक नन्हे मुन्ने को। गोल्डन इरा में जो गीतों की खूबसूरती थी, वो फिल्मों के उस सिचुएशन पे होती थी जिस पर गीत लिखा जाना था और जिस पर गाना सुनना बनना था, और उन गीतों को ढाला नहीं ऐसे गीतकारों ने जिन्हें हम दिग्गज भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके शब्दों ने हमें गोल्डन इरा के गीत दिए। वो गीतकार, वो संगीतकार, वो गायक कलाकार, सभी ने हम लोगों को एक खूबसूरत विरासत में खूबसूरत और सुनहरे गीत दिए हैं। गोल्डन इरा के गीत आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे में। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। मैं हूँ पूजा भारती।

गोल्डन एरा गीत आप सुन रहे हैं, गीत सुनहरे फिल्म संगीत कार्यक्रम मेरे यानी पूजा भारती के साथ। और देखिए ना, गीत सुनते सुनते उसके बारे में जानते जानते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और वक्त बीतेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि गीत ही कुछ ऐसे हैं, हर एक बोल ने हमें बांध लिया था। वक्त खत्म होने से एक बात और भी है, फिर ऐसा वक्त आएगा और फिर ऐसे गीत सुनेंगे, क्योंकि आप हर रोज रात्रि 1:10 से सुनहरे गीत सुनते हैं, और इन गीतों के सफर में आप उन गीतों को याद करते हैं जो आपसे कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन उन यादों को तरोताजा करने का ये एक मकसद है, जिससे कि आप उन गीतों से जुड़े रहें और उन गीतों के जरिए अपने जीवन में अपने जीवन के उन पहलुओं को भी देख सकें। फिलहाल कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, और आखिरी नगमा आपके लिए। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज से आप जुड़े हैं। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड

0: एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मतदाता सूची में नोटिस दिए जाने की खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनका नाम अद्यतन व मान्य कर लिया गया है। इसे 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी भागीदारी वाली और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज इलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। पुरुष हॉकी टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सुबह 11:30 बजे इंडोनेशिया से भिड़ेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
0: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
2: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training dashes was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh, and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up to the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnav said that India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
2: Indian Railways has approved coverage 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division at a cost of over 250 crore. The project will expand coverage 4.0 coverage and strengthen train safety. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road over bridge on Udna-Ukai-Songad section of Western Railway. While electronic interlocking will be installed at 7 stations in the Solapur division at a cost of over 200 crore rupees. Railways has also approved a project worth over 142 crore rupees to upgrade the electric traction system on the Savalyapuram-Guntur section. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroha will be organized at 1,067 locations, including 471 district My Bharat offices and 596 partner organization venues across the country. The event will serve as a significant nationwide moment of youth participation, bringing together My Bharat partner organizations and young people around a shared commitment to healthier choices and a Nasha Mukt future. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured 3 major posts in the Delhi University Students Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the president post for president, while Riya Chavri secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. The 20th Asian Games 2026, which has opened at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines this morning. Tekball player Quincy D'Souza will compete in the bronze medal match against Japan's Yuina Sakamoto at 6:30 a.m. Indian time. Later, Indian shooters Elavenil Valaravan, Sonam Maskar and Vidar Sabanood will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event at 6:15 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
4: आप जुड़े हैं आकाशवाणी AIR Live News 24x7 से. 2:10 हो चुके हैं. वक्त हो चला है कार्यक्रम गीत बहार, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक. इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती. नए श्रोताओं, सुनते हैं नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम. और चूंकि ये नॉनस्टॉप है तो आप गीतों का आनंद बिल्कुल लगातार लेते रहेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप गीत संगीत कार्यक्रम गीत बहार.

0: अनिल इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 3 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित

0: भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कॉर्फ बॉल प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में कॉर्फ बॉल के प्रति बढ़ता उत्साह देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल युवाओं के लिए नए रास्ते खोलते हैं, सेहत और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is the world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi. The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. The three-day witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging and equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. इन्फॉर्मेशन

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, ये समय होता है कार्यक्रम गीत गजल का। वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गजलें होती हैं और सुकून भरी गजलें होती हैं, और आप सुनिएगा और सोचिए और महसूस कीजिए उन गजलों को, तभी रोचकता बनती है और आनंद भी आता है। एक कोई भी गजल हो, गीत हो या कुछ और हो, लेकिन यदि आप दिल से, मन से यदि आप सुनेंगे तो वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है। जी हाँ, कार्यक्रम गीत गजल। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल से शुरुआत कर रहे हैं और यह गजल वाकई बहुत ही शानदार और बेहतरीन गजल है, और हम बताए देते हैं कि आखिरकार कौन सी गजल आने वाली है जिसका आप सभी साथियों को इंतजार रहता है। मैं नसीब हूं, बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत रचना है। एल्बम अदा, लता मंगेशकर की बहुत ही सुंदर, मधुर, खूबसूरत आवाज में शानदार रचना है। और ये अदा एल्बम जो है 1992 प्रदर्शित फिल्म रही है और बहुत ही खूबसूरत है। गीत अनजान के हैं और संगीत से सजाया है बासु चक्रवर्ती ने। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की पहली बहुत ही सुंदर गजल।

जी हाँ साथियों, मैं नसीब हूं किसी और का, मैं किसी के पास हूं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गजल की ओर। ये गजल भी अपने आप में बहुत ही अनमोल है, बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, गजल की बात ही कुछ और होती है। उसमें शेरो शायरी, प्यार मोहब्बत, दुख दर्द सब कुछ समाहित होता है ना। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल। जी हाँ, सख्त है इश्क की रह गुजर। एल्बम तस्वीर से ये शानदार रचना गायक अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज में शानदार रचना है। ये रचना 1995 प्रदर्शित फिल्म रही है, एल्बम रही है, और गजल वाकई बहुत ही शानदार है।

गजल जो लिखी है वो है शमीम, जयपुरी और संगीत से सजाया है अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल।

बहुत ही अनमोल, बेमिसाल, उत्कृष्ट, शानदार गजल अभी आपने सुनी। साथियों, एक और खूबसूरत गजल आ रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, दिल लगाने की बात। जी हाँ दोस्तों, जब दिल लगता है किसी के साथ तो सच में जिंदगी आसान हो जाती है, और वही अगर दिल किसी और के पास चला जाए तो सच में क्या कहें, बहुत ही खराब लगता है। जिंदगी नीरस हो जाती है, इंसान का जो सोच है वो बदल जाती है, है ना। दिल लगाने की बात, कुछ दिल ने कहा एल्बम, बहुत ही शानदार एल्बम है, और गायक हैं अनूप जलोटा। 2013 की ये एल्बम है, बहुत ही शानदार संगीत से सजाया है इस खूबसूरत रचना को अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गजल।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर दिल लगाने की बात सोची है। बहुत ही अच्छी बात है और दिल लगाने की बात सोचना भी चाहिए, है ना। और जिससे आप नफरत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं, तो सच में उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन जो जज्बा है, जो सकारात्मक सोच है, दिल लगाने की बात सोची है, कम से कम दूरियां हो गई हैं, लेकिन दूरियों के पास लाने का ये जो जज्बा है बहुत ही खूबसूरत है ना। तभी तो कह रहे हैं, कहीं मैं था। जी हाँ दोस्तों, कहीं मैं था एक एल्बम है बहुत ही खूबसूरत, महबूब, तलत अजीज की बहुत ही सुंदर आवाज में शानदार रचना है। महबूब एल्बम 1997 प्रदर्शित एल्बम रही है और संगीत तलत अजीज का ही है। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार गजल।

वाह क्या बात है, कितनी बेहतरीन कितनी खूबसूरत गजल अभी आपने सुनी। वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, तलत अजीज की आवाज में शानदार गजल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। कह रहे हैं कि आपसे अगेला आपकी कसम, क्या बात है। यूनिक एल्बम, जी हाँ एल्बम का नाम है यूनिक। जगजीत सिंह की आवाज में बेहतरीन रचना। यूनिक एल्बम 1998 में आई थी और खूबसूरत गजल है। गीत यानी कि गजल जो लिखा है सबा सिकरी और संगीत से सजाया है खुद जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत गजल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी आपने सुनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब गज़ल। जी हाँ दोस्तों, कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जो उत्कृष्ट होती हैं, बेमिसाल होती हैं। उन्हीं में से एक सुंदर खूबसूरत गज़ल आ रही है और यह गज़ल चित्रा सिंह की आवाज़ में शानदार रचना है। पूरे विवरण हम बताए देते हैं। ये एल्बम वाकई बहुत ही खूबसूरत है। एल्बम का नाम है टुगेदर। जी हाँ, टुगेदर यानी कि एक साथ। कांटों के चुभन पाई टुगेदर एल्बम से बहुत ही शानदार रचना, जो 1999 प्रदर्शित एल्बम रही है और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने, और गीत यानी कि गजल सुरेंद्र मलिक गुमनाम ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल होने वाली है। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

बहुत ही सुंदर, बेहद लाजवाब, खूबसूरत गजल। बढ़ते हैं एक और सुंदर गजल की ओर। आइए सुनते हैं यह शानदार रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई उनसे जब जब भी मुलाकातें हुई, वाह सारे सारी रात बस ऐसे ही निकल गई। वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, हरिहरन की आवाज में शानदार रचना। ये एल्बम वाकई बहुत ही सुंदर एल्बम थी, जश्न। जी हाँ, 1997 रिलीज एल्बम। गीत मुजतर सिद्दीकी और संगीत हरिहरन का। हाँ, और सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की अंतिम गजल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर दर्द भरी खूबसूरत गजल सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जगजीत सिंह की आवाज में प्यार का पहला खत एल्बम से शानदार रचना। गीत गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म, कर्नाटक म्यूजिक, सी उमा द्वारा वायलिन वादन। आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जी उमा द्वारा वायलिन वादन। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और 20 सेकंड हो गए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मंगल ध्वनि और वंदे मातरम। श्रोताओं, कुछ जो प्रोग्राम है हमारे, जी हाँ, अगले जो प्रोग्राम है आज 5 बजे न्यूज इन हिंदी, यानी कि हिंदी में समाचार होंगे 5 बजे, और 5:05 समाचार होंगे इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश समाचार, इंग्लिश न्यूज, और भी जानकारियां हम बताना चाह रहे हैं, विवरण दे रहे हैं अगले जो प्रोग्राम आने वाले हैं। 5:10 पर कार्यक्रम समय होगा, 5:10 आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, योग उज्जाई प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति संगीत, देशगान, जय जय जनहे, आकाशवाणी के वृंद

अगान के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। 5:30 पर कार्यक्रम होगा स्वर रंजनी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। बिमल मुखर्जी द्वारा सितार वादन में राग भटियार। श्रोताओं 6:00 हिंदी समाचार सुन सकेंगे और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित और राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है।

0: ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सके, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सके और अपने निविवरण में सुधार करवा सके। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने पर की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इससे रेल परिचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। विभाग ने मछुआरों को आज से अगले सोमवार तक अंडमान सागर और अगले तीन दिनों तक पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। हौसी विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने सुबह हुई इस कोशिश के काफी देर बाद बयान जारी किया। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेक बॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The Samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing and youth-led discussions. The ministry highlighted that this major initiative is powered by a massive national network combining government youth chapters, spiritual groups, top business chambers, colleges and local organizations to run programs across hundreds of locations. The event will serve as a significant nationwide moment of youth participation, bringing together My Bharat, partner organizations and young people around a shared commitment to a healthier choices and a Nasha Mukt future. This event follows the nationwide launch of the campaign's new phase yesterday. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital today. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections for proposed inclusions or deletions of name in electoral rolls, and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth level officers will remain present at designated polling booths to receive applications. People can submit Form 6 for new voter enrollment, Form 7 for objections or deletion of entries, and Form 8 for any corrections or updating of details in the electoral rolls. Addressing the media regarding the ongoing SIR process, in the National Capital Delhi Chief Electoral Officer Ashok Kumar has clarified that electoral registration officers, EROs, can consider documents other than those listed in the notice during hearings on the case-to-case basis. Government has said that the biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. In a statement, Petroleum and Natural Gas Ministry said that domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. This ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The 20th Asian Games 2026 will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines today. India's techball player Quimsy D'Souza will compete in the bronze medal match against Japan's Yuna Sakamoto and have the first opportunity to open India's medal account at the Continental Multisport event. Later, Indian shooters Elavenil Valaravan, Sonam Naskar and Vidarsav Vinod will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event. And that is the end of this news bulletin.
3: समय हुआ है 5:10 और ये समय होता है आओ योग करें योगा फॉर वेलनेस। आज का योगा है उज्जायिनी प्राणायाम और वृक्षासन।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न

होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं।

परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम स्वर रंजनी का, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। बिमल मुखर्जी द्वारा सितार वादन में राग भटियार सुनिए।